यह आकाशवाणी बीकानेर का ढोलमारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 101.6 मेगाहर्ट्ज पर। आज बुधवार है, शक संवत 1948 श्रावण मास की सातवीं तिथि, तदनुसार 29 जुलाई 2026 प्रातः के समय 5:57 होने को है। हमारी प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोली मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के 6 बजने को ही थोड़ी ही देर में समाचार होंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2024 पर फिर से चर्चा शुरू होगी। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कल सदन में विधेयक को विचार और पारित कराने के लिए पेश किया था। ये विधेयक लोक परीक्षाओं में अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन के लिए लाया गया है। विधेयक में कई महत्वपूर्ण प्रावधान हैं, जिनमें 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपये तक का जुर्माना और अपराधियों की संपत्ति की जब्त करने जैसे कठोर दंड शामिल है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि ये नया कानून देश के छात्रों और युवाओं के कल्याण की रक्षा के लिए सरकार की गहरी प्रतिबद्धता का परिचायक है।
1: 2 महीने के भीतर सारी जांच मुकम्मल की जाएगी और उसके बाद जो भी ट्रायल कोर्ट होगा, फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट, उसमें ये 3 महीने, यानी जिस दिन वारदात रिपोर्ट हुई है उस दिन से लेकर के आखिरी निर्णय आने तक 5 महीने से ज्यादा अवधि काल नहीं रहा जाएगा।
0: श्री सिंह ने कहा कि ये विधेयक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प को भी दोहराता है कि देश के युवाओं के भविष्य से कोई समझौता नहीं होने दिया जाएगा। वहीं कांग्रेस के गौरव गोगोई ने कहा कि सरकार शिक्षा क्षेत्र के प्रति गंभीर नहीं है।
2: ये सरकार शिक्षा विभाग को लेकर गंभीर नहीं है, सुधार नहीं लाना चाहिए। ये सिर्फ एक दिखावा का बिल है, क्योंकि ये बिल एक संशोधन बिल है।
0: वहीं भाजपा सांसद बासुरी स्वराज ने इस विधेयक को क्रांतिकारी कदम बताया। समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने विभिन्न परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने पर चिंता व्यक्त की। एआईटीसी के अभिषेक बनर्जी, तेलुगु देशम पार्टी के लावू श्रीकृष्ण देवरियालू और शिवसेना के डॉक्टर श्रीकांत शिंदे ने विधेयक का समर्थन किया। तेलुगु देशम के सांसद ने प्रश्न पत्र तैयार करने वाली समितियों के विकेंद्रीकरण की भी मांग की। विधेयक पर अभी चर्चा पूरी नहीं हुई है। पीठासीन अधिकारी राय ने सदन को आज सुबह 11 बजे फिर से शुरू करने तक के लिए स्थगित कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में हुए प्रदर्शनों में शामिल नाबालिग छात्रों को रिहा करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने अधिकारियों को प्रदर्शनों से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने का निर्देश दिया। इस बीच पश्चिम बंगाल में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए और नीट परीक्षा के पेपर लीक से संबंधित विरोध प्रदर्शनों के सभी पहलुओं के मूल्यांकन के बाद राज्य सरकार ने विरोध प्रदर्शनों में भाग लेने वाले छात्रों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न करने का निर्णय लिया है। झारखंड में सुरक्षा बलों ने नक्सल विरोधी अभियान में बड़ी सफलता हासिल की है। प्रमुख माओवादी नेता और पोलित ब्यूरो सदस्य मिस्टर बेसरा को धनबाद गिरडीह सीमा से गिरफ्तार किया गया।

0: है। उस पर 1 करोड़ रुपए का इनाम था। क्षेत्रीय समिति सदस्य मेहनत उर्फ मोशू, माओवादी कार्यकर्ता गौरव और 2 ग्रामीणों को भी संयुक्त अभियान के दौरान गिरफ्तार किया गया। गृह मंत्रालय ने सशस्त्र सीमा बल में कांस्टेबल सामान्य ड्यूटी भर्ती के नए नियम जारी किए हैं। इन नियमों के तहत हर साल होने वाली भर्ती में कांस्टेबल सामान्य ड्यूटी के 50% पद पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित रहेंगे। ये नए नियम 27 जुलाई से लागू हो गए हैं। गणपति भक्तों की सुविधा के लिए मध्य रेलवे 11 से 27 सितंबर तक 246 गणपति विशेष रेलगाड़ियां चलाएगा। इनमें मुंबई और पुणे को सावंतवाड़ी रोड, रत्नागिरी और मडगांव से जोड़ने वाली 184 आरक्षित रेलगाड़ियां और दीवा और खेड़ के बीच चलने वाली 62 अनारक्षित रेलगाड़ियां शामिल हैं। टिकट की बुकिंग 1 अगस्त से सभी टिकट काउंटर और IRCTC वेबसाइट पर शुरू हो जाएगी। मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर कथित रूप से बल प्रयोग की घटनाओं की स्वतंत्र और पारदर्शी जांच की मांग की है। संगठन ने पाकिस्तानी अधिकारियों से क्षेत्र में संचार सेवाएं बहाल करने और मीडिया तथा स्वतंत्र पर्यवेक्षकों को वहां जाने की अनुमति देने की अपील की है। मौसम विभाग ने आज जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में तेज बारिश का अनुमान जताया है। कर्नाटक, केरला, माहे, कोंकण, गोवा, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश और राजस्थान में भी ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारतोलक हरजिंदर कौर और धावक गुरवीर सिंह ने रजत पदक अपने नाम किया। गुरवीर सिंह ने पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में ऐतिहासिक रजत पदक जीता। गुरवीर राष्ट्रमंडल खेलों की स्पर्धा में पदक जीतने वाले पहले भारतीय हैं। भारत पदक तालिका में 2 स्वर्ण, 7 रजत और 3 कांस्य सहित कुल 12 पदकों के साथ 9वें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के समय 6:05 हो चुके हैं। ये समय है आज का विचार कार्यक्रम का। आज का विषय है भवसागर से पार कैसे हो। आलेख और वाचक स्वर है श्री प्रमोद कुमार शर्मा का। तो आइए सुनते हैं आज का विचार भवसागर से पार कैसे हो।
2: भवसागर की नाव कहे कबीर जग तरण को नाही और उपाव। श्रोताओ, कबीर साहब के इस दोहे का भावार्थ है कलयुग में कथा कीर्तन ही भवसागर की नाव पार ले जा सकते हैं, इसके अलावा अन्य कोई उपाय नहीं है। कहा भी गया है कलयुग एक नाम आधारा। ये कलयुग है और इससे मनुष्य का आधार प्रभु का नाम स्मरण ही बनता है। तो आइए कुछ बातें समझ लें। चूंकि कलयुग है इसलिए अच्छाइयों पर बुराइयां हावी रहती हैं। भोग विलास, संग्रह, लालच, लोभ की प्रचंड आंधियां चल रही हैं। ऐसे में रास्ता भटकने की बहुत आशंका है। हमें ये बात स्मरण में रखनी चाहिए कि ये अति दुर्लभ मानवतन मुक्ति के लिए मिला है, परंतु हम ये बात भूल जाते हैं और संसार की तरफ आकर्षित होकर उसके राग रंग में डूब जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि कबीर साहब इसे भवसागर कहते हैं। सागर में बड़े बड़े भंवर भी होते हैं, न मालूम कौन सा भंवर हमारी नाव को लील ले। इसलिए एकमात्र रास्ता प्रभु का स्मरण ही है। वह परमात्मा अपने समर्थ हाथों से आपकी नाव को थाम लेता है और नाम को पतवार बना लेता है। फिर कोई संकट नहीं, कोई दुख नहीं, अब कोई समस्या नहीं। हमें सतत याद रखना होगा कि मृत्यु के साथ जीवन खत्म नहीं हो जाता। जीवन रहता है लेकिन उसका रूप बदल जाता है। ये दुनिया छूट जाती है मगर कोई दूसरी दुनिया से हम जुड़ जाते हैं, जिसे स्वर्ग या नर्क कहा जाता है। योनि परिवर्तन हो जाता है।

0: जीव की जीव यात्रा का कोई अंत नहीं, अगर अंत है तो मोक्ष यानी मुक्ति, यानी उसके बाद की शरीरों की पकड़ से बाहर आने की शक्ति पैदा हो जाती है और शाश्वत शरीर प्राप्त हो जाता है। लेकिन ये तब होगा जब हम मोह माया से दूर रहें। कहा गया है, कोड़ी कोड़ी जोड़ के जोड़े लाख करोड़, चलती देर न कछु मिला, नई लंगोट ही तोड़। संत फरमा रहे हैं कि न मालूम कितने जोड़ तोड़ करके धन संपदा जोड़ी, लाखों करोड़ों रुपए इकट्ठे किए, लेकिन जब अंत समय आया तो कुछ भी साथ नहीं चला। यहां तक कि बदन का अंतिम कपड़ा लंगोट भी उतार लिया जाता है। सिकंदर का उदाहरण तो आप सबको पता है ही। उसने अपनी वसीयत में लिखवाया कि जब मैं मर जाऊं और मुझे कब्रिस्तान की तरफ ले जाया जाए तो मेरे जनाजे से मेरे दोनों हाथ बाहर रखना, ताकि लोग देख सकें कि विश्व विजेता सिकंदर खाली हाथ जा रहा है। तो मित्रों, हम भी खाली हाथ ही जाएंगे, तो फिर क्यों न अभी से चेत जाएं और राम नाम संकीर्तन में डूब कर भवसागर को पार करने की तैयारियां करें।
1: ये था आज का विचार। विषय था भवसागर से पार कैसे हो। आलेख और वाचक स्वर था श्री प्रमोद कुमार शर्मा का। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोली मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 6:10 होने को है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम वंदना।

और महंगाए इस भक्ति रचना के साथ ही आज का वंदना कार्यक्रम अब यही समाप्त होता है। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोल मारु चैनल है। आइए अब सुनते हैं रामचरित मानस गान। आज आप सुनेंगे बालकांड के दोहा संख्या 283 से दोहा संख्या 285 के अंतिम पद तक का पाठ। संगीत सतीश भाटिया का है।

श्री राम के मुंह से अपने लिए विप्रवर संबोधन सुनकर मुनि परशुराम को लगा कि उनका निरादर हो रहा है। ऐसा जान श्री राम ने उन्हें समझाया कि यदि ब्राह्मण कहकर सचमुच ही मुनि का निरादर करना उनका अभीष्ट होता तो संसार में ऐसा कौन योद्धा है जिसके सामने वो यूं नतमस्तक होते। युद्ध की ललकार सुनकर तो वो काल से भी लड़ सकते हैं। क्षत्रिय होकर जो युद्ध से डर गया वो तो कुल कलंकी है, किंतु सच तो यह है कि ब्राह्मण वंश की ऐसी प्रभुता है कि जो वास्तव में भय रहित होता है वो भी आपसे डरता है। रघुवंश मणि के कोमल किंतु गूढ़ वचन सुनकर मुनि परशुराम की बुद्धि पर पड़ा पर्दा जैसे अचानक ही उठ गया। उन्होंने श्री राम के पौरुष और पराक्रम की परीक्षा करने के उद्देश्य से विष्णु के धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए उन्हें देना चाहा कि तभी धनुष अपने आप ही श्रीराम के पास चला गया। स्तब्ध आश्चर्यचकित परशुराम के सारे संदेह जैसे क्षण भर में मिट गए। उन्होंने श्रीराम के प्रभाव को समझ लिया और हाथ जोड़कर उनकी स्तुति और जय जयकार करने लगे।

श्रोताओं, रात 10 बजे हम आपको सुनाएंगे संसद में प्रश्नकाल की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग का प्रसारण। चर्चा का विषय 9:30 पर, संसद समीक्षा रात 8 बजे। ये तीनों कार्यक्रम दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। सुगम संगीत 7:45 पर शाम को, फिल्म संगीत रात 8:15 पर, लोक संगीत 8:30 पर। 7 बजे आप सुन सकते हैं ग्रामीण जगत कार्यक्रम। जी हां, शाम 7 बजे ग्रामीण जगत कार्यक्रम होगा। चर्चा का विषय होगा अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस, गुरु पूर्णिमा। अलावा इसके प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पर भी जानकारी दी जाएगी।

शाम 5:05 पर आप सुनते हैं कार्यक्रम युववाणी। आज की बात का विषय होगा अभिरुचि और कैरियर। लघु जानकारी, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, गुरु पूर्णिमा, अलावा इसके फिल्म संगीत होगा, रोजगार की सूचना, क्यूज टाइम। जी हाँ, शाम 5:05 पर कार्यक्रम युववाणी।

गुरु पूर्णिमा इस विषय पर चर्चा होगी। फलों का सेवन हमारी सेहत के लिए जरूरी। एक वार्ता सुनाई जाएगी, सामाजिक कुरीतियां दूर करने में महिलाओं की भूमिका। वार्ताकार होंगी कल्पना श्रीवास्तव। कार्यक्रम महिला जगत दोपहर 1:05 पर। फिल्म संगीत 2:30 पर होता है और मिड डे न्यूज आप सुनते हैं 2:00। 2:15 पर दोपहर समाचार होते हैं दिल्ली केंद्र से। श्रोताओं, इसी सभा में 7:00 आप सुनेंगे कार्यक्रम सुप्रभात। अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस अरुणा आसफ अली पुण्यतिथि पर चर्चा होगी। अलावा इसके एक विशेष भेंट वार्ता हम आपको सुनाएंगे, डिजिटल युग में पत्रकारिता अवसर और चुनौतियां। जानकारी देंगे श्री लक्ष्मण राघव, आपसे बातचीत करेंगे श्रीमती बरका थानवी। संयोजन रहेगा श्री अमित सिंह का। जी हां, कार्यक्रम सुप्रभात इसी सभा में 7:00।

0: ये था कार्यक्रमों का विवरण। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज पर। 6:45 होने को है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम खेती की बातें। जानकारी का विषय है वर्षा ऋतु की सब्जियां की देखभाल। वाचक स्वर श्री दीवान दान रत्नु का है।
1: किसान भाइयों, वर्षा ऋतु की सब्जियों में प्रमुख रूप से हम कुष्मांड कुल की सब्जियां, तरबूज है, खरबूज है, कद्दा है, तुरई है, लौकी है, पेठा है, चिरचिंडा है, परवल है, ककड़ी है, टिंडा है, खीरा है, करेला है, ये प्रमुख रूप से वर्षा ऋतु में सब्जी उगने वाली है जो हम काम में ले सकते हैं, खेतों में उगा सकते हैं। किसान भाइयों, इनकी बेलों की अच्छी वृद्धि 25 से 30 डिग्री सेल्सियम तापमान पर होती है। इन पर पाले का प्रभाव बहुत अधिक होता है। इनके लिए उपजाऊ दोमट मिट्टी जहाँ पानी का निकास अच्छा हो उत्तम होती है। इनकी खेती गर्मी और वर्षा दोनों ऋतुओं में की जाती है। वर्षा ऋतु में यदि हम देखें तो तरबूज, खरबूज, ककड़ी, तुरई, खीरा, लौकी, कद्दू, करेला, टिंडे की बुवाई हम वर्षाकालीन जून और जुलाई में कर सकते हैं। इनकी बीमारियों की रोकथाम के लिए बीजों को बोने से पूर्व थायरम 2 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से उपचारित कर बोना चाहिए। बुवाई का समय इस बात पर निर्भर करता है कि इन सब्जियों की बुवाई नदी पिट्टे में की जा रही है या समतल भूमि पर। अगेती फसल के लिए निम्न उपाय अपनाए जा सकते हैं। चूंकि बीजों का अंकुरण 20 डिग्री सेल्सियम से कम तापमान पर ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है, अतः बीजों को सीधे खेत में ना बोकर प्लास्टिक की थैलियों में बोया जा सकता है। थैलियों में 1/3 भाग चिकनी मिट्टी, 1/3 भाग बालू मिट्टी, 1/3 भाग बैंगनी या गोबर की खाद मिलाकर एक थैली में 2 बीज को बोया जा सकता है। थैलियों को पॉलीथीन में ढक देवे। सीधे खेत में बोने के लिए बीजों को बुवाई से पूर्व 24 घंटे पानी में भिगोए, बाद में टांट के बांध कर 24 घंटे रखे। उपयुक्त तापक्रम पर रखने से बीजों की अंकुरण की प्रक्रिया गतिशील हो जाती है। इसके बाद बीजों को खेत में बोया जा सकता है। किसान भाइयों, इस प्रकार की सब्जियों के लिए खाद और उर्वरक के रूप में हम गोबर खाद है वो 200 से 250 किलो प्रति हेक्टेयर में दे सकते हैं। नत्रजन है वो 80 से 100 किलो प्रति हेक्टेयर में दे सकते हैं। फास्फोरस है वो 40 किलो प्रति हेक्टेयर में दे सकते हैं। पोटास है वो 40 किलो प्रति हेक्टेयर में दे सकते हैं। देसी खाद फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा तथा नत्रजन की 1/3 मात्रा और 30 किलो नत्रजन बुवाई के समय भूमि में मिलाकर देवे। खड़ी फसल में नत्रजन की मात्रा 2 बराबर भाग में बांटकर टॉप ड्रेसिंग के रूप में पहली बार बुवाई से 25 से 30 दिन बाद दूसरी बार बुवाई फूल आने के समय देनी चाहिए। वैसे देखा जाए तो किसान भाइयों, हम लौकी के लिए बीज की मात्रा 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टर बुवाई है वो जून से जुलाई के मध्य कर सकते हैं। कद्दू की जून

0: जुलाई, करेला की जून जुलाई में, तरबूज है वो जून जुलाई में। इस प्रकार हम खरबूजा, तरई, खीरा, ककड़ी, टिंडा, करेला इन सभी की वर्षा ऋतु में बुआई कर सकते हैं। इसको कुष्मांड कुल की सब्जियां भी कहते हैं। कुष्मांड कुल की सब्जियों की बुआई एक स्थान पर 2-3 बीज बोए जाते हैं। अंकुरण के कुछ दिन बाद 1 से 2 पौधों को रखकर शेष को हटा देते हैं। प्रमुख रोग और कीट इसमें देखे जा सकते हैं वो है लाल भृंगु रोग, फल मक्खी रोग, बरूथी, और प्रमुख जो व्याधि है वो है तुलसीता, झुलसा रोग, छाछिया रोग और विषाणु रोग। प्रमुख कीट है किसान भाई वो है लाल भृंगु। यह कीट लाल रंग का होता है, अंकुरित नई पत्तियों को खाकर छलनी कर देता है। इसके प्रकोप से कई बार पूरी फसल नष्ट हो जाती है। इसके नियंत्रण हेतु क्विनोल फॉस 1.5% चूर्ण 20 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से बुरकाव करें। एफिसेट 75 SP 0.5 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से छिड़के 15 दिन के अंतराल में दोहराए। फल मक्खी यह करेला, तुरी, टिंडा, ककड़ी, खरबूजे आदि को अधिक नुकसान पहुंचाता है। इसके आक्रमण से फल काणे हो जाते हैं। नियंत्रण हेतु काणे फलों को तोड़कर भूमि में गहरा गाड़ कर नष्ट कर दें। मेलाथियोन 50 EC, थाइमिथियोट 30 EC 1 मिलीलीटर प्रति लीटर की दर से छिड़काव करें। हरा तेला एवं मोइले को भी नियंत्रण हो जाता है। प्रमुख व्याधियां तुलसीता रोग, पत्तियों की ऊपरी सतह पर पीले धब्बे दिखाई देते हैं, नीचे की सतह पर कवक की वर्दी दिखाई देती है। उग्र अवस्था में रोग ग्रसित पत्तियां जड़ जाती हैं। इसकी नियंत्रण हेतु मैंकोजोब 2 ग्राम प्रति लीटर पानी की घोल को छिड़काव करें। आवश्यकता पड़ने पर इस छिड़काव को 15 दिन बाद दोहराएं। झुलसा रोग, इस रोग के प्रकोप से पत्तियां पूरे भूरे रंग की छल्लेदार धारियां बन जाती हैं। नियंत्रण हेतु मैंकोजोब जाइनेब 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़के। आवश्यकता अनुसार छिड़काव 15 दिन के अंतराल में दोहराएं। छाछिया रोग, रोग ग्रस्त बेलों पर सफेद चूर्ण धब्बे दिखाई देते हैं। रोग ग्रस्त पत्तियां एवं फलों की बढ़वार रुक जाती हैं, बाद में सूख जाते हैं। नियंत्रण हेतु केराथियोन LC 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के घोल का छिड़काव 15 दिन के अंतराल में करें। कुष्मांड कुल की सब्जियों में 2 प्रकार के विषाणु पाए जाते हैं, कुकम्बर मोजेक वायरस, वाटरमेलन वायरस। विषाणु रोग मोइला के संचारित होता है तथा रोग का आक्रमण होने पर पत्ती की लंबाई चौड़ाई कम हो जाती है। ग्रसित पौधे के फल भद्दे रंग के बेडोलाकार के हो जाते हैं। नियंत्रण हेतु रोग के लक्षण दिखाई देते ही पौधे को उखाड़ कर जला लेवे।
1: ये था कार्यक्रम खेती की बातें। जानकारी का विषय था वर्षा ऋतु की सब्जियों की देखभाल। वाचक स्वर था श्री दीवान दान रत्नु का। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। लीजिए सुनिए लोक भजन।

जगदीश प्रसाद के स्वर में भी आप सुन रहे थे लोक भजन। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोल हमारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज पर सुबह के 6:55 होने को है। थोड़ी ही देर में संस्कृत में समाचार दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।

0: मुख्य न्यायाधीशस्य सूर्यकांतस्य अध्यक्षतायां त्रिन्यायाधीशपीठं प्रदर्शनकाले आरक्षक बलस्य कथितानुचित बलप्रयोग संबद्धानां याचनानां श्रवणम् अकरोत्। न्यायपीठेन दिल्ली प्रशासनाय अभिलिखितानां एफआईआर इति प्रकरणानां अन्वेषणं निरन्तरं कर्तुम् अनुमतिः प्रदत्ता। तथापि न्यायप्रक्रियायाः प्रवर्तनकाले प्रदर्शनरतानां छात्राणां विरुद्धं किमपि कठोरनिर्णयं न कर्तव्यमिति निर्देशः प्रदत्तः। सर्वोच्चन्यायालयस्य आदेशानुसारं तथा अवैधरीत्या नीट परीक्षापत्र प्रकाशनस्य विरुद्धं प्रदर्शनानां विषये सर्वेषां पक्षाणां मूल्यांकनं कृत्वा पश्चिमबंगाल प्रशासनेन विरोध प्रदर्शनेषु सम्मिलितानां छात्राणां विरुद्धं किमपि कार्याचरणं न स्वीकर्तुं निश्चितम्। राष्ट्रमंडल क्रीडासु भारतीय भारोत्तोलिका हरजिंदर कौर महिलानां एकोन सप्तति किलोग्राम भारवर्गे रजत पदकं प्राप्तवती। अपरंच भारतीय मुष्टियोद्धा एम जादुमणि सिंहः ग्लासगो नगरे पुरुषाणां पञ्चपञ्चाशत् किलोग्राम भारवर्गे प्रागुपान्त्य चक्रे मुआली मुएंगो इत्येनं पराजित्य न्यूनातिन्यूनं कांस्य पदकं सुनिश्चितवान्। अनेन असौ उपान्त्य चक्रे प्रविष्टवान् इति वार्ताः।
1: आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर प्रातः के ठीक 7 बजे हैं। ये समय है कार्यक्रम सुप्रभात का।

कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। सुबह की जो ये बेला है, शांत वातावरण, पक्षियों की चहचहाट, और अब से एक दो घंटे पहले भी, जी अब तो 7 बज चुके हैं, इससे पहले अगर हम 4:30-5 बजे की बात करें तो और भी मौसम सुहाना था, दिल को छूने वाला था। ध्यान करने के लिए, योग करने के लिए ये उत्तम समय होता है, निश्चय ही आपने किया होगा। और अब चाय के साथ हमारी बातें सुन रहे होंगे, तो चलिए एक खूबसूरत गीत हम आपके लिए प्ले करते हैं और फिर बहुत सी बातें आपसे और भी करेंगे।

जी, ये खूबसूरत आवाज़ आप पहचान ही गए होंगे, लता मंगेशकर की आवाज़ थी और गीत भी बहुत ही खूबसूरत था। चलिए कुछ संदेश जो आपके लिए भी ज़रूरी है और हमारे लिए भी।

0: माह के पहले और तीसरे रविवार को सुबह 8:30 बजे सुनिएगा कार्यक्रम हेल्दी बीकाना, आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल की प्रस्तुति।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
3: जी, संदेशों के बाद आपका फिर स्वागत है। 29 जुलाई का दिन, जी हाँ, आज के दिन की हम बात कर रहे हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 9 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालिया टैंक मैदान में ब्रिटिश पुलिस की पाबंदियों और चेतावनी के बावजूद जिसने तिरंगा फहराया, उनका नाम है अरुणा आसफ अली। जी हाँ, आज ही के दिन उनका निधन हुआ 1996 में। ये हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम की प्रमुख नायिका के रूप में जानी गई। आप सामाजिक कार्यों के अलावा पत्रकारिता से भी जुड़ी रही। श्रोताओं, जब पत्रकारिता की बात आती है तो आज के इस कार्यक्रम में हम पत्रकारिता को लेकर के एक विशेष भेंटवार्ता आप के नजर करने वाले हैं। जी हां, भेंटवार्ता का विषय है डिजिटल युग में पत्रकारिता, अवसर और चुनौतियां। जानकारी देने श्री लक्ष्मण राघव और आपसे बात कर रही हैं श्रीमती बरखा थानवी प्यास। तो आइए सुनते हैं ये भेंट वार्ता डिजिटल युग में पत्रकारिता, अवसर और चुनौतियां। संयोजन है श्री अमित सिंह का।
4: सूचना और संचार के इस तेजी से बदलते दौर में पत्रकारिता भी निरंतर नए आयाम हासिल कर रही है। आज समाचार कुछ ही क्षणों में दुनिया के किसी भी कोने से हमारे मोबाइल और कंप्यूटर तक पहुंच जाते हैं। सोशल मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी तकनीकों ने पत्रकारिता

0: डेटा को पहले से अधिक तेज, व्यापक और प्रभावशाली बनाया है। वहीं दूसरी ओर फेक न्यूज, भ्रामक सूचनाएं, साइबर सुरक्षा, फैक्ट चेकिंग और पत्रकारिता की विश्वसनीयता जैसी चुनौतियां भी हमारे सामने हैं। इन्हीं महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं वरिष्ठ पत्रकार श्री लक्ष्मण राघव। आकाशवाणी बीकानेर के स्टूडियो में लक्ष्मण जी आपका स्वागत है।
1: प्रखा जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने एक बहुत ही ऐसा सब्जेक्ट चुना है जिसकी बात इस वक्त ही नहीं बल्कि बहुत पहले से होती आई है, तो बीकानेर आकाशवाणी के दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और निश्चित तौर पर एक ऐसा विषय है जिस पर आज बहुत बात हो रही है, जिसको लेकर ये माना जा रहा है कि जिस तरह से जेन जी में खास तौर पर डिजिटल मीडिया को लेकर एक क्रांति सी आ रही है, तो मुझे लगता है कि आपने जो विषय चुना है उसके लिए भी आपकी टीम को और आपको साधुवाद।
0: जी, डिजिटल युग में हम जी रहे हैं, ऐसे में पत्रकारिता वो भी डिजिटल इंडिया या डिजिटल युग से अछूती नहीं है, तो ऐसे में सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि डिजिटल पत्रकारिता को आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे या ये पारंपरिक पत्रकारिता से किस प्रकार अलग है।
1: देखिए प्रखा जी, जैसा कि आपने कहा कि पारंपरिक पत्रकारिता और डिजिटल पत्रकारिता में क्या फर्क है, तो पत्रकारिता को लेकर तो मुझे लगता नहीं कि हमारे जो श्रोताओं हैं उनको कुछ बताने की आवश्यकता है, वो जानते हैं समझते हैं। लेकिन डिजिटल पत्रकारिता क्या है, इस पर बात इसलिए हो सकती है क्योंकि वो जमाना था कि जब पत्रकारिता शुरू हुई तो उस वक्त जब अखबार छपता था तो कितना उसमें परिश्रम लगता था, और उससे भी पहले चले जाएं तो हमारा जो तरीका होता था कि हम सूचनाएं कैसे संप्रेषित करें उसके लिए भी बहुत अलग अलग तरीके थे जो सब जानते हैं पारंपरिक तौर पर। लेकिन डिजिटल पत्रकारिता क्या है, दरअसल ये वो पत्रकारिता है जिसमें सब चीजें, ये मान के चलिएगा, समाचार का संकलन से लेकर संपादन, निर्माण, ये तमाम चीजें ऑनलाइन, इंटरनेट, न्यूज पोर्टल, वेबसाइट, इन सब के साथ होती है,
0: तकनीक पर निर्भर हो गया है।
1: और इसमें भी जो अगर हम बात करें इसको और हम खोलकर अगर हम कहें तो सीधे तौर पर ये समझिएगा कि इंटरनेट के जो सोर्सेज हैं यानी इंटरनेट आधारित पत्रकारिता ये हो गई है, जिसमें संपादन तक जो है वो सब कुछ ऐसे हो रहा है। सबसे बड़ी बात इसमें ये हो गई है कि फास्ट,
0: बिल्कुल, सोशल मीडिया, जो सोशल मीडिया का जमाना चल रहा है, दौर है, इसका क्या पत्रकारिता के स्वरूप पर प्रभाव पड़ा है? इंटरनेट तो चूंकि अब कई साल हो गए, 20 वर्ष से हम इंटरनेट का दौर देख रहे हैं, पर अब जो हर हाथ में मोबाइल आ गया है तो हर कोई न्यूज को संप्रेषित कर रहा है, पत्रकारिता करना चाह रहा है, तो सोशल मीडिया के इस दौर में पत्रकारिता के स्वरूप में क्या बदलाव आए हैं?
1: देखिए बहुत अच्छा सवाल आपने किया है और आपने ठीक कहा, सोशल मीडिया और इंटरनेट ये ठीक इसी तरह से है दिल और दिमाग।
0: बिल्कुल,
1: आप ही मान के चलिए इंटरनेट है तो सोशल मीडिया है
0: जी,
1: क्योंकि आप देखेंगे कि आजकल जब हम देखते हैं कुछ इस तरह की चीजें आती हैं तो सबसे पहले होता है आप इंटरनेट बंद कर दीजिए,
0: निर्भरता है
1: लेकिन बंद होता है। तो कहीं ना कहीं जो आप बात कर रही हैं कि सोशल मीडिया और इंटरनेट दोनों जुड़े हुए हैं, लेकिन आपका सवाल जो था कि सोशल मीडिया किस तरह से जो है चीजों को बदल रहा है, किस तरह से इंपॉर्टेंट होता जा रहा है, तो देखिएगा नाम में ही है सोशल, सामाजिक, मीडिया आप जानते हैं, तो समाज के एक बड़े हिस्से को सोशल मीडिया प्रभावित कर रहा है। इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, आप समझिएगा इस बात को, और इतने सारे प्लेटफॉर्म्स को जिस तरह से प्रयोग में लोग ला रहे हैं, तो देखिए तकनीक जो है वो दोधारी तलवार की तरह होती है
0: जी,
1: अगर आप उसे अच्छे से इस्तेमाल करते हैं तो आपका डिफेंस करेगी, आपको सुरक्षा देगी, और थोड़ी सी गलती करते हो तो आपको लहूलुहान कर देगी।
0: बिल्कुल,
1: तो सोशल मीडिया के साथ भी ये हैजार्ड है, ये खतरा है, और इस खतरे के साथ आगे बढ़ रहा है, लेकिन आप इसे नकार नहीं सकते, आप इसे कम कर नहीं आ सकते। और मैं कई पत्रकार मित्रों से जब बात होती है तो मैं इस बात को कहता हूं कि आपको समय के साथ चलना होगा।
0: वही मेरा अगला प्रश्न था कि अगर पत्रकारों की दृष्टि से हम देखें तो उन्होंने इस डिजिटल पत्रकारिता को कैसे एक अवसर के रूप में देखा है?
1: देखिए हालांकि ये नहीं है कि मैं किसी दल की तारीफ कर रहा हूँ, इसको मैं कई बार कहता हूँ कि आप समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की मन की बात,
0: बिल्कुल,
1: हालांकि वो माध्यम रेडियो है
0: जी,
1: ठीक है, लेकिन उसका प्रसार का जो तरीका है वो पूरी तरह से मुझे लगता है डिजिटल है, क्योंकि जैसे ही वो कार्यक्रम जब प्रसारित होता है और जिस तरह से वो प्रसारित करते हैं प्रति माह करना और इतने बड़े ऑडियंस को जोड़ते हैं, लेकिन आप देखेंगे हम कई बार इस चीज से गुजरते भी हैं कि उनकी क्लिप्स आते हैं सोशल मीडिया पर, वो वायरल होता है, तो चीजें जो सोशल मीडिया के जरिए कैसे वो पहुंच जाती हैं, तो मुझे लगता है कि जो सोशल मीडिया के जरिए ये जो चुनौती जिसे कहते हैं कुछ लोग कि भाई जो पेशेवर पत्रकार हैं उनके सामने ये अलग कैसे है, तो मुझे लगता है ये अगर आप जिम्मेदारी के साथ इसे उपयोग कर रहे हो तो आपकी तेजी को बढ़ाता है
0: और आप भारत के आखिरी गांव तक पहुंच सकते हैं। रेडियो की थी पहुंच पहले, आज भी हम कहते हैं 99% जो ज्योग्राफिकल एरिया है वो रेडियो कवर करता है, वही चीज अब इंटरनेट की सुविधा होने के साथ में जो ये डिजिटल

0: प्लेटफॉर्म्स हैं वही वो सुविधा भी प्रदान कर रहे हैं।
1: निश्चित तौर पर मैंने इसलिए एक उदाहरण दिया कि
0: रीच बढ़ती है,
1: रीच बढ़ती है। और देखिए जब प्रधानमंत्री इस तरह की बात करता है तो उस रीच को आप ये देखिएगा, साथ में ये भी जुड़ता है कि आप किसी गाजर से कि आप कह रहे हैं, कई बार उनके अलग अलग श्रोता वर्ग होते हैं जिस पर वो बात करते हैं। मेरा बस आशय यहाँ ये कहने का है कि इन दोनों चीजों को साथ जोड़ा जा सकता है। ये कोई पत्रकारिता नहीं कर रहे वो, और ये चैलेंज भी है
0: बिल्कुल
1: दूसरे साथ में, ये चैलेंज भी साथ ही साथ है, चुनौती भी साथ ही साथ आ रही है। लेकिन डिजिटल माध्यम कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पत्रकारिता की तेजी को तो बढ़ाते हैं, लेकिन साथ ही जो जिम्मेदारी ले आते हैं कि किस तरह से फैक्ट चेकिंग हो, क्या हर व्यक्ति जो बात कह रहा है
0: बिल्कुल
1: उसकी विश्वसनीयता क्या है, तो ये चीजें साथ साथ चलेंगी। लेकिन मैं ये मानता हूं कि सोशल मीडिया ने एक बहुत बड़ा वर्ग जो है पत्रकारिता को दिया है अलग से।
0: जी,
1: होता क्या था कि आप टीवी के दर्शक हो सकते हैं, आप अखबार के पाठक हो सकते हैं, लेकिन अब आप 24 घंटे के दर्शक श्रोता बन गए हैं।
0: जी,
1: तो ये जो है हर वक्त अपडेशन मिलता है।
0: इसी से मेरा अगला सवाल उठता है कि जो आप बात कह रहे हैं कि आपको जो समाचार है वो जल्दी मिल जाता है, अपडेट जल्दी मिल जाती है, पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है गुणवत्ता को लेकर और तथ्यों की शुद्धता को लेकर, जो आपने भी एक शब्द इस्तेमाल में लिया फैक्ट चेकिंग, कि हम कैसे माने कि जो हमें इतनी जल्दी न्यूज संप्रेषित हो रही है वो सही है या गलत है, ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी है पत्रकारों के ऊपर?
1: देखिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी यही है, और यहीं से जो है जो फर्क पैदा होता है ना कि सोशल मीडिया का जो भी इन्फ्लुएंसर है या जो भी सोशल मीडिया पे कुछ लिख रहा है, आजकल जो है नागरिक भी पत्रकार है
0: बिल्कुल
1: आप इससे देखें तो, लेकिन ये पेशेवर पत्रकार में फर्क क्यों है, यही फर्क है कि आप कितने विश्वसनीय हैं,
0: जिम्मेदार
1: वो खबर कितनी सही है। तो यहाँ मुझे लगता है कि कैसे फर्क है, क्या पेशेवर पत्रकार खत्म तो नहीं हो जाएंगे, इस तरह के सवाल भी जो है तैरते हैं कहीं ना कहीं। तो मुझे लगता है यहाँ ये एक अलगाव है, यही जो चीज है जो पत्रकारिता को जिंदा रखेगी, चाहे वो उसके माध्यम बदलते रहें। तो आपने जो बात की कि फैक्ट चेकिंग कैसे हो, ये आपने शायद इसके पीछे छुपा हुआ सवाल मुझे जो समझ में आया वो ये है। तो देखिए सबसे बड़ी बात यही हो रही है कि आप कुछ भी लिख देंगे, आज आप देखिएगा कहीं भी किसी चीज को उठा के डाल देना मात्र वो पत्रकारिता नहीं हो सकती, आप उसके पीछे एक जिम्मेदारी लेकर आती है।
0: कंटेंट क्रिएटर्स जो हैं या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं उन्हें हम पत्रकार नहीं मान सकते, तो जो पेशेवर पत्रकार हैं उनकी जो जिम्मेदारी है वो और बढ़ जाती है ऐसे में, इसको आप थोड़ा और एक्सप्लेन करें तो।
1: सूचनाओं का विस्फोट हो रहा है, सूचना और पत्रकारिता में फर्क हमेशा रहा है रहेगा, पत्रकारिता सूचना आधारित होती है ये भी सही है, बिना सूचना के किसी भी समाचार का निर्माण ही संभव नहीं है मोटे तौर पे हम देखें तो
0: बिल्कुल।
1: तो ये जो आप बात कह रही हैं सूचनाओं का विस्फोट हो रहा है और सूचना लेकर सोशल मीडिया पर भी आ रहे हैं लोग, इसमें कतई वो नहीं। और एक मैं आपको बता दूं कि जो पत्रकार हैं, पेशेवर पत्रकार हैं, बड़े बड़े संस्थान हैं, वहां आप देखेंगे जो नेताओं के हैंडल्स हैं उनकी बीट बन गई है, ये बदलाव है, उन पर आप ध्यान रखते हैं क्योंकि बहुत जल्दी संप्रेषण हो रहा है, तो उनकी एक बीट जो है तैयार हो गई है, एक नया तरह से कहिएगा, ऐसा नहीं होता था पहले। आपने देखेंगे अपराध पत्रकारिता, आप देखेंगे पॉलिटिक्स कवर जो होता था, राजनीतिक पत्रकार, तो अब सोशल मीडिया को भी वॉच किया जा रहा है। लेकिन कैसे विश्वसनीय बने आप
0: जी,
1: किस तरह से आपकी खबर सही है कि नहीं, क्योंकि देखिए डिजिटल फुटप्रिंट छोड़ते हैं आप
0: बिल्कुल,
1: और डाटा का पूरा खेल है ये। आप इस बात को अगर हम टेक्निकली थोड़ा सा इस तरफ जाएं, कोई भी व्यक्ति मैं क्या कर रहा हूं ये डिजिटल फुटप्रिंट है। और देखिए अपराधों में भी ये लागू होता है, आप देखिएगा पहले जब पुलिसिंग होती थी तो पारंपरिक तरीके होते थे, मैं इसको इससे जोड़ता हूं कि कैसे पत्रकारिता और पुलिस, और मैं तो ये कहता हूं कि आपके जीवन के हर आयाम में ये जो है डिजिटाइजेशन डिजिटल जुड़ गया है
0: जी।
1: तो पहले जब चोर को पकड़ते थे तो उसके वो फुटप्रिंट लिए जाते थे जब वो वहां पे जाता था, अब डिजिटल फुटप्रिंट का जमाना आ गया है, तो वो क्या कर रहा है, तो इसी पे है जो आपने कहा कि ये कैसे तय करें, हर माइक लेने वाला व्यक्ति पत्रकार है, तो यही संकट है,
0: यही
1: तो
0: जो तकनीक का उपयोग हो रहा है। और इसमें मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगी, AI जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया जिससे कि इमेजेस क्रिएट कर दी जाती हैं, वॉइसेस क्रिएट कर दी जाती हैं, तो ये भी एक चुनौती के रूप में उभर रहा है।
1: देखिए यहाँ भी वही है कि चुनौती भी है, कि प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि आपदा में अवसर भी है, तो चुनौतियां जब आती हैं तो कहीं ना कहीं आपके लिए अवसर भी लेकर आती हैं। AI का उपयोग भी देखिएगा किस तरह से, जो काम आप 5 घंटे में करते थे वो बहुत जल्द होने लगा है। इसका मतलब ये नहीं है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ह्यूमन इंटेलिजेंस ये दो अलग अलग चीजें हैं, लेकिन दोनों जब साथ आती हैं तो बहुत बदलाव के साथ तेजी भी लाती हैं।
0: बिल्कुल,
1: तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया है और देखिएगा ये आएगा, बदलाव जो है वो हिस्सा रहा है, परिवर्तन संसार का नियम है, तो उसने बहुत

0: सारी चीजों को आसान भी किया है। डाटा जो है बहुत जल्दी अब आपको उपलब्ध होने लगे हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिस पर आप घंटों खर्च करते थे, वो आपके लिए तुरंत तैयार है। लेकिन ये रेडीमेड हो तैयार होना, इसमें बस वही बात वापस आएगी कि जो फेक का चलन बड़ा है, जो चीजें हुई हैं उनसे कैसे निपटे। तो मैं आपको, देखिए जो श्रोता सुन रहे हैं तो उनके लिए भी है कि ये सबसे बड़ा है कि फैक्ट चेक
1: बिल्कुल
0: कैसे हो। तो इसके लिए मैं कुछ चीजें हैं जैसे जो जुड़ी हैं अभी इन दिनों, आप फ्रेम एनालिसिस कर सकते हैं। आप जो आपने बात की कि भाई कैसे पता लगाएं कि वो तस्वीर फेक है, ओरिजिनल है या क्या उसके पीछे है,
1: कैसे
0: तो इसके फ्रेम एनालिसिस कर सकते हैं। आजकल एक तरीका है कि आप जब फोटो डाल के सर्च करते हैं तो भी उसमें चीजें आती है कब ये पहली बार फोटो ली गई, तो वो भी एक तरीका है। उसकी आवाज अगर आप है तो ऑडियो फोरेंसिक जो है ये एक सिस्टम है जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा AI डिटेक्शन टूल्स हैं जो इस पर और आपको बेहतर तरीके से बता सकते हैं,
1: क्या हमें वो सही और गलत की पहचान करने में मदद करेंगे।
0: निश्चित तौर पर, आप ये मानिए उनके जो रिजल्ट्स हैं वो 90-100% तक हैं। यदि आप वास्तव में उसे फैक्ट चेक के साथ जाना चाहते हैं और डीप फेक और इन चीजों से बचना चाहते हैं तो ये जरूरी है। तो डिजिटल सिक्योरिटी वो लेकर आते हैं यदि आप इन सब टूल्स के साथ जाते हैं।
1: बिल्कुल, आपने बहुत बखूबी हमारे श्रोताओं को बताया कि कैसे वो फैक्ट चेकिंग कर सकते हैं और पत्रकारिता के अंदर डिजिटल माध्यम का आना हमारे लिए ऐसे कहें तो अच्छा है, क्योंकि हम बहुत जल्दी जो है वो न्यूज हमारे तक पहुंचती है, अपडेट्स पहुंचती हैं। चुनौतियां जरूर आती हैं सामने, क्योंकि जब अवसर होंगे तो उसके साथ चुनौती आएगी। लेकिन आपने जैसे कहा कि डिजिटल फुटप्रिंट्स छोड़ते हैं हम, तो ऐसे में जहन में एक सवाल आता है कि इससे क्या डेटा की जो गोपनीयता है, किसी भी प्रकार की जो जिसे बोलते हैं कि हम आजकल बहुत ज्यादा साइबर सुरक्षा की बात कर रहे हैं, तो वो भी एक तरीके से जो है एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है हमारी गोपनीयता के ऊपर। तो ऐसे में क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए एक पत्रकार के रूप में?
0: देखिए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल फिर पूछा है आपने। एक और सवाल जो ऐसा है जिसको लेकर लोग आशंकित भी हैं, चिंताएं भी हैं उनकी, और लगता भी है उन्हें कि कोई मुझे देख तो नहीं रहा है, 24 घंटे किसी की नजर तो नहीं है मुझे। और जो अलग अलग अगर आप देखें जो सोशल मीडिया के माध्यम है, वो ये बार बार कहते भी हैं कि हम आपकी जो डाटा है उसको कहीं, ये बहुत इनक्रिप्टेड है, ये इसको कहीं हम साझा नहीं करते, ये तमाम चीज होती है। लेकिन बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जाने अनजाने में हम उसका इस तरह से उपयोग कर जाते हैं कि वो डिजिटल फुटप्रिंट रह ही जाता है। मसलन आप मोबाइल यूज करते हैं और आपकी लोकेशन ऑन है
1: जी,
0: तो ये एक ऐसा वो है कि जिसमें आपको कई बार ध्यान भी नहीं रहता, हमें कहीं पहुंचना है तो हम गूगल मैप लगाते हैं, तो वो जब ऑन रह जाता है तो वो डिजिटल फुटप्रिंट बन जाता है। लेकिन अब आपने जो सवाल पूछा ये थोड़ा सा और मैं इसको एलोबरेट करूं कि आपने पत्रकारिता में ये कितना गोपनीय रह पाता है, तो वही है कि डिजिटल सिक्योरिटी, यहां डिजिटल सिक्योरिटी शुरू होती है कि डिजिटल तौर पर आप सिक्योर कैसे हैं। तो उसके लिए वही बात है, इसमें टेक्नोलॉजी का एक अलग वो है, तकनीकी जो है उसमें ये बहुत सामान्य चीजों के साथ साथ हमें बहुत स्पेशलाइजेशन के तौर पर देखना पड़ता है, जो खासतौर पर टेक्निक एक्सपर्ट है उन चीजों को अपनाना पड़ता है, क्योंकि अलग अलग टूल्स और वो हैं जिसके जरिए आप इससे बच सकते हैं। लेकिन अब सीधी बात करें हम तो, अब अगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि कोई आर्टिकल अगर किसी मोबाइल पर कोई लिख रहा है तो क्या वो कहीं पता चल रहा है क्या, मुझे लगता है आपका सवाल ये होगा, है ना। तो अब इसमें बड़ा रोचक किस्सा है, अभी कल की बात है, मेरे एक मित्र ने कहा कि मेरे बेटे ने AI से पूछा
1: जी
0: कि पापा के मोबाइल का पासवर्ड बता दीजिए। तो ये बहुत सामान्य सवाल है, लेकिन आप देखिए एक बच्चा AI के जरिए कोशिश कर रहा है अपने फादर के मोबाइल को अनलॉक करने की या उसके डिजिटल सिस्टम में घुसने की
1: जी।
0: तो अब ये ऐसा सवाल AI ने, हालांकि उसका कोई उत्तर नहीं दिया, लेकिन एक चुनौती भी है, क्या AI ऐसे उत्तर देने लगेगी? तो ये चीजें वही हैं कि जैसे जैसे आप नए लोक बनाएंगे, लोक की बनाएंगे, ताले नए बनेंगे, चाबियां भी नई बनेंगी। तो हमें तकनीकी के साथ साथ अपने आप को भी सुधारना है, नई चीजों को सीखना भी है और उनको कैसे उपयोग करना है जिससे हमारी निजता बनी रहे, हमारे डाटा सुरक्षित रहे, ये तमाम चीजें साथ साथ चलेंगी। कोई भी एक लोग, मैं बता दूं कि ये टूल आप इस्तेमाल कर लीजिए सब कुछ हो गया, मुझे लगता है ऐसा शायद बरखा जी संभव नहीं है।
1: बिल्कुल, नवाचार को हमें अपनाना है लेकिन सावधान भी रहने की जरूरत है और उसे ठीक से परखें, जानें और उसके बाद ही उस पर विश्वास करें। लक्ष्मण जी, हम बात कर रहे हैं चूंकि डिजिटल जमाने की, डिजिटल दौर में पत्रकारिता की, तो हमारे जो युवा श्रोता है अगर वो इसमें करियर बनाना चाहते हैं, चूंकि आप इतने अनुभवी पत्रकार हमसे रूबरू हो रहे हैं, तो जब हम तकनीक की और व्यावसायिक कौशलों की बात करते हैं तो किन का हमारे युवा श्रोता ध्यान रखें अगर वो इस प्रोफेशन में जाना चाहते हैं तो?
0: देखिए, डिजिटल माध्यम से अगर आप अपनी पत्रकारिता की शुरुआत करना चाहते हैं तो देखिएगा, मुझे लगता है कि आप में वो क्षमता होनी चाहिए कि आप चीजों को एनालिटिक तौर पर तो देख ही सके, लेकिन डाटा को, आने वाली इन्फॉर्मेशन को

0: अपने स्तर पर भी वेरीफाई कर सकें, और न केवल आप इस पर निर्भर रहें कि डिजिटल तरीके से वेरिफिकेशन की हमने बात की ही कि किस तरह से फेक जांचे जा सकते हैं, किस तरह से फेक न्यूज को जांचा जा सकता है, लेकिन एज ए जब आप ट्रेनिंग जर्नलिस्ट हैं यानी आप इस तरफ बढ़ रहे हैं, तो मुझे लगता है खुद पर भी ये वो लगाएं कि कोई खबर जो आपको आती है, देखिए डिजिटल फर्स्ट की अवधारणा है और डिजिटल फर्स्ट के साथ सबसे बड़ी बात है तेजी, जो आपको बहुत जल्दी ब्रेक करना है, लेकिन इसके चलते क्या हुआ, क्रेडिबिलिटी क्राइसिस आ गया।
1: बिल्कुल,
0: जैसे ही आप ये करते हैं बहुत जल्दी रहती है, तो मैं तो खुद चूंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी मैं अभी हूं, तो आप समझिएगा तेजी का एक दबाव रहता है पत्रकार पर, और जो डिजिटल जर्नलिस्ट है उस पर ये दबाव ज्यादा है, तो क्रेडिबिलिटी क्राइसिस जो है वो उससे बचने के तरीके जो हैं वो यही हैं कि आप अपने फैक्ट्स को ढंग से जांच परख लें, उस पर कम से कम जितने भी जो टूल्स बताए हैं उनको अपना लें, देख लें, साथ ही साथ आप खुद ये मान लें कि जो सोर्स है आपका जहां से खबर जनरेट हुई है वो जो है कम से कम रिलायबल है, तो ये एक चीज जरूरी है। इसके साथ साथ देखिएगा वही बातें हैं जो एक पत्रकार के लिए होती है वो डिजिटल जर्नलिस्ट पर भी लागू होती है कि आप कितना आजकल नई जो टूल्स आ रहे हैं उनको लेकर आपने सीखने की क्षमता है, कितने अच्छे से आप यूज कर पाते हैं उनका, आपका टेक्निकल जो नॉलेज है वो भी आप धीरे धीरे क्या है कि आप गैजेट्स जो इस्तेमाल कर रहे हैं ना वो भी कहीं ना कहीं इसमें जुड़ गया है कि आजकल जो है ऑनलाइन एडिटिंग का जमाना आ गया है। एक वो वक्त था जब आपको ध्यान होगा कैसेट में रिकॉर्डिंग होकर जाता था और अब आपको सब कुछ बहुत जल्दी करना है, तो जो फास्ट का जो आया है वो क्रेडिबिलिटी क्राइसिस लेकर आया है, तो इस क्रेडिबिलिटी क्राइसिस से बचने के लिए और साथ ही साथ आपको चूंकि बढ़ना भी इसी पर है तो इन दोनों चीजों को बैलेंस करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। मुझे लगता है हमारे युवा पत्रकार युवा साथी जो पत्रकार बनना चाहते हैं उनको खूब अध्ययन करना चाहिए। अध्ययन जो है मुझे लगता है कि जितना आप सुनेंगे उतना आप बोलेंगे, आप अच्छा इंटरव्यू इतना कर रही हैं, मुझे लगता है आपके सवालात जो हैं इतने अच्छे हैं, तो आपने खूब पढ़ा है, तो जितना आप पढ़ेंगे उतना बेहतर बता पाएंगे, तो यही बात जो है इस पर लागू होती है। बस माध्यम जो है वो आपका बदलता है और माध्यम में तेजी आती है, और उस तेजी के लिए ये जरूरी है कि आप क्रेडिबल जरूर बने, क्योंकि अगर सिर्फ आप तेज रहे तो जैसे आप देखते हैं ना कि ओवर स्पीड से चली हुई गाड़ी एक्सीडेंट लेकर आती है, तो वो आपके करियर में भी हो सकता है कि आपकी दो चार खबरें यदि इसी तरह से उटपटांग तरीके से निकली तो फिर आपको लोग सीरियस नहीं लेते,
1: आप सर्वाइव भी नहीं कर सकते,
0: गंभीरता से नहीं लेते।
1: बिल्कुल, बहुत ही बखूबी आपने हमारे श्रोताओं को बताया कि किस तरीके से उन्हें जो पढ़ने लिखने की रुचि तो होनी चाहिए, साथ में नई तकनीक को अपनाना और टेक्नोलॉजी के साथ में जो है वो एक क्रेडिबिलिटी को हमेशा ध्यान रखें और बोलने के साथ में सुने और लिखने से पहले पढ़ें, ये दो चीजें जो हैं अगर आप ध्यान रखते हैं तो आप बहुत ही अच्छे पत्रकार बन सकते हैं। लक्ष्मण जी, हम जानना चाहेंगे आपसे कि भविष्य की पत्रकारिता को आप किस दिशा में देखते हैं और हमारे जो श्रोता आपको सुन रहे हैं उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: देखिएगा जो पत्रकारिता भविष्य की यदि हम बात करें तो आप मान के चलिएगा कि अभी और बड़े बदलाव इसमें आपको दिखने वाले हैं, नजर आने वाले हैं। AI जो आया है ये मुझे लगता है कि अभी और आगे जाने वाला है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि आज मैं बीकानेर आकाशवाणी के स्टूडियो में बैठकर बात कर रहा हूं, बरखा जी मेरे सामने बैठे हैं, लेकिन इस तरह का टूल बन जाएंगे कि बरखा की AI मुझसे बात करेगी और लक्ष्मण राघव का भी AI वर्जन वहां पर होगा। तो ये जो बदलाव है ये तकनीक के साथ आने वाले हैं, ये भी चुनौती है। जैसे कि मैंने कहीं पढ़ा था जिसने जो चाहा लिखा, जिसने जो चाहा लिखा, ना पुष्टि ना प्रमाण, अब हर हाथ में अखबार और हर जुबा पर तूफान, तो ये भी एक समस्या है। लेकिन ये भविष्य नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति जो है ना कहीं जो उसको लगता है उसका क्रॉस वेरिफिकेशन होता ही नहीं है।
1: बिल्कुल,
0: तो ये एक समस्या है, ये जो भी साथ साथ चलेगी, लेकिन निश्चित तौर पर आने वाले समय में पत्रकारिता जो है वो बहुत ही ग्लोबल होने वाली है और बहुत ही स्पीडी होने वाली है, लेकिन साथ ही साथ हमेशा ये संकट पत्रकारिता में तब भी रहा है और आज भी रहा है कि जब तक वो पत्रकारिता क्रेडिबल नहीं होगी वो लोक पत्रकारिता नहीं बन सकती। भले ही हम उस पर व्यूज बटोर सकते हैं, भले ही हम वो एल्गोरिदम सेट हो सकता है, बहुत सारी चीजें वायरल हो सकती हैं, लेकिन अंतोतगतवा विश्वसनीयता की ही जीत होगी। तकनीक के साथ विश्वसनीयता पत्रकारिता के लिए सबसे जरूरी चीज है।
1: लक्ष्मण जी, आपने हमें कहा कि चाहे पारंपरिक हो या नई डिजिटल पत्रकारिता हो, विश्वसनीयता क्रेडिबिलिटी सबसे ज्यादा जरूरी है, वही जो है लोक जनमानस के अंदर हमेशा चौथे स्तंभ के रूप में खड़ी रहेगी, हम ये कह सकते हैं। तो श्रोताओं, आज की सार्थक चर्चा से हमने जाना कि डिजिटल युग ने पत्रकारिता के लिए जहां नए अवसरों के द्वार खोले हैं, वहीं निष्पक्षता, तथ्यपरकता, विश्वसनीयता और नैतिक मूल्यों को बनाए रखना कई अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। तकनीक चाहे कितनी

0: भी उन्नत हो जाए। पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सत्य, संतुलित और जनहितकारी सूचना लोगों तक पहुंचाना ही रहेगा। लक्ष्मण राघव जी, आपने हमारे श्रोताओं को इतनी महत्वपूर्ण और उपयोगी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया बरखा जी, बहुत धन्यवाद। आकाशवाणी बीकानेर का भी।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे भेंट वार्ता, विषय था डिजिटल युग में पत्रकारिता, अवसर और चुनौतियां। जानकारी दे रहे थे श्री लक्ष्मण राघव, आपसे बातचीत कर रही थी श्रीमती बरखा थानवी व्यास, संयोजन था श्री अमित सिंह का।
3: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: श्रोताओं, अब चलते चलते एक बात और। आज अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस है। हर साल 29 जुलाई को दुनिया भर में मनाया जाता है। ये इसका मुख्य उद्देश्य बाघों के संरक्षण, उनके घटते प्राकृतिक आवासों की सुरक्षा और उनके प्रति जन जागरूकता बढ़ाना है। इसी संदेश के साथ अब हमें इजाजत दीजिए, कल तक नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुप्रभात, आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। लीजिए अब सुनिए फिल्म संगीत।

0: ईश्वर था मोहम्मद रफी का, फिल्म का नाम था लॉफर।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
3: मैंने एक गीत लिखा है।
0: ये स्वर है अनुराधा पौडवाल का, फिल्म का नाम ये नजदीकियां।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: श्रोताओं, अगला गीत हमने लिया है फिल्म याराना से। स्वर है किशोर कुमार का।

ये स्वर था किशोर कुमार का, फिल्म का नाम था रंगोली। कार्यक्रम का अगला और अंतिम गीत लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार के स्वर में, फिल्म का नाम है बेताब।

0: फिल्म का नाम था बेताब। आवाजें थी लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोल मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ पर। समाचार प्रभात कार्यक्रम थोड़ी ही देर में दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।
1: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
2: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
1: और लाइट बिल के
2: अब 0 रुपए कैसे दे।
1: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
2: पक्का।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 1416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे ये सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों से बेहतर तालमेल के साथ काम करने का आह्वान किया। श्री मोदी ने उच्च अधिकारियों के साथ भावी कार्य योजना की समीक्षा की। लोकसभा में लोक परीक्षाओं में अनुचित साधनों के प्रयोग की रोकथाम संबंधी संशोधन विधेयक 2026 पर आज फिर चर्चा होगी। दिल्ली सरकार ने प्रत्येक पात्र महिला को 2,500 रुपए प्रतिमाह की आर्थिक सहायता देने के लिए लक्ष्मी योजना को मंजूरी दी। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सेना की बर्बर कार्रवाई में पिछले 2 दिनों में मरने वालों की संख्या 30 हुई। ईरान ने पश्चिम एशिया में अमरीकी सेना पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। अमरीका और सऊदी अरब की सेनाओं ने भी संयुक्त रूप से इराक में ईरान समर्थित समूहों के खिलाफ हमले किए। और राष्ट्रमंडल खेलों में गुरबीर सिंह 10,000 मीटर दौड़ में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने। हरजिंदर कौर ने भी भारोत्तोलन में रजत पदक अपने नाम किया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपने आवास पर सरकार के सचिवों के साथ दूसरी उच्च स्तरीय बैठक की। उन्होंने वित्त और अर्थव्यवस्था, वाणिज्य और उद्योग तथा प्रौद्योगिकी क्षेत्रों से संबंधित मंत्रालयों और विभागों की भावी कार्यसूची की समीक्षा की। बैठक का मुख्य उद्देश्य विकसित भारत के लक्ष्यों की दिशा में प्रगति को गति देना था। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
6: बैठक के दौरान श्री मोदी ने मंत्रालयों और विभागों के बीच एकजुटता की भावना के साथ काम करने का आग्रह किया। नागरिक केंद्रित शासन के महत्व का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की जनता शासन के केंद्र में रहनी चाहिए। उन्होंने याद दिलाया कि प्रत्येक निर्णय और नीति आम नागरिक के हितों और आकांक्षाओं के अनुरूप होना चाहिए। श्री मोदी ने कहा कि भारत बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण निवेश कर रहा है, लेकिन स्वदेशी प्रौद्योगिकियों के विकास को भी समान प्राथमिकता दी जानी चाहिए। प्रधानमंत्री ने तकनीकी आत्मनिर्भरता और महत्वपूर्ण क्षेत्रों में घरेलू क्षमताओं के निर्माण के महत्व पर जोर दिया। श्री मोदी ने कहा कि ऊर्जा सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता और नागरिकों के कल्याण से घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि देश को नवाचार, विविधीकरण और क्षमता निर्माण में तेजी लाकर ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार को हमेशा युवा, गतिशील और दूरदर्शी बने रहना चाहिए और नई चुनौतियों और अवसरों के अनुरूप फुर्ती और नवाचार के साथ लगातार अनुकूलन करना चाहिए। आदित्य प्रताप सिंह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
5: लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर फिर से चर्चा शुरू होगी। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कल सदन में विधेयक को विचार और

0: पारित कराने के लिए पेश किया था। ये विधेयक लोक परीक्षाओं में अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन के लिए लाया गया है। विधेयक में कई महत्वपूर्ण प्रावधान हैं, जिनमें 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और अपराधियों की संपत्ति को जब्त करने जैसे कठोर दंड शामिल हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि ये नया कानून देश के छात्रों और युवाओं के कल्याण की रक्षा के लिए सरकार की गहरी प्रतिबद्धता का परिचायक है।
1: 2 महीने के भीतर सारी जांच मुकम्मल की जाएगी और उसके बाद जो भी ट्रायल कोर्ट होगा, फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट, उसमें ये 3 महीने, यानी जिस दिन वारदात रिपोर्ट हुई है उस दिन से लेकर के आखिरी निर्णय आने तक 5 महीने से ज्यादा अवधि काल नहीं रहा जाएगा।
0: श्री सिंह ने कहा कि विधेयक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प को भी दोहराता है कि देश के युवाओं के भविष्य से कोई समझौता नहीं होने दिया जाएगा। वहीं कांग्रेस के गौरव गोगोई ने कहा कि सरकार शिक्षा क्षेत्र के प्रति गंभीर नहीं है।
2: ये सरकार शिक्षा विभाग को लेकर गंभीर नहीं है, सुधार नहीं लाना चाहिए। ये सिर्फ एक दिखावा का बिल है, क्योंकि ये बिल एक संशोधन बिल है।
0: भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने इस विधेयक को क्रांतिकारी कदम बताया।
3: ट्रांसफॉर्मेटिव अमेंडमेंट है, इसकी न केवल आवश्यकता है बल्कि ये आज के समय की मांग भी है, और इस अमेंडमेंट को लाना आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की संवेदनशीलता और उनकी जिम्मेदाराना सरकार का प्रमाण। जब एक कंपेटिटिव एग्जामिनेशन कॉम्प्रोमाइज होता है तो उसका असर केवल उस कैंडिडेट पे नहीं होता जिसका भाग्य दाव पर लग जाता है, और ये बिल ये ज्यूरिसडिक्शन की उलझन को सुलझाता है, उसको समाप्त ही कर देता है।
0: समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने विभिन्न परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने पर चिंता व्यक्त की। AITC के अभिषेक बनर्जी, तेलुगु देशम पार्टी के लाबू श्री कृष्ण देव रायलू और शिवसेना के डॉक्टर श्रीकांत शिंदे ने विधेयक का समर्थन किया। तेलुगु देशम के सांसद ने प्रश्न पत्र तैयार करने वाली समितियों के विकेंद्रीकरण की भी मांग की। विधेयक पर अभी चर्चा पूरी नहीं हुई है। पीठासीन अधिकारी संध्या राय ने सदन को आज सुबह 11 बजे फिर से शुरू होने तक के लिए स्थगित कर दिया। पश्चिम बंगाल में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए और नीट परीक्षा के पेपर लीक से संबंधित विरोध प्रदर्शनों के सभी पहलुओं के मूल्यांकन के बाद राज्य सरकार ने विरोध प्रदर्शन में भाग लेने वाले छात्रों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न करने का निर्णय लिया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज रूम AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
4: एक पदार्थ है PM जय, अब गरीबों की जय बन गया।

0: प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बन गए 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4555 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को अपनी स्वीकृति दे दी है। दिल्ली सचिवालय में कल मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में ये निर्णय लिया गया। इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस योजना में पंजीकरण के लिए रजिस्ट्रेशन पोर्टल 1 अगस्त से खुल जाएगा।
2: बहनों के अप्लाई करने के बाद स्क्रूटनी होने के बाद जो भी अप्रूवल रहेगा उसके बाद मुझे लगता है कि राखी पे हम पहली किस्त पहले लॉट की बहनों को दे पाएंगे। ये दिल्ली की बहनों के लिए बहुत ही खुशी का अवसर है कि हमने अपनी सरकार के मात्र 1.25 साल के भीतर इसको कर दिया है दिल्ली की बहनों के लिए, जिसका लाभ अब उस श्रेणी में आने वाली सभी बहनें ले पाएंगी।
1: झारखंड में सुरक्षा बलों ने नक्सल विरोधी अभियान में बड़ी सफलता हासिल की है। प्रमुख माओवादी नेता और पोलित ब्यूरो सदस्य मिसर बेसरा को धनबाद गिरिडीह सीमा से गिरफ्तार

0: किया गया है। उस पर 1 करोड़ रुपए का इनाम था। क्षेत्रीय समिति सदस्य मेहनत उर्फ मोचू, माओवादी कार्यकर्ता गौरव और 2 ग्रामीणों को भी संयुक्त अभियान के दौरान गिरफ्तार किया गया। आध्यात्मिक और शैक्षणिक गुरुओं को समर्पित गुरु पूर्णिमा का पर्व आज मनाया जा रहा है, जिसे व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस अवसर पर लोग अपने गुरुओं को याद करते हैं और उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। भारतीय जनता पार्टी आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रव्यापी श्री गुरु रविदास महाराज समरसता संकल्प अभियान का शुभारंभ करेगी। इस अभियान का औपचारिक उद्घाटन आज वाराणसी के श्री गोवर्धनपुर स्थित संत रविदास के जन्म स्थान पर किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
1: आज वाराणसी के सीर गोवर्धनपुर स्थित संत रविदास के जन्म स्थान पर इस अभियान का औपचारिक शुभारंभ किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज शाम यहां संत रविदास के जन्म स्थान पर दर्शन करेंगे और उनका आशीर्वाद लेंगे। इस अभियान के तहत संत रविदास के पवित्र जन्म स्थान की मिट्टी को 131 कलशों में भरकर उत्तर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों और देश भर के अन्य राज्यों में भेजा जाएगा। एक समरसता संकल्प सभा का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें लगभग 25,000 लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। कार्यक्रमों की यह श्रृंखला माघी पूर्णिमा और संत रविदास की जयंती यानी अगले वर्ष 20 फरवरी तक चलेगी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्य भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी, संगठन महासचिव धर्मपाल सिंह और अन्य प्रमुख नेताओं के इस कार्यक्रम में शामिल होने की उम्मीद है। पवित्र मिट्टी से भरे 131 कलशों की विधिवत पूजा की जाएगी और उन्हें विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधियों को सौंप दिया जाएगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: मध्य प्रदेश में भी आज यह अभियान शुरू होगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर पीओजीके में बर्बर सरकारी कार्रवाई में मरने वालों की संख्या पिछले 2 दिनों में बढ़कर 30 हो गई है, जबकि कई अन्य घायल हुए हैं। इस बीच एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पाकिस्तानी सेना द्वारा पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर पीओजीके में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ घातक बल के प्रयोग की खबरों की स्वतंत्र और पारदर्शी जांच की मांग की है। अमेरिका ने कहा है कि ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने कल रात पश्चिम एशिया क्षेत्र में तैनात अमेरिकी बलों पर अचानक हमले के प्रयास में कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने कहा कि सभी ईरानी मिसाइलों को रोक दिया गया और अमेरिकी बल सतर्क और उच्च स्तर की तैयारी में है। अमेरिका ने यह भी दावा किया कि पिछले 72 घंटों में 30 से ज्यादा हवाई ड्रोन हमलों के साथ ही अमरीका और सऊदी लड़ाकू विमानों ने पूर्वी इराक में कई रसद और हथियार स्थलों पर हमले किए। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में गुरवीर सिंह ने पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। वो इस स्पर्धा में पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। हरजिंदर कौर ने महिलाओं की 70 किलोग्राम भारोत्तोलन स्पर्धा में रजत पदक जीता है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
2: धन्यवाद मनीष। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों के पहले पन्ने पर पेपर लीक मुद्दे पर संसद में हुई बहस और पेपर लीक मामलों को रोकने के लिए बनाए गए नए कानून से संबंधित समाचार छाए हुए हैं। लोकसत्ता ने अपनी पहली खबर को शीर्षक दिया है पेपर लीक, मोदी सरकार ने बनाया विश्व का सबसे कठोर कानून। राजस्थान पत्रिका ने सरकार और विपक्ष दोनों के वक्तव्यों से अपनी खबरों की शुरुआत की है। पंजाब केसरी ने इस खबर को शीर्षक दिया है पूर्व सरकारों में भी हुए पेपर लीक। साथ ही प्रियंका गांधी की इस टिप्पणी को भी प्रमुखता से छापा है, प्रधानमंत्री को कैमरे का नहीं दिल का एंगल बदलना पड़ेगा। दैनिक भास्कर ने पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर की घटनाक्रम को पहले पन्ने पर सबसे ऊपर प्रकाशित करते हुए शीर्षक दिया है पीओके में सेना ने चुनाव का विरोध कर रहे लोगों पर गोलियां बरसाई, 30 मौतें। पत्र ने मारे गए नागरिकों की तस्वीर भी प्रकाशित की है। अमर उजाला ने राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के शानदार प्रदर्शन को पहली खबर बनाते हुए शीर्षक दिया है 1 दिन में 6 पदक। पत्र ने पदक विजेता खिलाड़ियों की तस्वीरें छापी हैं। जनसत्ता ने अपने संपादकीय को शीर्षक दिया है खतरे का तापमान। पत्र का कहना है कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए दुनिया भर में कई योजनाएं और कार्यक्रम बनाए गए हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर उन्हें अमल में लाने की गंभीरता कहीं नजर नहीं आती। विडम्बना यह है कि कार्बन उत्सर्जन में जिन देशों का योगदान सबसे कम है उन्हें ही जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का खामियाजा सबसे ज्यादा भुगतना पड़ रहा है।
0: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार के विभिन्न

साथ काम करने का आह्वान किया। श्री मोदी ने उच्च अधिकारियों के साथ भाग ने कार्य योजना की समीक्षा की। लोकसभा में लोक परीक्षाओं में अनुचित साधनों के प्रयोग की रोकथाम संबंधी संशोधन विधेयक 2026 पर आज फिर चर्चा होगी। दिल्ली सरकार ने प्रत्येक पात्र महिला को 2,500 रुपए प्रति माह की आर्थिक सहायता देने के लिए लक्ष्मी योजना को मंजूरी दी। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सेना की बर्बर कार्रवाई में पिछले 2 दिनों में मरने वालों की संख्या हो 30। ईरान ने पश्चिम एशिया में अमरीकी सेना पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। और राष्ट्रमंडल खेलों में गुरमीत सिंह 10,000 मीटर दौड़ में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय हो गए हैं। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ।

0: before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi calls for breaking horizontal and vertical silos within government to ensure close coordination, reviews future action agenda of ministries and departments. Lok Sabha to resume discussion on public examinations, prevention of unfair means amendment bill 2026 today. Delhi government approves Lakshmi Yojana to provide financial assistance of 2,500 rupees per month to every eligible woman. Death toll and brutal crackdown by Pakistani forces in POJK rises to 30 during past 2 days. Iran launches multiple ballistic missiles towards US forces in West Asia. US and Saudi forces carry out joint precision strikes against Iran-aligned groups in Iraq. And Gulveer Singh becomes the first Indian to win silver medal in the men's 10,000-meter race at the Commonwealth Games. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
1: आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के समय 8:30 हो चुके हैं। ये समय है कार्यक्रम सौरभ का। आज हम आपको सुना रहे हैं कविता पाठ। कवित्री हैं श्रीमती मनीषा आर्य सोनी। तो आइए सुनते हैं कविता पाठ।
2: मेरी पहली कविता का शीर्षक है प्यास। बारहा खोलकर देखना नल को, प्यास के लबों को कुछ और सुखा जाता है। बिना वजह कान उमेटना उसके, जैसे बच्चे से उगलवा रहे हों मुट्ठी में छिपाई हुई टॉफी का सच। बेसब्री से नल के मुहाने पर उंगली से खटखटाना और आती हुई नमी की चाप को महसूसने की कवायद करना। दूरबेल बजाकर धूप में खड़े होकर करता है मेजबान का इंतजार कोई, जैसे कदमों की आहट का इंतजार हो मेहमान को जैसे। और कभी पागलपन की हद पार कर जाना, उस अंधी सुरंग में एक आंख बंद करके पानी की रोशनाई को ढूंढना। जैसे बेरोजगार झूठी उम्मीद से खुरचता है खुश्क जमीन अपनी जेब की। कभी कभी शक की और सन की प्रेमी की तरह नल की वफा पे शक करना और तिनके घुसा कर उसमें कुछ बूंदों को रंगे हाथ पकड़ना, फिर तीखा सा मुस्कुराना। क्यों सारी प्यास का आंदोलन नल के समक्ष है? प्यास तो पानी की मुंतजिर है। प्यास प्यासी सी हलत में दम तोड़ रही है नमक ज़दा पसीना चक्कर। प्यास नल के मकबरों में दफन हो जाती है अक्सर। देखो पानी ने फिर से प्यास की प्रीत नहीं निभाई। शिवालों की भेंट चढ़ गया जलाभिषेक बनकर। शिवालों की भेंट चढ़ गया जलाभिषेक बनकर। दूसरी कविता को नाम दिया है मेरे पंचतत्व। एक आसमां है बहुत ऊपर तक उठा हुआ, जहां मेरे हिस्से की हर छोटी बड़ी उड़ान महफूज रखी है। एक जमी है बहुत पुख्ता सी, जहां मेरे सपनों की फसल बेरुतबे लहलहा जाती है। एक कतरा पानी भी है उन आंखों के दरिया का, जिसे गंगा कह के पुकारा तो दम तोड़ती इच्छाओं को मोक्ष मिला। हवाओं से फितरत है उसकी, मेरे पतझर अपनी पनाहों में ले लेता है। मगर उसमें जलती यज्ञ ज्वाला ऊपर तक क्यों नहीं जाती? जब भी आहूत करती हूँ उसमें प्रश्नों की संविधाएं। ऐ मेरे पंच तत्व, अब तो अपना मौन तोड़ो। अगली कविता को पिता के चरणों में समर्पित करते हुए। हिफाजतों का वादा हिदायतों का दायरा सा है। हिफाजतों का वादा हिदायतों का दायरा सा है। मशवरों से लबरेज पैमाना ख्वाबों का औसार सा है। पकती है जहाँ वादों की फसल जीने के हुनर का सख्त कायदा सा है। वजूद की कच्ची पक्की मुंडेर पर कसी हुई तारबंदी के फायदे सा है। उनके नाम के मजबूत गुंबज के तले मेरा नाम भी कितना मानीखेत सा है। देनी होती है जब खुदा को बे इंतहा इज्जत, कह देते हैं तू मेरे माँ बाप सा है। अब भी पड़ जाती है गाहे बगाहे जब उनकी डांट, तो लगता है मेरा बचपन कितना महफूज सा है। आश्वासन गीत। मौसमों के झूठे वादे फिर भी मन आश्वस्त है। झूम कर आएगा सावन, मन खिला बसंत है। भाग्य के आकाश पर थम गई है रात क्या, बुझ गया आशा का दीपक, हो गई है बात क्या। नन्हे से जुगनू से सीखा स्वप्रकाश अनंत है। नैनों से झरता है सावन, मन खिला बसंत है। मौसमों के झूठे वादे फिर भी मन आश्वस्त है। झूम कर आएगा सावन, मन खिला बसंत है। गम से सीखा मुस्कुराना, खो के सीखा जीत क्या। पीठ पर जब घाव देखे जाना तब है मीत क्या।

भी मन के फूल में विश्वास का मकरंद है, नैनों से झरता है सावन, मन खिला बसंत है, मौसमों के झूठे वादे फिर भी मन आश्वस्त है, झूम कर आएगा सावन, मन खिला बसंत है। तन्हाई को शब्दों में कुछ इस तरह से पिरोया है। तन्हाई गर न होती तो कौन मनु नवजीवन रचता, जीवन की विभीषिका को कैसे नवसृजन से रचता, रची नहीं जाती रिचाएं अनावश्यक कोलाहल में, किस सन्नाटे में जाते शिव कैलाश के सन्नाटों में, तन्हा ही देखा जाता है बदलाव का चेतन सपना, तन्हाई में लगाई जाती अपनों परायों की गणना, शाश्वत सन्नाटों की वीणा में जीवन की झंकार है, चिर सनातन सन्नाई है, चिर सनातन तन्हाई है, शेष खंडित टंकार है, चिर सनातन तन्हाई है, शेष खंडित टंकार है। तन्हाई में ही रोया करता है शाम को खाली हाथ लौट कर आया पिता, तन्हाई में ही रोया करती है सरहद पर बेटे को भेजने वाली माँ, तन्हाई में ही रो पड़ती है ससुराल में माँ का आंगन याद करके बेटी भी, बहन की विदाई में तन्हा ही कहीं रोता है भाई भी। बस वो ही लोग तन्हाई से भागते रहेंगे जो दिखावे के झूठे बाजार में अपने सस्ते अशकों का मोल लगाएंगे हजार में, अपने किए कामों का एहसान जताना चाहते हैं, वो क्या जाने कि तन्हाई बेशकीमती होती है, अनमोल होती है, ये वक्त की रफ्तार से गिरा एक अनमोल मोती है, ये वक्त की रफ्तार से गिरा एक अनमोल मोती है। अंगुली करे मतदान तो हो लोकतंत्र बलवान, निर्बल की वाणी हो मुखर जागे स्वाभिमान, उंगली उठा न गैर पर तुझ पर भी है निशान, तीन तेरी ओर है तुझको दे इल्जाम, बहन की उंगली शगुन तिलक से करती भाई का मान, माँ की उंगली से काला टीका देता अभय का दान, उंगली थाम निशक्त जन की करे मानवता अभिमान, उंगली थाम भटके बचपन की हो बड़प्पन से पहचान, उंगली थाम कलाई पकड़ी ये निकृष्ट है काम, किसी भूले की थाम उंगली पहुंचा दे उसके धाम, या फिर उंगली थामे अनपढ़ की कर शुरू साक्षर अभियान, निरक्षर की झोली में भर दे अक्षर अक्षर का ज्ञान, निरक्षर की झोली में भर दे अक्षर अक्षर का ज्ञान। कैसे जागे भाग्य बंधु सुप्त हो जब चेतना, अलसाई आंखों में कैसी स्वप्न की संरचना, ऊर्जा का कलश लेकर रश्मियां द्वारे खड़ी, मान रख इन आहटों का ये भाग्य में किसके पड़ी, बीत जाए अवसाद फिर रह जाती है वेदना, रीते हाथों में रह जाती रेखाओं की विडंबना, कैसे जागे भाग्य बंधु सुप्त हो जब चेतना, औंधे मुंह पड़े रहने से श्रेष्ठ कहीं मृत्यु वरण, मार्ग प्रशस्त होता है उनका जिनके बढ़ जाते चरण, निर्विवाद है कर्म पूजन और उसकी साधना, प्रदीप्त कर विश्वास मन में हो सफल आराधना, कैसे जागे भाग्य बंधु सुप्त हो जब चेतना, अलसाई आंखों में कैसी स्वप्न की संरचना। इस दफा कुछ ऐसा सोचा है अर्थवान जिससे अलगाव कुछ मानिखेत सा लगता है, कि जैसे धरती और आकाश कभी न होंगे एक, तो क्या धरती की उर्वरा खत्म हो जाती है, या आकाश कब चांद सूरज अपने ब्लैक होल में डालकर सोग मनाता है, वो अपना प्यार भिजवा देता है हवा के हाथों, बादलों से भरा लिफाफा देकर, धरा भी जवाबी खत में भेज देती है हरी भरी वर्णमाला से लिखी पाती प्यार भरी, सृष्टि यूं समझा देती है कि संप्रभुता कभी साथ साथ नहीं हो सकती, एक नहीं हो सकती, फिर भी संपोषण तो करती ही है। ओम शांति शांति शांति। एक गजल आज के सूरते हाल पर, मुझको जो देता नहीं है मेरे हक की राह दे, उस मेहरबा को दिल की तसल्लियां नसीब हों, दिल के आशियाने को है मुद्दतों का इंतजार, गुजरे कभी खुशी तो मेजबानियां नसीब हों, मुझको जो देता नहीं है मेरे हक की राह दे, उस मेहरबा को दिल की तसल्लियां नसीब हों, जुबां पे शोले रखते हैं और नजर में आतिशें, जुबां पे शोले रखते हैं और नजर में आतिशें, इन दिल जलों को भी कभी खामोशियां नसीब हों, इन दिल जलों को भी कभी खामोशियां नसीब हों, जिन महफिलों में शोर है और जिस्म की नुमाइशें, जिन महफिलों में शोर है और जिस्म की नुमाइशें, इन महफिलों को गीत और रुबाइयां नसीब हों, मुझको जो देता नहीं है मेरे हक की राहतें, उस मेहरबा को दिल की तसल्लियां नसीब हों, कोख कब्र क्यों बने क्यों रुक जाएं पैदाइशें, कोख कब्र क्यों बने क्यों रुक जाएं पैदाइशें, जन्म लेने दो कि इन

0: को लोरियां नसीब हों, जन्म लेने दो कि इनको लोरियां नसीब हों। मुझको जो देता नहीं मेरे हक की राहतें, उस मेहरबां को दिल की तसल्लियां नसीब हों। माँ की आंखों में बसा है एक सदी का इंतजार, माँ की आंखों में बसा है एक सदी का इंतजार। वृद्धाश्रमों को भी कभी चिट्ठियां नसीब हों, वृद्धाश्रमों को भी कभी चिट्ठियां नसीब हों। दहेज में जली कभी वो जल गई तेजाब से, दहेज में जली कभी वो जल गई तेजाब से। जलाने वाले तुझको भी बेटियां नसीब हों, जलाने वाले तुझको भी बेटियां नसीब हों। मुझको वो देता नहीं मेरे हक की राहतें, उस मेहरबां को दिल की तसल्लियां नसीब हों।
1: अभी आप सुन रहे थे कविता पाठ, कवित्री थी मनीषा आर्य सोनी, कार्यक्रम था सौरभ, आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोलमारू चैनल है।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: आपका व्यवसाय आपकी पहचान,
5: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
4: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान,
5: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
4: बस आइए करणी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
5: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
4: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
5: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
4: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
5: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज जन जन तक।
1: श्रोताओं, सड़क पर चलते समय हमें यातायात के नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। दुपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का उपयोग जरूर करें। अपने आसपास स्वच्छता रखने के लिए हफ्ते में एक दिन, जी हां सप्ताह में एक दिन भी अगर हम अपने आसपास की साफ सफाई का जिम्मा ले लें तो हम स्वच्छता अभियान में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

श्रोता, हम आपको याद दिलाना चाहेंगे आज रात 10 बजे संसद में प्रश्नकाल की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग का प्रसारण किया जाएगा। ये दिल्ली केंद्र से रिले होता है। इसी सभा में 11 बजे आप सुनेंगे फिल्म संगीत, जो कि भूले बिसरे गीत के नाम से आप सुनते हैं। जी हां, पुराने फिल्मी गीत आप सुन सकते हैं इसी सभा में 11 बजे।

दोपहर 12 बजे हिंदी में समाचार होते हैं और कार्यक्रमों का विवरण आप सुनते हैं 12:05 पर। 12:10 का समय होता है लोक संगीत का। 12:40 पर आप सुनते हैं फिल्म संगीत।

हमें अपने स्वयं के साथ साथ बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आसपास अगर पानी इकट्ठा होता है, कीचड़ होता है, तो हम उसका समाधान करें। अगर कोई बड़ी समस्या है तो हमें प्रशासन का ध्यान उस ओर आकर्षित करना चाहिए, ताकि मौसमी बीमारियों से हम बच सकें।

आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ पर 8:45 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए सुगम संगीत।

मां गर्ग को अभी आप सुन रहे थे। कार्यक्रम है सुगम संगीत। आइए अब सुनते हैं शोभना राव को।

0: पुष्पा हंस को अभी आप सुन रहे थे। इसके साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अभी यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज पर। सुबह के 9 बजने को है, थोड़ी ही देर में हिंदी में प्रादेशिक समाचार जयपुर अजमेर केंद्र से रिलीज किए जाएंगे।
1: आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर फिर से चर्चा शुरू होगी। गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज शिक्षा के क्षेत्र में 947 करोड़ रुपए से अधिक की सौगात देंगे। राज्य के प्रमुख विश्वविद्यालयों में राजस्थानी भाषा अध्ययन केंद्र बनाए जाएंगे और मॉनसून के एक बार फिर सक्रियता से प्रदेश में मौसम खुशनुमा। आज भी 24 जिलों के लिए बारिश का येलो अलर्ट। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर फिर से चर्चा शुरू होगी। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कल सदन में विधेयक को विचार और पारित कराने के लिए पेश किया था। ये विधेयक लोक परीक्षाओं में अनुचित साधनों की रोकथाम के अधिनियम 2024 में संशोधन के लिए लाया गया है। विधेयक में कई महत्वपूर्ण प्रावधान हैं, जिनमें 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और अपराधियों की संपत्ति जब्त करने जैसे कई कठोर दंड शामिल हैं। श्री सिंह ने कहा कि पेपर लीक से जुड़े मामलों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विधेयक में हर राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश में दैनिक सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का प्रावधान है।
2: 2 महीने के भीतर सारी जांच मुकम्मल की जाएगी और उसके बाद जो भी ट्रायल कोर्ट होगा, फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट, उसमें ये 3 महीने यानी जिस दिन वारदात रिपोर्ट हुई है उस दिन से लेकर के आखिरी निर्णय आने तक 5 महीने से ज्यादा अवधि काल नहीं रहा जाएगा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आवास पर सरकार के सचिवों के साथ दूसरी उच्च स्तरीय बैठक की। उन्होंने वित्त एवं अर्थव्यवस्था, वाणिज्य एवं उद्योग तथा प्रौद्योगिकी क्षेत्र से संबंधित मंत्रालयों और विभागों की भावी कार्य सूची की समीक्षा की। कल हुई इस बैठक का मुख्य उद्देश्य विकसित भारत के लक्ष्यों की दिशा में प्रगति देना था। श्री मोदी ने मंत्रालयों और विभागों के बीच मजबूत टीम बनाने का आह्वान किया और अधिकारियों से साझा उद्देश्य की भावना के साथ काम करने का आग्रह किया। गुरु पूर्णिमा आज देश और प्रदेश में आस्था और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। इस उपलक्ष्य में विभिन्न धार्मिक स्थलों पर कार्यक्रम रखे गए हैं। देवस्थान विभाग की ओर से प्रदेश भर में गुरु वंदन कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। प्रदेश के सभी जिलों में 516 संतों और महंतों के उनके आश्रम, मठ और मंदिरों में जाकर सम्मान किया जाएगा। इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का गुरु वंदन संदेश भी भेंट किया जाएगा। संतों और महंतों को सम्मान स्वरूप श्रीफल, शॉल, दुपट्टा, मिठाई और 2100 रुपए की सम्मान राशि प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भरतपुर के लुधावई स्थित बड़ा हनुमान मंदिर पहुंचकर साधु संतों का सम्मान करेंगे। गुरु पूर्णिमा पर मुख्यमंत्री भरतपुर की वैर तहसील के खेड़ली गुजर गांव पहुंचकर शिक्षा के क्षेत्र को 947 करोड़ रुपए से अधिक की सौगात देंगे। मुख्यमंत्री मिशन पढ़ो राजस्थान अभियान की भी शुरुआत करेंगे। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज एक दिवसीय दौरे पर भरतपुर पहुंचेंगे और वे बैर तहसील के खेड़ली गुजर पहुंचकर भरतपुर जिले में शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, सड़क, ऊर्जा, नगरीय विकास एवं आधारभूत संरचना से जुड़ी परियोजनाओं को गति देने के उद्देश्य से 793.84 करोड़ रुपए की लागत से 21 कार्यों का शिलान्यास करेंगे तथा 268.40 करोड़ रुपए की लागत के 18 कार्यों का लोकार्पण करेंगे और प्रदेश के सरकारी स्कूलों के 8वीं तक के विद्यार्थियों को ड्रेस के लिए DBT के माध्यम से राशि उनके बैंक खातों में ट्रांसफर करेंगे। शिव कुमार वशिष्ठ, आकाशवाणी समाचार।

0: भरतपुर।
1: राजस्थान समान सिविल संहिता यूसीसी के प्रारूप को लेकर उच्चतम न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय परामर्श बैठक आयोजित की गई। जयपुर में स्थित शासन सचिवालय में हुई वीसी के माध्यम से इस बैठक में समिति के अध्यक्ष न्यायमूर्ति देसाई ने कहा कि समिति का एकमात्र उद्देश्य लैंगिक विषमताओं को दूर करना और समाज के संवेदनशील वर्गों को सामाजिक तथा वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। प्रस्तावित प्रारूप में धार्मिक स्वतंत्रता, रीति रिवाजों और परंपराओं में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा तथा संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत सभी को प्राप्त धार्मिक स्वतंत्रता पूरी तरह सुरक्षित रहेगी। बैठक में विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, गोद लेने और भरण पोषण से जुड़ी प्रक्रियाओं को सरल बनाने पर भी चर्चा हुई। आमजन से प्रारूप पर 5 अगस्त तक आधिकारिक पोर्टल या QR कोड के माध्यम से सुझाव मांगे गए हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। राज्य के प्रमुख विश्वविद्यालयों में राजस्थानी भाषा अध्ययन केंद्र स्थापित किए जाएंगे। राज्यपाल एवं कुलाधिपति हरिभाऊ बागड़े की पहल पर राज्य वित्त पोषित प्रमुख राजस्थान विश्वविद्यालय, जयनारायण मोहन व्यास विश्वविद्यालय, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय तथा महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय सहित 11 यूनिवर्सिटीज को इस संबंध में निर्देश दिए गए हैं। राजभवन की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि नई शिक्षा नीति में मातृभाषा में अध्ययन को प्राथमिकता दिए जाने के अनुरूप विश्वविद्यालयों में ये अध्ययन केंद्र स्थापित किए जाएंगे। पत्र के अनुसार राजस्थानी प्रदेश के बड़े भूभाग में बोले जाने वाली प्रमुख भाषा है और ये राज्य की संस्कृति का भी प्रतिनिधित्व करती है। विश्वविद्यालयों से कार्रवाई शुरू कर इसकी सूचना राजभवन को भेजने के लिए कहा गया है। आज अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है। ये दिन बाघों और उनके प्राकृतिक आवासों के संरक्षण के उद्देश्य से हर वर्ष 29 जुलाई को मनाया जाता है। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया संदेश के माध्यम से सभी से बाघों के संरक्षण, प्रकृति, वन्य जीव और भावी पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य के लिए सामूहिक जिम्मेदारी निभाने की अपील की है। प्रदेश में बाघ संरक्षण के लिए विशेष प्रयासों के नतीजे सामने आ रहे हैं। जहां सरिस्का बाघ अभयारण्य में बाघों की दहाड़ गूंज रही है, वहीं करौली का कैला देवी अभयारण्य रणथंभौर से छोड़े गए बाघों के लिए सुरक्षित आशियाना बन गया है। रणथंभौर बाघ परियोजना बाघों के संरक्षण को लेकर देश भर में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। पेश है सवाई माधोपुर से हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
2: वर्ष 1973 में बाघ परियोजना घोषित होने के बाद से रणथंभौर के राष्ट्रीय उद्यान घोषित होने और विश्व स्तर तक प्रसिद्धि के पीछे वन विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों के कठिन परिश्रम मेहनत के साथ साथ स्थानीय ग्रामीणों की सहभागिता भी प्रमुख है। वर्तमान में यहां 1700 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में करीब 78 बाघ, बाघिन और शावक विचरण कर रहे हैं। लाखों की संख्या में आने वाले देशी विदेशी सैलानियों, फोटोग्राफर, मूवी मेकर तथा रिसर्चर की पहली पसंद बन चुका है। वर्ष 2008 से राज्य के का मुकंदरा, रामगढ़ विषधारी तथा करौली धौलपुर वनों में भी बाघों को विस्थापित कर रणथंभौर के अलावा पूरे राज्य के अन्य क्षेत्रों में बाघ संरक्षण सहित पर्यटन तथा रोजगार के अवसर पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। सतीश वर्मा, आकाशवाणी समाचार, सवाई माधोपुर।
1: और अब मौसम। प्रदेश में मॉनसून की एक बार फिर सक्रिय वापसी से मौसम खुशनुमा हो गया है। कई जगहों पर बादल छाए हुए हैं, वहीं कई स्थानों पर झमाझम बरसात का दौर जारी है। सिरोही में रात भर से रुक रुक कर बारिश हो रही है। माउंट आबू में धुंध छाई हुई है और सुहावना मौसम पर्यटकों को आकर्षित कर रहा है। सवाई माधोपुर में कल दिन भर चले बरसात के दौर से कई स्थानों पर नदी नालों में पानी की अच्छी आवक हुई। रणथंभौर वन क्षेत्र में हुई भारी बरसात के बाद त्रिनेत्र गणेश मार्ग बाधित हो गया। मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं का आवागमन आगामी आदेश तक बंद किया गया है। इस बीच मौसम विभाग ने आज 24 जिलों के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। यहां हल्की से मध्यम बरसात हो सकती है। वहीं आज से जोधपुर संभाग को छोड़कर बाकी सभी 6 संभागों के कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर फिर से चर्चा शुरू होगी। गुरु

0: पूर्णिमा के उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज शिक्षा के क्षेत्र के 947 करोड़ रुपए से अधिक की सौगात देंगे। राज्य के प्रमुख विश्वविद्यालयों में राजस्थानी भाषा अध्ययन केंद्र स्थापित किए जाएंगे और मॉनसून की एक बार फिर सक्रियता से प्रदेश में मौसम खुशनुमा हुआ। आज भी 24 जिलों के लिए बारिश का येलो अलर्ट। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोले मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के समय 9:10 हो चुके हैं। आइए अब सुनते हैं लोक संगीत।

0: अब्दुल शकूर सुलेमानी को अभी आप सुन रहे थे। लोक भजन में श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम लोक संगीत आकाशवाणी बीकानेर के ढोल मारू चैनल से।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1800 420 2233 पर कॉल करें।

0: को अभी आप सुन रहे थे।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
0: आइए अब सुनते हैं अफरोज बानो के स्वर में ये लोकगीत।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: लोक संगीत के कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं पद्मा व्यास का गाया ये लोकगीत।

अपने व्यास के गए इस लोकगीत के साथ ही लोक संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोल मारू चैनल है। 9:30 होने को है। लीजिए अब सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: संबंध
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ विमलेश।
1: और मैं हूँ अजीत। तो आइए करते हैं शुरुआत हमेशा की तरह एक खूबसूरत विचार से, जिसे भेजा है पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग टेलर, पूना राम देवांगन और कृष्ण देवांगन जी ने। लिखते हैं,
2: तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारा धैर्य है, क्योंकि शांत रहने वाला इंसान हर तूफान पार कर जाता है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको इस सुंदर विचार के लिए। आइए सुनते हैं पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी का। लिखते हैं,
2: सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी।
1: नमस्ते।
2: उमंग कार्यक्रम सुनकर दिल खुशी से झूम जाता है। ये कार्यक्रम नंबर वन कार्यक्रम है। ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी ये कार्यक्रम उमंग कार्यक्रम में सुना और बहुत पसंद आया। ये कार्यक्रम बेहतरीन अंदाज के साथ सुनवाया गया, जो कि हमें बहुत अच्छा लगा।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस संदेश के लिए। अगला हमें मिला है संदेश छत्तीसगढ़ नगर पंचायत पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा जी का। इसके साथ साथ
2: मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शाहनवाज सरफराज, फरदीन, सुहान अरजान और अबान अब्बासी।
1: आपने भेजा है हमें संदेश ऊपरकोट बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से। अगला संदेश हमें मिला है संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव का।
2: हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़खे, श्रीमती नंदा बोड़खे और हनुमान बोड़खे।
1: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं आप सबका संदेश भेजने के लिए। निवेदन है इसी प्रकार से संदेश भेजते रहें और हमारी प्रश्नोत्तरी में भी भाग लेते रहें। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारी लघु प्रेरक कथाओं की श्रृंखला में।
2: आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और प्रेरक प्रसंग। मित्रों, हम सब महान आविष्कारक थॉमस अल्वा एडिसन के नाम से परिचित हैं।
1: जी श्रोता, वे मुख्य रूप से बिजली के बल्ब और प्रारंभिक चलचित्र कैमरे के आविष्कार के लिए जाने जाते हैं।
2: जी,
1: लेकिन सच तो ये है कि उन्होंने 1000 से भी अधिक पेटेंट लिए, जो अपने समय में एक असाधारण उपलब्धि थी।
2: जब एडिसन बिजली के बल्ब का आविष्कार कर रहे थे, तब उन्होंने उपयुक्त फिलामेंट खोजने के लिए हजारों प्रयोग किए। अधिकांश प्रयोग असफल रहे। कहते हैं कि वे लगभग 10,000 बार असफल हुए।
1: एक बार की बात है श्रोताओं, बिजली के बल्ब के आविष्कार के बाद एक पत्रकार ने जब उनसे पूछा कि आप हजारों बार असफल हो चुके हैं, क्या आपको कभी निराशा नहीं हुई?
2: एडिसन ने मुस्कुराकर उत्तर दिया,
1: मैं असफल नहीं हुआ हूँ, बल्कि मैंने केवल 10,000 ऐसे तरीकों को ढूंढने में सफलता पाई है जो काम नहीं करते।
2: इस कथन का मूल अंग्रेजी वाक्य है, आई हैव नॉट फेल्ड, आई हैव जस्ट फाउंड 10,000 वेज दैट वोंट वर्क।
1: श्रोताओं, असफलताओं को देखने का यह दृष्टिकोण सचमुच कितना सकारात्मक और श्लाघनीय है। इस सकारात्मक सोच ने उन्हें लगातार प्रयास करते रहने की प्रेरणा दी
2: और अंततः उन्होंने ऐसा फिलामेंट खोज लिया जिससे व्यवहारिक विद्युत बल्ब का निर्माण संभव हो सका।
1: तो श्रोताओं, इस प्रसंग से क्या प्रेरणा मिलती है? यही ना कि सफलता अंत नहीं बल्कि सीखने के अवसर का प्रारंभ है।
2: हर असफल प्रयास हमें सफलता के एक कदम और निकट ले जाता है, यदि हम में निरंतरता बनी रहे और
1: धैर्य, निरंतर प्रयास और सकारात्मक सोच से बड़ी सफलता भी प्राप्त की जा सकती है। तो श्रोता मित्रों, जरूर बताइएगा कि आपको हमारा आज का प्रेरक प्रसंग कैसा लगा। हमें आपके संदेशों का इंतजार रहेगा।
2: श्रोताओं, आज आपने इस प्रसंग में हिंदी का एक शब्द सुना, शब्द था श्लाघनीय। आइए अब इसका अर्थ जान लेते हैं।
1: श्रोताओं, श्लाघनीय का अर्थ होता है प्रशंसा के योग्य या प्रशंसनीय। ये श्लाघा शब्द से आया है। श्लाघा का अर्थ है प्रशंसा।
2: और अब आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से।
1: तो आज का प्रश्न है श्रोताओं, थॉमस एडिसन अपने प्रयोगों में लगभग कितनी बार असफल हुए थे और श्लाघनीय शब्द का क्या अर्थ है?
2: जी, प्रश्न एक बार फिर से सुन लेते हैं। थॉमस

0: एडिसन अपने प्रयोगों में लगभग कितनी बार असफल हुए थे और श्लाघनीय शब्द का क्या अर्थ है?
1: भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800-440-5559 पर। आप हमारे ईमेल पर यानी audio@ciet.nic.in पर भी अपने संदेश भेज सकते हैं।
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं। इसके द्वारा आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों की निरंतर जानकारी मिलती रहेगी। और हाँ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूपांतरण यानी ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं तो
1: YouTube में जाकर टाइप कीजिए NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल। आपको वहाँ सर्च के अनेक विकल्प मिलेंगे, उन्हें फॉलो कीजिए और अपनी मनचाही पाठ्य पुस्तकों को सुनिए।
0: एक और जरूरी सूचना आपको दे दें, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों के PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो सीधे किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। सर्च के विकल्प पर जाकर आप यहां अपनी मनचाही पूरी पुस्तक डाउनलोड कर सकते हैं।
1: तो श्रोताओं, बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो हमारा पहला कार्यक्रम है मातृभूमि।
0: कक्षा 6 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक की इस कविता के रचयिता सोहन लाल द्विवेदी हैं। कार्यक्रम में कविता को संगीत के रूप में प्रस्तुत किया गया है जो मातृभूमि के प्रति कवि के गहरे प्रेम को प्रकट करता है। कविता में भारत भूमि के सौंदर्य और विविधता का वर्णन किया गया है।

0: नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत सभी के लिए शिक्षा को बढ़ावा देते हुए एनसीईआरटी असाक्षर लोगों को साक्षर बनाने के क्रम में कार्य कर रहा है। और आइए सुनते हैं कार्यक्रम टेलीविजन की कहानी।
1: इस कार्यक्रम में टेलीविजन के आविष्कार की कहानी को एक रोचक नाटक द्वारा प्रस्तुत किया गया है तथा ये भी बताया गया है कि आविष्कार की प्रक्रिया में वैज्ञानिकों को किन किन तकनीकी समस्याओं को समझना और उन्हें हल करना पड़ा।
2: डायना डायना, आज तो फुटबॉल मैच देखने पर मजा ही आ गया। वाह, क्या शानदार मैच था। मैनचेस्टर की टीम ने तो कमाल ही कर दिखाया।
3: जॉन, मुझे भी बहुत इच्छा थी मैच देखने की। कितने दिनों से तैयारी कर रही थी, मगर इस बुखार को भी इसी समय आना था। काश मैं भी देख पाती।
2: मैंने उस मैच की कुछ तस्वीरें खींची हैं। जब साफ होंगी तो मैं तुम्हें दिखा दूंगा।
3: मुझे पता था कि तुम तस्वीरें जरूर लोगे। फोटोग्राफी का शौक जो है तुम्हें।
2: मेरे मन में एक बात आ रही है।
3: वो क्या?
2: वो ये है कि जिस तरह हम रेडियो पर कुछ आवाजें सुन सकते हैं, उसी प्रकार क्या हम दूर के किसी दृश्य को किसी उपकरण के सहारे देख नहीं सकते?
3: वाह, क्या बात कही है। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है?
2: हाँ, मुश्किल तो है लेकिन शायद असंभव नहीं।

दोस्तों, ये बालक था जॉन लोगी बेयर, जिसे टेलीविजन के जन्मदाता के रूप में हम जानते हैं। यूं तो टेलीविजन के विकास में अनेक लोगों का योगदान है, लेकिन जॉन लोगी बेयर ने पहली बार चलते फिरते दृश्यों के प्रसारण में सफलता पाई। जॉन का जन्म 14 अगस्त 1888 को स्कॉटलैंड के हेलेन्सबर्ग में हुआ था। उसे फोटोग्राफी का बहुत शौक था। उन दिनों विद्यालय में फोटोग्राफी पर विशेष बल दिया जाता था। एक दिन की बात है जब जॉन लगभग 11 साल के थे।

0: ध्यान तो जाओ बच्चों शांत। बच्चों, इस साल की फोटोग्राफी प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ फोटोग्राफी का पुरस्कार दिया जाता है जॉन लोगी बेयर्ड को।
1: ये मुझे तो पता था।
0: जॉन मंच पर आकर पुरस्कार ग्रहण करें। और एक बात और, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि जॉन की फोटोग्राफी इतनी उम्दा है कि उसे इस स्कूल के फोटोग्राफी डिपार्टमेंट का अध्यक्ष भी बनाया जाता है।

जॉन का बचपन एक माली के लड़के के साथ बीता जो उसके घर के बागीचे में काम किया करता था। वो अक्सर उसके साथ फोटोग्राफी करता। जॉन पढ़ने में बहुत तेज था। विद्यालय की पढ़ाई पूरी करने के

बाद जॉन बेयर्ड ने ग्लासगो में रॉयल टेक्निकल कॉलेज में विज्ञान का अध्ययन आरंभ किया। 5 वर्ष की पढ़ाई के बाद वो सहायक इंजीनियर बन गए। एक बार वो अपने मित्र से मिलने त्रिनिदाद गए। यात्रा के दौरान जहाज के रेडियो ऑपरेटर से उनकी दोस्ती हो गई।

फिर तो दोनों ने विद्युत द्वारा हवा में तस्वीरें भेजने की समस्या पर गंभीरता से विचार किया। चौंतीस वर्ष की अवस्था में सन 1922 में वो इंग्लैंड लौट आए।

0: 1923 में वो लिंटन क्रिसेंट चले गए और एक जगह किराए पर ले ली और यही जगह उनकी प्रयोगशाला बनी। उनके सहायक थे विलियम।
1: विलियम, इतने दिनों से हम प्रयोग कर रहे हैं लेकिन लगता है कि अभी मंजिल दूर है।
2: हाँ जॉन, जॉन क्यों ना हम अपने प्रयोग को एक बार फिर नए सिरे से करें।
1: हाँ ठीक कहा तुमने। अच्छा सुनो, देखो मैं कुछ चीजें लेकर आया हूँ।
2: क्या?
1: ये है चाय रखने का पुराना डिब्बा।
2: हाँ हाँ।
1: और ये है टोपी रखने वाला गत्ते का डिब्बा।
2: जॉन
1: हाँ,
2: मैं भी कबाड़ी की दुकान से एक बिजली की मोटर लेकर आया हूँ जैसा तुमने कहा था।
1: अच्छा
2: ये देखो।
1: हेलो, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। हाँ ठीक है, ये तो कट गया। अब हम इस गोल गत्ते में ढेर सारे छोटे छोटे छेद बनाते हैं।
2: छोटे छोटे छेद?
1: हाँ।
2: उनसे क्या होगा?
1: मैं बनाता हूँ। इससे ये होगा विलियम कि इस गोल गत्ते को हम बिजली की मोटर में लगाकर घुमाएंगे।
2: अच्छा।
1: और इसके पीछे रहेगा ये प्रोजेक्शन लैंप।
2: वाह।
1: हाँ, और बीच में तस्वीरों के नेगेटिव रखेंगे। फिर देखते हैं क्या होता है।
2: चलो करके देखते हैं।
1: इसको इसमें छेद तो कर दिए। हाँ। अब इसमें तस्वीरों के नेगेटिव लगाए।
2: ये प्रोजेक्शन लैंप में यहाँ रख देता हूँ।
1: हाँ, हाँ। ठीक है, अब इसको घुमा के देखते हैं। बात तो बनती नजर आ रही है।
2: देखो सामने दीवार पर देखो। जॉन लगता है हम सही दिशा में काम कर रहे हैं।
1: और घुमाओ, और घुमाओ। हाँ शाबाश शाबाश, ऐसे ही। लगता है हमें कामयाबी मिल रही है। हम जरूर सफल होंगे विलियम, जरूर सफल होंगे।
2: हमारी मेहनत रंग लाएगी।

दोस्तों, उन्होंने पाया कि चकत्ती घुमाकर प्रकाशित किए जाने वाले संपूर्ण दृश्य छिद्रों के माध्यम से तीव्र एवं मंद बिंदुओं में खंडित हो जाते थे। उत्साहित होकर उन्होंने सेलेनियम सेल और नियॉन लैंप रेडियो वॉल्व आदि उपकरणों के माध्यम से अपना काम शुरू किया। इस प्रयोग में उन्हें काफी समय लगा। कठोर परिश्रम से उनका पहला टेलीविजन ट्रांसमीटर और रिसीवर बन पाया। आखिरकार वो सन 1924 ईस्वी के वसंत में एक तस्वीर को 3 गज की दूरी तक भेजने में कामयाब हुए। लेकिन समस्या ये थी कि तस्वीर साफ नहीं थी और उसको पहचानना भी मुश्किल था। सन 1925 2 अक्टूबर उन्होंने अपने उपकरण में प्रकाश को विद्युत किरणों में परिवर्तित करने के लिए

0: स्विच दबाने पर वो आश्चर्यचकित रह गए। उनके उपकरण में दृश्य का पूरा चेहरा उभर आया था। उसे देखकर वो कुर्सी से उछल पड़े। इस प्रकार मानव आकृति के प्रसारण में ये सफलता उनकी पहली सफलता थी।
1: रॉयल इंस्टीट्यूट लंदन के इस विशेष समारोह में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच एक विशिष्ट व्यक्ति उपस्थित है। इन्होंने एक खास उपकरण का आविष्कार किया है जो चलते फिरते दृश्यों का प्रसारण कर सकता है, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार रेडियो आवाज को प्रसारित करता है। वो विशेष व्यक्ति है जॉन लोगी बेयर। आज ये अपने उपकरण का प्रदर्शन करेंगे। आइए मिस्टर जॉन लोगी बेयर।
2: जी साथियों, मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि अब दृश्यों का प्रसारण संभव है। इस उपकरण के द्वारा आप दूर के दृश्यों को अपने घर में भी देख सकते हैं।
3: श्रीमान, मुझे तो ये बात असंभव लगती है।
2: संभव है श्रीमान, ये संभव है। आप इस कैमरे के सामने आएंगे?
3: हाँ,
2: आइए।
3: यहाँ?
2: हाँ, आइए इस तरफ।
3: इधर?
2: हाँ, अब आप इस कैमरे के सामने चलिए। हाँ, इधर? हाँ, थोड़ा सा
3: इधर?
2: हाँ, अब ठीक है। हाँ, साथियों, मेरा आपसे निवेदन है कि कृपया सामने स्क्रीन पर देखिए।
1: ओह, ये तो कमाल हो गया। आंखों को विश्वास नहीं होता। वेरी गुड। कांग्रेचुलेशन मिस्टर जॉन, इट्स अनबिलीवेबल मिरेकल।
2: शुक्रिया।

सन 1928 ईस्वी में ही उन्होंने रंगीन टेलीविजन के प्रसारण पर भी कार्य करना शुरू कर दिया था। सन 1936 ईस्वी में बीबीसी ने अपनी टेलीविजन सेवा उनके विकसित उपकरण से शुरू कर दी। 14 जून सन 1946 में इस महान आविष्कारक का निधन हो गया। जब भी हम टेलीविजन देखते हैं, जॉन बेयर्ड अक्सर याद आते हैं। विश्व उनके इस महान योगदान के लिए सदा उनका आभारी रहेगा।

0: तो अब हमारा आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है, इसलिए अपने मित्र अजीत और उमंग की तकनीकी टीम के साथ यानी कुसुमलता,
1: जगबंधु,
0: चेतना,
1: अर्शद,
0: सौम्या
1: और फैजान के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार,
2: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
3: ये था प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोले मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के समय हमारे स्टूडियो की घड़ी के अनुसार ठीक 10 बजे हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत।

ये था कार्यक्रम का पहला गीत। फिल्म का नाम था आदि पुरुष। आवाजें थी सोनू निगम, श्रेया घोषाल और साथियों की।

0: क्या हो रहा है। जी हाँ, ये था फिल्म का नाम। आवाजें थी सुनिधि और साथियों की।
1: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के, अर्ध सैनिक बलों के हर सैनिक को।

0: समर्पित है। रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: श्रोताओं ये गीत हमने लिया था फिल्म यारियां से और स्वर था तुलसी कुमार का।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: श्रेया घोषाल और साथियों को अभी आप सुन रहे थे। फिल्म का नाम था जंजीर।
1: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
2: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
1: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दी

0: नई पहचान।
1: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
0: बस आइए करणी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
1: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
0: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
1: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
0: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।

0: ये गीत हमने लिया था फिल्म MS धोनी से। आवाजें थी पलक मुचाल और साथियों की।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ

0: ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

0: सुखविंदर सिंह और दिव्या कुमार को अभी आप सुन रहे थे। फिल्म का नाम था जीरो।
1: दी, ये देख कैसे।
2: हैप्पी बर्थडे भाई।
1: दीका, हाँ मेरा फेवरेट कलर
2: हमेशा शॉपिंग।
3: आई नो माँ, बट खर्चा करने की भी यही उम्र है, राइट?
4: सेविंग करने की भी यही उम्र है।
5: आई नो पा, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा।
3: आई नो ना।
5: RBI कहता है
6: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: श्रोताओं, आप सुनते हैं सुनिधि चौहान और साथियों को, फिल्म का नाम जिंदगी तेरे नाम।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म वक्त से। जी हाँ, नई फिल्म वक्त, इसका गीत हम आपको भी सुनवाएंगे। आवाजें हैं सोनू निगम और अदनान सामी की।

ये गीत हमने लिया था नई फिल्म वक्त से। आवाजें थी सोनू निगम और अदनान सामी की। कार्यक्रम का अगला और अंतिम गीत है, फिल्म का नाम तुम बिन, स्वर है सोनू निगम का। तो आइए सुनते हैं तुम बिन फिल्म का ये गीत, सोनू निगम का स्वर।

सोनू निगम को अभी आप सुन रहे थे। फिल्म का नाम था तुम बिन। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। 11 बज चुके हैं। लीजिए अब सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम भूले बिसरे गीत।

सुरैया और तलत महमूद को आपने सुना, फिल्म का नाम था दिले नादा। फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में भूले बिसरे गीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से। आइए अब सुनते हैं मन्ना डे की आवाज में ये गीत। फिल्म का नाम है तूफान और दिया।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में आपने एक गीत सुना, फिल्म का नाम था सन ऑफ इंडिया। बोले मिश्र गीत आप आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से सुन रहे हैं। कार्यक्रम में आइए सुनते हैं गुजरे जमाने की विख्यात गायिका जोराबाई अंबालावाली की आवाज में अगला गीत, फिल्म का नाम है रतन।

ललित महमूद की आवाज में आपने गीत सुना। फिल्म का नाम था परछाई। फिल्म संगीत के इस भूले बसरे गीत प्रोग्राम में आइए आप सुनते हैं फिल्म दर्द का गीत। आवाज उमा देवी की है।

आवाज थी सुरेंद्र कौर की और फिल्म का नाम था शहीद। कार्यक्रम में आइए सुनते हैं अगला गीत। आवाज सुरैया और श्याम की है, फिल्म का नाम है दिल लगी।

ये आवाज थी सुरैया की, क्षमा करें, यह आवाज थी सुमन कल्याणपुर की और फिल्म का नाम था बात एक रात की। भूले बिसरे गीत के अंतर्गत आइए सुनते हैं अगला गीत उषा मंगेशकर की आवाज में, और इस गीत को हमने लिया है फिल्म सुबह का तारा से।

आपने सुना ये गीत? आवाज सुरेंद्र शमशाद बेगम की थी और फिल्म का नाम था अनोखी अदा। आइए कार्यक्रम में सुनते हैं अगला गीत। फिल्म का नाम है अनमोल रतन और आवाज सुमन कल्याणपुर की है।

0: गीत के साथ ही फिल्मी गीतों का कार्यक्रम बोले बिसरे गीत तब समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलमरु चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज पर और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय दिन के 12 बजने को अब हिंदी में समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। आज सवेरे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिड़ला ने ग्लासगो में 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक जीतने पर भारोत्तोलक हरजिंदर कौर और धावक गुलवीर सिंह को बधाई दी। बाद में अध्यक्ष ने प्रश्नकाल चलाने की कोशिश की तो विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि प्रश्नकाल सदस्यों का होता है और सरकार से जवाब मांगना सदस्यों के लिए सबसे महत्वपूर्ण काम है। श्री बिड़ला ने आरोप लगाया कि कुछ विपक्षी सदस्य जानबूझकर प्रश्नकाल में बाधा डाल रहे हैं जो उचित नहीं है।
2: प्रश्नकाल के बाद इस चर्चा में भाग लीजिए, आप माननीय सदस्यों के हक को नहीं मार सकते, ये तरीका उचित नहीं है। आप अगर सदन को व्यवधान करना चाहते हैं, नियोजित तरीके से गतिरोध पैदा करना चाहते हैं, ये संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं है।
1: उधर राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। आज सवेरे सदन की बैठक शुरू होते ही

0: कई केंद्रीय मंत्रियों ने सदन के पटल पर दस्तावेज रखे। कोयला, खान और इस्पात पर विभाग संबंधी संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट भी पेश की गई। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने संसद में चर्चा के दौरान कांग्रेस के सांसदों पर लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 के प्रावधानों पर चर्चा न करने और सदन में विभिन्न राजनीतिक मुद्दे उठाने का आरोप लगाया है।
1: आज हम उम्मीद करते हैं राहुल गांधी जी और बाकी लोग बिल पे बोले, इतना महत्वपूर्ण बिल पे चर्चा हो रहे हैं और वो इधर उधर का बात करके भटकाने के लिए और राजनीतिकरण करके वो ध्यान भटकाना चाहते हैं। इतना अच्छा बिल लाया है और एग्जामिनेशन को लेकर के कोई और सजेशन है तो सजेशन दे सकते हैं कांग्रेस पार्टी। इतना महत्वपूर्ण बिल है और बिल पे नहीं बोलते हैं, ये ठीक बात नहीं है।
0: भारतीय खाद्य सुरक्षा तथा मानक प्राधिकरण ने दिल्ली स्थित एक निजी होटल का लाइसेंस खाद्य नियमों का उल्लंघन करने के कारण निलंबित कर दिया है। इनमें खराब हो चुके खाना पकाने के तेल का उपयोग करना और भोजन की खराब गुणवत्ता शामिल है। सोशल मीडिया पोस्ट में खाद्य सुरक्षा नियामक ने कहा कि जन स्वास्थ्य के हित में लाइसेंस तत्काल प्रभाव से 15 दिन के लिए निलंबित किया जाता है और खाद्य व्यवसाय संचालक को सभी खाद्य संबंधी गतिविधियां तुरंत बंद करनी होगी। खाद्य सुरक्षा नियामक ने सभी नियमों का पालन करने के लिए 15 दिन का समय भी दिया है, अन्यथा लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने दक्षिण पश्चिमी जापान के कुमामोतो इलाके में कल आए जबरदस्त भूकंप पर दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने वहां के लोगों और सरकार के प्रति भारत का समर्थन और एकजुटता जाहिर की। भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 13 हो गई है। जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची ने कहा है कि प्रभावित इलाकों में बचाव कार्य चल रहा है। यूक्रेन के कीव स्थित भारतीय दूतावास ने कहा है कि एमवी अमीर 1 जहाज पर सवार भारतीय नाविकों से संबंधित स्थिति उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है और वे जहाज पर सवार सभी भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संबंधित पक्षों के साथ निरंतर संपर्क में हैं। दूतावास ने ये जानकारी सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से दी। आज वैश्विक बाघ दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर वन्य जीव प्रेमियों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक बाघ आबादी का 70% से अधिक हिस्सा भारत में स्थित है। उन्होंने कहा कि भारत के बाघ संरक्षण प्रयास प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करने की सदियों पुरानी संस्कृति से प्रेरित है और जनता की सामूहिक इच्छा शक्ति से संचालित है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। वे स्पर्धा में पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए हैं। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति ने पदक जीतने पर गुलवीर सिंह को बधाई दी है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज लगभग 1% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 849 अंक बढ़कर 77,615 पर कारोबार कर रहा था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी बीकानेर के ढोलामारू चैनल से बोल रहे हैं। इस समय मध्याह्न के 12:05 हुए हैं। लीजिए आप सुनिए हमारे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का विवरण।

से कुछ देर बाद यानी 12:10 पर आप सुनेंगे लोक संगीत और 12:40 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत। सुनेंगे अपने कार्यक्रम महिला जगत दिन में 1:05 पर और दिन में 2:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत।

हमारे श्रोता सुगम संगीत सुनेंगे संध्या 7:45 पर। संसद समीक्षा कार्यक्रम आप सुनेंगे रात्रि 8 बजे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।

हमारे श्रोता फिल्म संगीत सुनेंगे रात्रि 9:15 पर और आप सुनेंगे कार्यक्रम चर्चा का विषय है। ये कार्यक्रम रात्रि 9:30 पर होगा और आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगी।

यह था हमारे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का विवरण। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज पर और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी बीकानेर के बोलो मारू चैनल से बोल रहे हैं। इस समय दिन के 12:10 हुए हैं। लीजिए आप सुनिए लोक संगीत। लोक संगीत किस कार्यक्रम में, आइए सबसे पहले सुनते हैं बाबू खां बागड़वा की आवाज में ये लोकगीत।

अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। लीजिए अब सुनिए फिल्म संगीत। कार्यक्रम में आइए सबसे पहले सुनते हैं सुरेश वाडेकर।

0: सुन रहे थे फिल्म संगीत, लीजिए आप सुनिए समाचार।
1: आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने संसद में चर्चा के दौरान कांग्रेस के सांसदों पर लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 के प्रावधानों पर चर्चा नहीं करने और सदन में विभिन्न राजनीतिक मुद्दे उठाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि ये विधेयक विद्यार्थियों की चिंताओं और उनकी मांगों के जवाब में पेश किया गया है। श्री रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस विधेयक को लाने के निर्णय से परीक्षा प्रणाली में विद्यार्थियों का विश्वास बढ़ा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर डीग जिले के पूछरी का लौठा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर में आयोजित गुरु वंदन कार्यक्रम में संतों और गुरुओं का सम्मान किया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने गोवर्धन परिक्रमा क्षेत्र के जतिपुरा स्थित श्री वन बिहारी जी मंदिर में दर्शन किए। उन्होंने मंदिर परिसर श्री अष्ट सखा गोविंद स्वामी जी बैठक और ऐरावत कुंड का अवलोकन कर जिला प्रशासन को इनके जीर्णोद्धार सौंदर्यकरण और संरक्षण के लिए आवश्यक निर्देश दिए। मुख्यमंत्री इस समय भरतपुर के लुधावई स्थित बड़ा हनुमान मंदिर में साधु संतों का सम्मान कर रहे हैं। इसके बाद वे वैर तहसील के खेडली गुर्जर गांव पहुंचकर शिक्षा

0: क्षेत्र के लिए 947 करोड़ रुपए से अधिक की सौगात देंगे। श्री शर्मा इस मौके पर मिशन पढ़ो राजस्थान अभियान की भी शुरुआत करेंगे। साथ ही प्रदेश के सरकारी स्कूलों के 8वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म के लिए डीबीटी के माध्यम से राशि बैंक खातों में ट्रांसफर करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक बाघ दिवस के अवसर पर वन्यजीव प्रेमियों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक बाघ आबादी का 70% हिस्सा भारत में स्थित है। उन्होंने कहा कि भारत के बाघ संरक्षण प्रयास प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करने की सदियों पुरानी संस्कृति से प्रेरित हैं और जनता की सामूहिक इच्छा शक्ति से संचालित हैं। उन्होंने बाघ संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले वन कर्मियों और वैज्ञानिकों की सराहना की। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि बाघ संरक्षण केवल एक प्रजाति की रक्षा करने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये समूचे पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षित करने और प्रकृति के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध को बनाए रखने से संबंधित है। श्री यादव ने आज नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर कहा कि प्राकृतिक स्थलों को केवल पर्यटन स्थल के रूप में नहीं, बल्कि इन्हें ऐसे स्थान के रूप में देखा जाना चाहिए जहां इंसान शांति का अनुभव कर सके। पिछले एक दशक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बाघों के संरक्षण से जुड़ी पहलों के बारे में श्री यादव ने कहा कि भारत में बाघों की संख्या बढ़कर 3,600 से अधिक हो गई है। उन्होंने बताया कि बाघ अभयारण्यों की संख्या भी बढ़कर 58 हो गई है। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा विकसित इको टूरिज्म वेब पोर्टल का भी शुभारंभ किया। इस पोर्टल पर सभी बाघ अभयारण्यों की जानकारी उपलब्ध है। राज्य सरकार ने सभी गौशालाओं में 30 सितंबर तक गौवंश की 100% डिजिटल टैगिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। गोपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने विभागीय योजनाओं की समीक्षा बैठक में ये निर्देश देते हुए कहा कि हर गौवंश पर विशेष चिप आधारित टैग लगाया जाएगा और उसका पूरा विवरण नए सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाइन दर्ज किया जाएगा। उन्होंने गौशालाओं को सरकारी अनुदान समय पर उपलब्ध कराने और भूमि आवंटन की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाने को भी कहा। बांसवाड़ा जिले में आज सुबह एक स्कूल वैन सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकरा गई। हादसे में एक छात्र की मृत्यु हो गई जबकि 14 बच्चे घायल हो गए। इनमें 3 बच्चों की हालत गंभीर बताई जा रही है और एक छात्र को बेहतर इलाज के लिए उदयपुर रेफर किया गया है। दुर्घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को महात्मा गांधी अस्पताल पहुंचाया गया। और इसी के साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलमारो चैनल से बोल रहे हैं। दिन के 1:05 हुए हैं। अब वही सुनेंगे अपना कार्यक्रम महिला जगत।

0: महिला जगत कार्यक्रम सुनने वाली हमारी सभी सखियों का स्वागत है। तो बहनों स्वीकार कीजिए अनुपम पांडे
1: और सपना व्यास का प्यार भरा नमस्कार।
0: सावन के रिमझिम फुहारों में प्रकृति ने गीत सुनाया है, हर पत्ती ने मुस्का कर जैसे जीवन का अर्थ बताया है।
1: हरियाली का ये पावन मौसम प्रेम और विश्वास जगाए, भोलेनाथ की कृपा से सबके जीवन में सुख समृद्धि आए।
0: बहनों बरसती बूंदों की मधुर

0: झुनझुन भीगी मिट्टी की सौंधी महक, हरियाली की चादर ओढ़े खेत खलिहान और मंद मंद बहती पुरवाई। प्रकृति का ये श्रृंगार हमें संदेश देता है कि सावन का पावन महीना हमारे आंगन में दस्तक दे चुका है।
1: बिल्कुल अनुपम, सावन भारतीय संस्कृति का एक ऐसा महीना है जिसमें प्रकृति और मानव का हृदय एक साथ झूम उठते हैं। वर्षा की फुहारे केवल धरती की प्यास ही नहीं बुझाती बल्कि मन के भीतर भी नई आशा और नए उत्साह का संचार भी करती है। क्यों अनुपम?
0: बिल्कुल सपना, और हमारे गांवों में झूले पड़ते हैं और महिलाएं सुंदर लोक गीत गाती हैं, झूलों का आनंद उठाती हैं और चारों तरफ हरियाली जीवन का उत्सव बन जाती है। बच्चों की किलकारी, मोर का नाचना, कोयल की कूक और बादलों का गरजना, सब कुछ कितना मनभावन लगता है ना।
1: बिल्कुल मनभावन लगता है, और ये बात तो तुम सही कह रही हो अनुपम। और साथ ही साथ ये महीना भगवान शिव की आराधना का विशेष समय का है। इसमें श्रद्धालु जलाभिषेक करते हैं, व्रत उपवास भी रखते हैं और जिससे एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी होता है।
0: बिल्कुल सही कहा सपना, रिमझिम फुहारों का संदेश हर धरती में नव आस जगाए, धरती ओढ़े हरियाली चुनर, जीवन मधुरिम गीत सुनाए।
1: तो अनुपम चलिए हम भी हमारी बहनों को लिए चलते हैं प्रकृति की सुंदर छटा में और सुनते हैं प्यारा सा गीत।

0: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
1: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
0: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
1: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
0: बस आइए करणी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
1: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
0: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
1: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
0: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।

माह के पहले और तीसरे रविवार को सुबह 8:30 बजे सुनिएगा कार्यक्रम हेल्दी बीकाना आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल की।

0: सभी सखियों को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं।
1: सपना, जब गुरु पूर्णिमा की बात कर रहे हैं, गुरु की बात कर रहे हैं, तो मुझे याद आ रही हैं चंद पंक्तियां,
0: तो बिल्कुल सुनो अनुपम तुम।
1: हाँ, मैं साझा करती हूँ भाइयों के साथ। गुरु वह दीप है जो स्वयं जलकर दूसरों के जीवन को प्रकाश से भर देते हैं। गुरु वह नाव है जो जीवन की कठिन धाराओं से पार लगाना सिखाते हैं। गुरु वह छाया है जिनकी सीख हर परिस्थिति में हमारा संबल बन जाती है।
0: बिल्कुल अनुपम, भारतीय संस्कृति में गुरु का स्थान सदैव सर्वोच्च माना गया है। गुरु केवल ज्ञान देने वाला ही नहीं, बल्कि वह जीवन की दिशा दिखाने वाला प्रकाश स्तंभ होता है। इसलिए कहा गया ना अनुपम कि गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः।
1: और आज गुरु पूर्णिमा का पर्व हम मना रहे हैं सपना, लेकिन ये केवल एक पर्व नहीं है, बल्कि कृतज्ञता व्यक्त करने का एक अवसर है। इस दिन को हम महर्षि वेदव्यास की जयंती के रूप में भी मनाते हैं, जिन्होंने वेदों का संकलन किया और महाभारत जैसे महान ग्रंथ की रचना की, इसलिए उन्हें आदि गुरु भी कहा जाता है।
0: और अनुपम, जीवन में देखो ना, पहला गुरु हमारे माता पिता तो होते हैं, जो हमें बोलना चलना और संस्कारों की पहली शिक्षा देते हैं, और इसके बाद शिक्षक, मार्गदर्शक, और वे सभी हमारे गुरु बन जाते हैं जिनसे हमें जीवन जीने की प्रेरणा मिलती है।
1: बिल्कुल सपना, गुरु पूर्णिमा हमें ये सिखाती है कि जीवन में चाहे हम कितनी भी ऊंचाइयां क्यों ना प्राप्त कर लें, अपने गुरु और उनके उपकारों को कभी नहीं भूलना चाहिए।
0: ये बात बहुत अच्छी कही है तुमने अनुपम। तो बहनों, आइए गुरु पूर्णिमा पर हम अपने सभी गुरुओं के प्रति सम्मान व्यक्त करें और उनके बताए आदर्शों पर चलने का संकल्प लें, क्योंकि गुरु का दिया ज्ञान ही वह दीपक है जो जीवन के हर अंधेरे को प्रकाशित कर देता है।
1: बिल्कुल, गुरु केवल एक व्यक्ति नहीं, एक विचार है। गुरु केवल एक शिक्षक नहीं, जीवन का आधार है। जिनके सानिध्य से मनुष्य स्वयं को पहचान ले, वही गुरु जीवन का सबसे बड़ा उपहार है।
0: और उनके लिए हम यही कह सकते हैं अनुपम, गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व ज्ञान और श्रद्धा का सुंदर गर्व, गुरु के चरणों में समर्पित भाव, मिलता जीवन को सच्चा प्रभाव।
1: और सपना, अब हमारी बहनों के जीवन को उस रास्ते पे लिए चलते हैं जहाँ खूबसूरत वादियाँ और प्यार ही प्यार बरसता हो।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: सपना, अब हम नजर डालते हैं समाज की उन समस्याओं पर जो कुरीतियां बनकर हमारे समाज में फैल रही हैं, जैसे भ्रूण हत्या, घरेलू हिंसा, दहेज प्रथा, बाल विवाह। ऐसी अनेक समस्याएं हैं जिन्हें दूर करने का प्रयास हमारी सरकार तो कर ही रही है, साथ ही हम महिलाओं की भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो आज इसी विषय पर हम एक वार्ता सुनवाने जा रहे हैं। वार्ता का विषय है सामाजिक कुरीतियां दूर करने में महिलाओं की भूमिका। वार्ताकार हैं कल्पना श्रीवास्तव।
3: सामाजिक कुरीतियों के निवारण में महिलाओं का योगदान। हमारे समाज में महिलाएं जन्म से लेकर मृत्यु तक एक अहम भूमिका, चाहे वो माँ, बहन, बेटी, पत्नी, बहू, सास एवं अन्य कोई भी हो, उन सबको निभाने में निपुण होते हैं के बाद भी उनकी योग्यता कम मानी जाती है। भारतीय संस्कृति में नारी का दर्जा बहुत ऊंचा है, परंतु जैसे जैसे हम वैदिक काल में मध्य और आधुनिक काल की तरफ जाते हैं, वैसे वैसे भारत में निम्न होती महिलाओं की स्थिति को देखते हैं। सरकार द्वारा जागरूकता फैलाने वाले कई कार्यक्रम चलाने के बावजूद महिला की जिंदगी पुरुष की जिंदगी से ज्यादा जटिल होती है। इन सभी परिस्थितियों से लड़ते लड़ते महिलाओं में समाज में फैली कुरूतियों से लड़ने की हिम्मत जागृत हुई। 19वीं शताब्दी के आरंभ में ही भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति बहुत निम्न थी। परंपराओं और मान्यताओं के चलते महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा था। महिला इन कुरूतियों, मान्यताओं और अंधविश्वासों को मानने के लिए बाध्य थीं। इन मान्यताओं में प्रमुख थी बाल विवाह, जौहर, सती प्रथा, देवदासी प्रथा, पति की मृत्यु के बाद सिर मुंडवाना, साध्वी वाला जीवन व्यतीत करना तथा अनेक कष्ट सहना इत्यादि। उस समय निम्न महिलाओं के कार्य भी उल्लेखनीय है, जिसमें पंडित रामाबाई सरस्वती, सरला देवी चौधरानी, मुक्ताबाई एवं ताराबाई शिंदे, सरोजिनी नायडू आदि महिलाओं के नाम शामिल हैं, जिन्होंने अपना भरपूर सहयोग समाज में फैली हुई कुरूतियों को दूर करने में दिया। पुणे से पीड़ित रामाबाई, पुणे से पंडित रामाबाई ने मुंबई महाप्रांत के विभिन्न शहरों में अनेक महिला संस्थानों की स्थापना की। इन्होंने महिलाओं के लिए, युवा विधवा स्त्रियों के लिए रोजगार और शिक्षा की दृष्टि से शारदा सदन की शुरुआत की। सरला देवी चौधरानी ने भारत स्त्री महामंडल की शुरुआत की। मुक्ताबाई और ताराबाई शिंदे ने निम्न जाति की महिलाओं के लिए शिक्षा संबंधी सुधार प्रस्तुत की। सरोजिनी नायडू ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पद संभाला। उन्होंने सुधारों के खिलाफत का मुद्दा उठाकर कूर रोलेक्ट एक्ट एवं सत्याग्रह पर अभियान चलाए। भारत की कई बुद्धिजीवी मेघावी महिलाओं ने बड़े बड़े समाज सुधारकों और आम जनता के साथ मिलकर महिलाओं के लिए विकास का मार्ग प्रशस्त किया। साथ ही स्थानीय महिलाओं के साथ शिक्षा, जीवकोपार्जन, नीति निर्माण पर जोर दिया। इन महिलाओं के अतिरिक्त विदेशी मूल की महिलाओं में जैसे एनी बेसेंट और सिस्टर निवेदिता ने भी सामाजिक कुरीतियों को दूर करने में, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात महिलाओं ने गांव के स्तर पर महिला आत्मरक्षा समिति का गठन किया गया, जिसके द्वारा महिलाओं के साथ हो रही हिंसा, मारपीट का विरोध किया जा सके और पितृसत्ता समाज के चुनौती दी जा सके। इसके बाद तेलगान आंदोलन में भी महिलाएं अपने अधिकारों के लिए सक्रिय रहीं। मूल्य वृद्धि के खिलाफ आंदोलन में भी महिलाओं ने भाग लिया और वह थाली वेलन लेकर सड़कों पर उतरी। पीटी उषा, जो कि भारत की स्टार एथलीट है, उड़ान परी के मशहूर नाम से जानी जाती है, यह राज्यसभा की सदस्य भी रही है। इन्होंने भारतीय महिलाओं को खेल जगत में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। यह महिलाओं के लिए प्रेरणा स्वरूप है और पीटी उषा आज केरल में अपना एक एथलीट स्कूल चलाती हैं। डॉक्टर किरण बेदी भारत की पहली महिला IPS अधिकारी हैं, साथ ही वे सामाजिक कार्यकर्ता, भूतपूर्व टेनिस खिलाड़ी एवं राजनेता हैं, साथ ही एक महान लेखक भी हैं। वर्तमान में पुदुचेरी की उपराज्यपाल हैं। 1979 में इन्होंने राष्ट्रपति का पुलिस पदक जीता। इन्होंने पश्चिम दिल्ली

में कार्य करते हुए महिलाओं की काफी सहायता करी तथा महिलाओं के साथ होने वाले अनेक प्रकार के अपराधों में कमी लाई तथा इन्होंने डीएसपी के रूप में नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ एक अभियान चलाया जो कि नवज्योति दिल्ली पुलिस फाउंडेशन में विकसित हुआ। सावित्रीबाई फुले पहली स्त्री शिक्षिका थी जिन्होंने बालिकाओं को शिक्षा के लिए कई कार्य किए। इन्होंने स्त्री शिक्षा को मजबूत किया और पुणे में पहला बालिका विद्यालय खोला। वह एक दृढ़ संकल्पी शिक्षिका के साथ साथ समाज सुधारक भी थी और व्यक्तिगत स्तर पर कावियत्री भी। इन्होंने पूना में प्रौढ़ शिक्षा केंद्र भी खोला। वह शिक्षा के माध्यम से महिलाओं के विकास की समर्थन भी रही। इतना ही नहीं, इन्होंने यौन शोषण के गर्भवती होने वाली बाल विधवाओं की दयनीय स्थिति को देखते हुए प्रसूति गृह खोला जिसका नाम बाल हत्या प्रतिबंधक गृह से रखा गया। इंदिरा गांधी ये भी भारत की एक जानी मानी पहली प्रधानमंत्री थी। वे एक कुशल राजनीतिज्ञ भी थी। इसी प्रकार कल्पना चावला भारतीय मूल की पहली अंतरिक्ष यात्री थी जिन्होंने भारत का नाम रोशन किया था। इससे कृष्णा पूनिया राजस्थान में विधायक और पूर्व ओलंपियन रही हैं। वे एक अच्छी राजनीतिक भी हैं। इन्होंने राजनीतिक महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया और ये हमारे देश में इतनी महिलाओं के योगदान के बाद भी कई प्रकार की कुरीतियां रह कम हुई हैं पर पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुई हैं। आज भी समाज में हरेक हिस्से पर साफ साफ दिखती है कि दहेज बाल प्रथा बाल विवाह बालिकाओं का शोषण होता हुआ इन सबको समाप्त करने के लिए कई प्रकार के कानून भी बनाए गए हैं। आज भी हमारे देश में दहेज प्रथा में बखूबी जड़ जमा रखी है। इस प्रथा के कुपरिणाम स्वरूप कई बहुएं दहेज की बलि देवी पर चढ़ जाती हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि दहेज प्रथा को समाप्त करने के लिए कठोर कानून ही ना बनाए जाएं बल्कि इन्हें लागू भी किया जाना चाहिए ताकि इस प्रकार के कार्य करने वाले को दंडित किया जा सके। इसे रोकने के लिए स्वयं लड़कियों और महिलाओं को आगे आना पड़ेगा। बाल विवाह जैसी भयंकर कुरीति भी है जो कि अब शहर में तो कम हो गई लेकिन गाँव में आज भी जीवित है। इसमें भी एक एक दंडीय अपराध है और आज गाँवों में और कई जातियों में बाल विवाह को प्रथा प्रचलित है। इसे रोकने के लिए भी महिलाओं को आगे आना पड़ेगा और लड़कियों को भी इसमें इसके विरुद्ध आवाज उठानी पड़ेगी। इसके अतिरिक्त और भी सामाजिक कुरीतियां जैसे मृत्यु भोज कन्या भ्रूण हत्या प्रदा प्रथा जैसी रूढ़ियां आज भी हमारे समाज में काले धब्बे की तरह हैं। इन सब बुराइयों को दूर करने के लिए हम महिलाओं को ही आगे आना पड़ेगा। अगर हम अपनी सोच नहीं बदलेंगे तो हम दूसरों की सोच नहीं बदल पाएंगे और इनका स्वाभिमान हमारी आने वाली पीढ़ियों को भुगतना पड़ेगा। साथ ही महिलाओं को भी अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति जागरूक होना चाहिए ताकि अपने ऊपर होने वाले अत्याचारों जैसे घरेलू हिंसा दहेज प्रथा प्रदा प्रथा भ्रूण हत्या और अन्य सामाजिक कुरीतियों को सहन ना करें बल्कि एकजुट होकर उनके विरुद्ध आवाज उठाएं। भारत में लगभग आधी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व महिलाएं करती हैं। आज भी महिलाओं में शिक्षा की कमी है। अगर महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं होंगी तो देश कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। इस संदर्भ में कई महिला संगठन गांव जा जाकर लड़कियों की शिक्षा पर जोर देते हैं और उन्हें बताते हैं कि प्रत्येक महिला का अधिकार है कि वो शिक्षा ग्रहण करे। विद्रम यंग के द्वारा एक प्रसिद्ध कहावत है कि अगर आप एक आदमी को शिक्षित करते हैं तो आप सिर्फ एक आदमी को ही शिक्षित कर रहे हैं पर अगर आप एक महिला को शिक्षित करते हैं तो आप आने वाली पूरी पीढ़ी को शिक्षित करते हैं। इस प्रकार समाज के विकास के लिए लड़कियों को शिक्षित होना जरूरी है और इसमें महिलाएं यानी कि समाज सेवी संगठन आंगनबाड़ी आदि संस्थाओं का भी योगदान है। समाज में फैली कई कुरीतियों को समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा कई कानून बनाए गए हैं। इस संबंध में महिलाओं और उनके संगठन गाँव जा जाकर महिलाओं को इस कानूनों की अहमियत समझाते हैं जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के द्वारा गांव की महिलाओं को जागरूक करती हैं जिससे कि महिला साक्षरता के प्रतिशत बढ़ सके। इसके अतिरिक्त महिलाएं तथा महिला समाज सेवी संस्थाएं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अन्य कुरीतियां जैसे कि दहेज प्रथा घरेलू हिंसा बाल विवाह भ्रूण हत्या आदि के बारे में गांव जा जाकर सरकार द्वारा चलाए गए कार्यक्रम और उन्हें रोकने के लिए बनाए गए कानून के बारे में भी बताती हैं जैसे कि कई जिलों में डिजिटल इंडिया के क्षेत्र में महिला सरपंच खुले में शौच मुक्त जिला बनाने में प्रयासरत हैं। इसके अतिरिक्त महिलाएं की मांग पर ही कई जगह शराबबंदी कानून लागू हुआ जिसकी वजह से महिलाओं पर हो रही हिंसाएं कम हुई। इसके साथ हम महिलाओं द्वारा अपने साथ हो रहे अन्याय और शोषण के विरुद्ध आवाज उठाई जिसके फलस्वरूप एक अभियान चलाया दुष्कर्म के विरुद्ध फोरम से लेकर महिला दमन विरोधी फोरम तक में विभिन्न मुद्दों को उठाया जैसे कि यौन उत्पीड़न दहेज संबंधी हिंसा एवं भ्रूण हत्या घरेलू हिंसा आदि कई समस्याओं का भी निदान किया जाता है। महिलाओं ने विभिन्न क्षेत्रों स्तरों पर अपनी सक्रिय भूमिका निभाने के लिए कई संगठन बनाए जैसे कि महिला स्वयंसेवी समूह महिला विकास अध्ययन केंद्र भारतीय महिला सम्मेलन की अनेक शाखाएं महिला राष्ट्रीय आयोग जो कि समय समय पर महिलाओं की समस्या का समाधान करती हैं। इसके अतिरिक्त और भी समस्याओं के महिला ने आवाज उठाई जैसे शाहबानो केस की तरह ही शायर ने कहा कि तीन बार तलाक कहकर रिश्ता तोड़ देना गैर संवैधानिक है और इस पर मुझे न्याय मिला और अब सरकार इस पर रोक लगा दी गई है। अंत में मैं

0: यही कहूंगी कि जिस प्रकार इन महिलाओं ने हम सबके लिए योगदान दिया है, उसी प्रकार हम सबको भी इन बुराइयों के खिलाफ एकजुट होकर आगे आना चाहिए। साथ ही हमें दहेज प्रथा, भ्रूण हत्या, अंधविश्वास जैसी बुराइयों से दूर रहना चाहिए। इन सब कुरीतियों को दूर करने के 3 उपाय हैं, शिक्षा, जागरूकता और स्वावलंबन। महिलाएं स्वयं इतनी आत्मनिर्भर बन जाएं कि उन्हें किसी की मदद की आवश्यकता नहीं पड़े। महिलाओं को स्वयं सामाजिक बुराइयों के खिलाफ बचाव बनाने के लिए सशक्त होना पड़ेगा। वित्तीय स्वतंत्रता एक महिला को दृढ़ बनाती है। आर्थिक रूप से सशक्त महिला सामाजिक बुराइयों के खिलाफ एक कवच है। आज भी हमारे समाज में, खासकर गांवों में, कई तरह की कुरीतियां फैली हुई हैं। इनको हम महिलाएं ही दूर कर सकती हैं और ये तब संभव है जब देश की प्रत्येक महिला शिक्षित हो और उसे कानून की जानकारी हो तथा अपने अधिकार के लिए आवाज उठाने की क्षमता रखती हो।
1: बहनों ने अभी सुनी वार्ता। वार्ता का विषय था सामाजिक कुरीतियां दूर करने में महिलाओं की भूमिका। वार्ताकार थी कल्पना श्रीवास्तव। तो बहनों, इस खूबसूरत से प्यारे से मौसम का लुत्फ उठाते हैं इस गीत के साथ।

0: गुरु तो वही है जो हमें सही राह दिखाए, और राह दिखाने वाले सिर्फ किताब ही गुरु नहीं होते, बल्कि वो महान हस्तियां भी होती है जिनकी सोच और आदर्श पूरे देश को एक नई दिशा देते हैं।
1: अरे वाह सपना, आज तो बात की शुरुआत ही इतनी सुंदर सोच से हुई है, तो फिर क्यों ना हम अपनी सखियों को भी बता दें कि आज के इस कार्यक्रम में हम किस महान व्यक्तित्व के बारे में बात करने वाले हैं।
0: बिल्कुल अनुपम, आज हम बात कर रहे हैं भारत की एक ऐसी महान हस्ती को याद कर रहे हैं जिन्होंने न सिर्फ देश के उद्योगों को नई ऊंचाई दी बल्कि भारत को उड़ान भरना भी सिखाया। आज है भारत के रत्न J.R.D. टाटा की जयंती, यानी जहांगीर रतन जी दादा भाई टाटा।
1: बिल्कुल सपना, J.R.D. जब भी उनका नाम आता है तो सबसे पहले उनकी ईमानदारी, मेहनत और देश की सेवा की मिसाल आंखों के सामने आ जाती है। और सपना, क्या तुम जानती हो कि उन्हें भारत के नागरिक उड्डयन का जनक भी कहा जाता है?
0: हाँ अनुपम, जनक भी कहा जाता है, नागरिक उड्डयन का जनक भी कहा जाता है उन्हें। और अनुपम, 15 अक्टूबर 1932 का वो ऐतिहासिक दिन कौन भूल सकता है, जब उन्होंने खुद का छोटा सा कराची से मुंबई तक का विमान उड़ाकर टाटा एयरलाइंस की शुरुआत की थी, जो आगे चलकर हमारी पहचान एयर इंडिया बनी।
1: कितनी अद्भुत बात है ना सपना, सोचकर देखें कि उस दौर में जब साधन इतने सीमित थे तब उन्होंने आसमान छूने का सपना देखा और उसे सच करके भी दिखाया। सपना, J.R.D. टाटा सिर्फ एक सफल उद्योगपति या पायलट ही नहीं थे बल्कि एक बेहद संवेदनशील इंसान थे। उन्होंने हमेशा माना कि कामगारों का ध्यान रखना केवल एक नियम नहीं है बल्कि हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। आज जो हर काम की जगह 8 घंटे की शिफ्ट करना, प्रोविडेंट फंड, मैटरनिटी लीव और मुफ्त चिकित्सा सेवा जैसी सुविधाएं मिल रही है ना, J.R.D. टाटा जी ने ये सब देश में कानून बनने से पहले ही अपने संस्थानों में लागू कर दी थी।
0: सच में अनुपम, कितनी दूरदर्शी सोच थी उनकी। और महिला सशक्तिकरण की हम बात करें तो उन्होंने महिलाओं के लिए भी बहुत काम किया। उन्होंने हमेशा माना कि जब तक महिलाएं हर क्षेत्र में आगे नहीं आएगी तो देश सही मायनों में आत्मनिर्भर नहीं बन सकता। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के क्षेत्रों में अनगिनत काम किए। टाटा ट्रस्ट के माध्यम से लाखों महिलाओं को स्वावलंबी बनाने की दिशा में भी उन्होंने काम किया।
1: कितना कुछ सीखने को मिलता है ना उनके जीवन से। अगर हम उनकी सोच को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उतारना चाहें तो सपना, सबसे बड़ी सीख क्या हो सकती है?
0: हाँ अनुपम, उनकी दो बातें मुझे सबसे ज्यादा प्रेरित करती है। तो पहला है उत्कृष्टता। वे कहते थे कि यदि आप कोई काम कर रहे हो तो उसे इतने मन और परफेक्शन से करें, यानी पूर्णता से करें, उसे बेहतर कोई हो भी नहीं सकता भले वो काम में कितना भी छोटा क्यों ना हो। और दूसरी बात यह है नम्रता। इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचने के बाद भी वे अपने छोटे से छोटे कर्मचारी से भी बेहद आदर के साथ मुस्कुराकर बात करते थे।
1: यानी अनुशासन, दूसरों के प्रति आदर और समाज के लिए कुछ कर गुजरने की चाहत, यही उनकी असली ताकत थी। तो सखियों, J.R.D. टाटा की जयंती के इस मौके पर ये संकल्प लें कि हम अपने अपने क्षेत्र में अपना सर्वश्रेष्ठ देंगे और समाज की बेहतरी में छोटा ही सही अपना योगदान जरूर देंगे।
0: बिल्कुल अनुपम, सोच के साथ, मतलब जो न रहकर भी अपनी खुशबू को, अपने माँ, अपने आप को महका रहे हैं, तो आइए हम उन्हें याद करते हैं इस गीत के माध्यम से।

अनुपम, अभी हमने गुरु पूर्णिमा और जीवन में गुरु के महत्व पर बात की थी। गुरु का स्थान तो हमारे जीवन में सबसे ऊपर है ही,

0: है वो पहुंच रहे हैं हम।
1: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के, अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
2: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर

0: अपना JRD टाटा की बातें सुनकर दिल सच में प्रेरणा से भर गया। लेकिन सपना, आज जुलाई के इस महीने में जब हम देश की महान हस्तियों को याद कर रहे हैं, तो एक और नाम है जिसके बिना भारत की आजादी का इतिहास अधूरा है।
1: बिल्कुल सही कहा अनुपम। आज 29 जुलाई को जहां हमने JRD टाटा जी को हमने याद किया, वहीं आज के दिन स्वतंत्रता संग्राम और भारत छोड़ो आंदोलन की महान वीरांगना अरुणा आसिफ अली जी की पुण्यतिथि भी है।
0: अरे हाँ सपना, भारत छोड़ो आंदोलन की नायिका अरुणा आसिफ अली जी, सपना उनका नाम आते ही 1942 के उस ऐतिहासिक पल की याद आ जाती है जब चारों तरफ अंग्रेजों का पहरा था और देश के बड़े बड़े नेता जेल में थे।
1: बिल्कुल सही कहा अनुपम। 9 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान पर जब ब्रिटिश सरकार ने तिरंगा फहराने पर पाबंदी लगा रखी थी, तब इस राशि महिला ने निडर होकर तिरंगा फहराया था और उस एक घटना ने पूरे देश के युवाओं में देशभक्ति का एक ऐसा जोश भर दिया था जिसकी गूंज लंदन तक सुनाई दी थी।
0: कितना जबरदस्त हौसला था उनका सपना। उन्हें तो ओल्ड लेडी द इंडिपेंडेंस मूवमेंट भी कहा जाता है ना?
1: हाँ अनुपम। और सिर्फ आजादी की लड़ाई ही नहीं, आजादी के बाद भी उन्होंने समाज सुधार और महिला अधिकारों के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया और वे दिल्ली की पहली मेयर बनी और वहां उन्होंने साफ सफाई, शिक्षा और गरीबों के हक के लिए एक ऐतिहासिक बदलाव भी किए।
0: कितने गर्व की बात है ना कि एक महिला होकर उस जमाने में इतने बड़े फैसले लेना, भूमिगत रहकर क्रांति की मशाल जलाए रखना और फिर समाज की सेवा में लगे रहना, यह अपने आप में हर महिला के लिए एक मिसाल है।
1: बिल्कुल। और सच में उन्होंने हमें सिखाया कि जब देश या समाज को हमारी जरूरत होती है ना, तो डर को पीछे छोड़कर आगे आना चाहिए।

0: उन्हें मरणोपरांत देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से भी नवाजा गया है और आज उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें याद करना हमारे लिए गर्व की बात है अनुपम।
1: बिल्कुल सपना, आज JRD टाटा जी की औद्योगिक प्रगति की सोच और अरुणा आसिफ अली जी का यह निडर राष्ट्र प्रेम दोनों ही हमें यह सिखाते हैं कि अपने देश के लिए हम हर क्षेत्र में अपना सर्वश्रेष्ठ कैसे दे सकते हैं।
0: बिल्कुल अनुपम, सर्वश्रेष्ठ रहने के लिए सबसे जरूरी है हमारा स्वस्थ रहना और अब हम बात करते हैं हमारे स्वास्थ्य की।
1: बिल्कुल सपना, क्योंकि प्रकृति ने हमें अनेक अनमोल उपहार दिए हैं, उन्हीं में से एक है फल, जो न केवल स्वाद से भरपूर है बल्कि हमारे शरीर को स्वस्थ, ऊर्जावान और रोगों से लड़ने में सक्षम भी बनाते हैं, क्योंकि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है और धन की रक्षा में फलों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है।
0: बिल्कुल अनुपम, फल हमारे भोजन का अहम हिस्सा है, इसमें विटामिन, खनिज, फाइबर, प्राकृतिक शर्करा और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। ये शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं और पाचन तंत्र को बेहतर बनाते हैं और हृदय, त्वचा तथा आंखों और स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी होते हैं।
1: और मौसमी फलों का सेवन विशेष रूप से लाभदायक माना जाता है, जैसे गर्मियों में तरबूज, खरबूजा और आम, तो वर्षा ऋतु में जामुन, नाशपाती और अमरूद जैसे फल शरीर को आवश्यक पोषण देते हैं।
0: लेकिन अनुपम, फलों का सेवन करते समय कुछ सावधानियां भी तो जरूरी है, जैसे फल खाने से पहले उन्हें अच्छी तरह से धो लें और कटे हुए फल लंबे समय तक खुले में ना रखें,
1: और जहां तक हो सके डिब्बा बंद जूस की जगह भी ताजा फलों को लें और संतुलित मात्रा में इनका सेवन करें।
0: बिल्कुल बहनों, याद रखिए, रोज खाइए ताजे फल, सेहत रहेगी हर पल सफल।
1: और सपना, अब हमारी बहनों के तन और मन को तरोताजा करने के लिए ले चलते हैं प्रकृति की सुंदर वादियों में।

जी हाँ बहनों, ठंडी हवाओं का लुत्फ उठाती रहें, मुस्कुराती रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें और हमारे साथ कार्यक्रम में हमेशा जुड़ी रहें। इसी के साथ अनुपम पांडे और सपना व्यास को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: World Tiger Day is being observed across the world today to raise awareness about tiger conservation, protect natural habitats and address the declining numbers of wild tigers. Prime Minister Narendra Modi has extended his greetings saying India is home to 70% of the global tiger population. He noted that India's tiger conservation efforts are inspired by the nation's centuries-old culture of living in harmony with nature and powered by the collective will of the people. Addressing an event in New Delhi, Minister of Environment, Forest and Climate Change, Bhupendra Yadav today said that tiger conservation is not merely about protecting one species, but about safeguarding the entire ecological system and preserving India's compassionate relationship with nature.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में
2: इंडिया हैज मेड सिग्निफिकेंट स्ट्राइड्स इन कंजर्वेशन अंडर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लीडरशिप द टाइगर पॉपुलेशन हैज इंक्रीज फ्रॉम 2226 टू ओवर 3600 टाइगर रिजर्व्स हैव एक्सपेंडेड फ्रॉम 47 टू 58 एंड एलिफेंट रिजर्व्स हैव आल्सो गॉन अप फ्रॉम 28 टू 32 अंडरस्कोरिंग द कंट्रीज ग्रोइंग कमिटमेंट टू वाटर कंजर्वेशन डेजिग्नेटेड रामसर साइट्स हैव आल्सो ग्रोन फ्रॉम 26 टू 100
1: डेजिग्नेटेड रामसर साइट्स की संख्या 26 थी जो बढ़कर के अब 100 हो गई.
0: During the event, he also launched eco-tourism web portal developed by the National Tiger Conservation Authority. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Lok Sabha continues discussion on Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026. Government says bill aims to strengthen students' confidence in examination system. Home Minister Amit Shah reviews flood relief efforts in Assam, says centre to provide all help to Assam during difficult time. India strongly condemns recent attacks on several maritime vessels in Strait of Hormuz, says commerce through international waterways must be restored. Death toll reaches 40 in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir following brutal crackdown by Pakistani forces. And International Tiger Day 2026 being observed today. India leads the world in tiger conservation efforts with nearly 70% global tiger population. And with that, we end the midday news.
3: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा. मुख्य समाचार. लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर फिर चर्चा. सरकार ने कहा विधेयक का उद्देश्य परीक्षा प्रणाली में विद्यार्थियों का विश्वास बढ़ाना है. गृह मंत्री अमित शाह ने असम में बाढ़ राहत कार्यों की समीक्षा की. उन्होंने कहा सरकार इस कठिन समय में असम को हर संभव सहायता प्रदान करेगी. भारत में हुर्मुज जलडमरू मध्य में हाल में हुए कई समुद्री जहाजों पर हमले की कड़ी निंदा की. कहा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों से व्यापार बहाल होना चाहिए. पाकिस्तानी सेना की बर्बर कार्रवाई के बाद पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में मरने वालों की संख्या 40 हुई. और आज अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा विश्व में बाघों की कुल संख्या का 70% भारत में. अब समाचार विस्तार से. लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर विचार और पारित करने के लिए चर्चा फिर शुरू हुई. ये विधेयक लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 में संशोधन का प्रावधान करता है. विधेयक में कई महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल किए गए हैं. इसके तहत दोषी पाए जाने वालों के लिए अधिकतम 10 वर्ष के कारावास, 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने और दोष सिद्ध अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है. मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए विधेयक में प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन को विशेष फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करने का प्रावधान किया गया है ताकि मामलों की दैनिक आधार पर सुनवाई हो सके. इसके अतिरिक्त पुलिस थाने में मामला दर्ज होने की तिथि से 2 महीने के भीतर जांच पूरी करना अनिवार्य होगा जबकि आरोप पत्र दाखिल होने के 3 महीने के भीतर मुकदमे का निपटारा करना होगा. केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने ये विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया था. चर्चा में भाग लेते हुए जनता दल यूनाइटेड के सांसद दिलेश्वर कामत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ये विधेयक विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य को सुनिश्चित करेगा और शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ाएगा. उन्होंने कहा कि ये विधेयक विद्यार्थियों के हित में लाया गया है.

0: वहीं विधेयक का विरोध करते हुए आरएसपी सांसद एनके प्रेमचंद्रन ने कहा कि विधेयक अपने घोषित उद्देश्य को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। विधेयक पर चर्चा के दौरान लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि देश की शिक्षा व्यवस्था अब बहुत महंगी हो गई है। इस दौरान संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने गृह मंत्री अमित शाह पर राहुल गांधी की टिप्पणियों पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की। श्री रिजिजू ने श्री गांधी से सदन में अपनी टिप्पणी के लिए माफी मांगने की मांग की।
1: कौन सा ऑर्डर है वो ऑर्डर आप निकाल के बताइए। आपने कहा होम मिनिस्टर ने ऑर्डर दिया है फायरिंग के लिए, आप वो ऑर्डर का कॉपी निकालिए। आप बताइए किसने आपको बताया, कौन सा ऑर्डर नंबर किस व्यक्ति को कहा है, कौन सा अधिकारी, आप कॉपी निकाल करके सदन में रखिए। ऐसा नहीं हो सकता है, चर्चा ऐसा नहीं हो सकता है। कुछ भी मन में चाहेगा बोल करके आप भाग जाएंगे हेडलाइन बतौरने के लिए, ऐसा नहीं हो सकता। ये भारत का संसद है, यहाँ जिम्मेदारी के साथ बोलना चाहिए।
0: श्री राहुल गांधी की टिप्पणियों पर हंगामे के बीच लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली है। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी सांसद जॉन ब्रिटास ने जेएनयू छात्र संघ की पूर्व अध्यक्ष आयशी घोष के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा पार्टी मुख्यालय में कथित तौर पर घुसने का मुद्दा उठाया। इस पर सदन के नेता जेपी नड्डा ने कहा कि यह कानून व्यवस्था का एक सामान्य मामला है। हालांकि विपक्षी सदस्यों ने अपनी मांग पर जोर देते हुए विरोध जारी रखा, जिसके कारण सभापति ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी। राज्यसभा की कार्यवाही जारी है। भाजपा सांसद डॉ. सतीश पूनिया ने संसद में कांग्रेस के आचरण की आलोचना करते हुए आरोप लगाया है कि पार्टी रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाने में विफल रही है। भाजपा सांसद संजय जायसवाल ने भी विपक्ष पर परीक्षा सुधारों पर हुई चर्चा में रचनात्मक रूप से भाग न लेने का आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्ष ने प्रस्तावित कानून में कोई कमी नहीं बताई और न ही सुधार के लिए कोई सुझाव दिया। भाजपा सांसद शशांक मणि ने लोक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 को प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। झारखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा के कथित पेपर लीक मामले के विरोध में झारखंड समेत कई भाजपा सांसदों ने आज संसद परिसर में प्रदर्शन किया। उन्होंने मामले की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई जांच और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग की। केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता संजय सेठ ने भी मामले की सीबीआई जांच की मांग की।
2: झारखंड के अंदर एक TDPL एजेंसी है जो परीक्षा कराती है, उत्तर प्रदेश सरकार ने उसको ब्लैकलिस्टेड किया, यहाँ तक कि जेपीएससी ने ब्लैकलिस्टेड किया, फिर उसको बुलाकर पिछले 4 सालों से उसी को जिम्मा दे दिया। जो ब्लैकलिस्टेड है आपने भी किया, थाली में परोस के दे दिया, अब आप कहाँ से न्याय दे पाओगे। तभी तो आज झारखंड के लाखों युवा मांग कर रहे हैं कि सीबीआई जांच कराओ। हम तो इंतजार कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी का, कब वो झारखंड आएंगे, कब मुख्यमंत्री आवास के सामने धरने बैठेंगे, कब वो मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री हैं।
0: भाजपा सांसद विद्युत बरन महतो ने झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस सरकार पर गहरे भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप लगाया है।
3: जेपीएससी बहाली में पेपर लीक हुआ है और आए दिन झारखंड में इस तरह कुछ न कुछ होता है। लॉ एंड ऑर्डर एकदम खत्म है, हर विभाग में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। इसके लिए हम लोग यहाँ पर धरना दिए हैं। हम लोग चाहते हैं कि जो जेपीएससी में धांधली हुआ इसको सीबीआई जांच करे।
0: लोकसभा ने एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित विधेयकों की जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति का कार्यकाल इस वर्ष संसद के शीतकालीन सत्र के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक बढ़ा दिया है। समिति के अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी सांसद पीपी चौधरी ने संविधान 129वां संशोधन विधेयक 2024 तथा केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2024 की समीक्षा कर रही संयुक्त संसदीय समिति का कार्यकाल बढ़ाने का प्रस्ताव सदन में पेश किया। इन विधेयकों का उद्देश्य लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने की व्यवस्था लागू करना है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस प्रस्ताव को ध्वनिमत से पारित कर दिया।
4: प्रश्न है कि श्री पीपी चौधरी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में हाँ के हैं,
5: हाँ।
4: जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में ना के हैं, हाँ। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष हुआ, हाँ वालों के पक्ष हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
0: ये समाचार हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप और हमारे

0: वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने असम के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंता बिस्व शर्मा से बात की और ऊपरी असम में आई भीषण बाढ़ के मद्देनजर जारी राहत कार्यों की समीक्षा की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. शर्मा ने बताया कि श्री शाह ने जमीनी स्थिति का जायजा लिया और आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत, पुनर्स्थापन और पुनर्निर्माण के लिए सभी आवश्यक सहायता प्रदान करती रहेगी। इस बीच असम में बाढ़ की स्थिति में और सुधार हुआ है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राहत और बचाव अभियान युद्ध स्तर पर जारी है।
1: असम में शिवसागर, गोलाघाट, सरायदेव और जोरहाट जैसे सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित जिलों में राहत और पुनर्वास कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है। असम सरकार ने हाल की बाढ़ में प्रभावित लोगों के लिए राहत और पुनर्वास उपायों की घोषणा की है। इनमें बाढ़ में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को अनुग्रह राशि, प्रभावित परिवारों को वित्तीय सहायता तथा विद्यार्थियों के लिए शैक्षणिक सहायता शामिल है। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: ओडिशा से हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि राज्य में गंभीर होती बाढ़ की स्थिति से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है।
2: ओडिशा में बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है। इसमें 4 लोगों की मौत हुई है और 6 जिले में 2,00,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं, जबकि लगभग 28,000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। जाजपुर, भद्रक, बालेश्वर और केंदुझर सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में शामिल है। बैतरणी नदी आखुआपदा में खतरे के निशान से काफी ऊपर बह रही है और सालंदी नदी में अभी भी उफान है। जाजपुर के दशरथपुर में तटबंध टूटने से सैकड़ों परिवार फंस गए हैं। बचाव और राहत कार्यों के लिए एनडीआरएफ और ओडीआरएफ के 17 टीम तैनात की गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: भारत ने होर्मुज जलडमरू मध्य में हाल में हुए कई समुद्री जहाजों पर हमलों की कड़ी निंदा की है। भारत ने कहा है कि इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों और नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाए जाने की घटनाएं तुरंत बंद होनी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि पश्चिम एशिया में हमले फिर से शुरू होना चिंता का विषय है।
3: पश्चिम एशिया भारत के लिए बहुत अहम इलाका है। इस इलाके की सुरक्षा और स्थिरता में हमारे बड़े हित जुड़े हैं। भारत का व्यापार और ऊर्जा सप्लाई चेन इस इलाके से मजबूती से जुड़े हैं। खाड़ी इलाके में लगभग 1 करोड़ भारतीय रहते हैं और काम करते हैं। उनकी सुरक्षा और भलाई हमारे लिए सबसे आवश्यक है। इस इलाके में चल रहे टकराव में कुछ समय के लिए रुकावट के बाद हमलों का फिर से शुरू होना और तनाव का बढ़ना चिंता की बात है। ये बहुत चिंताजनक है और भारत तनाव को तुरंत कम करने की अपील करता है।
4: कॉल्स फॉर एन इमीडिएट डीएस्केलेशन ऑफ टेंशंस।
0: श्री हरीश ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों पर आवाजाही और व्यापारिक स्वतंत्रता शीघ्र बहाल की जानी चाहिए। यूक्रेन के कीव स्थित भारतीय दूतावास ने कहा है कि एमवी अमीर वन जहाज पर सवार भारतीय नाविकों से संबंधित स्थिति उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है और वे जहाज पर सवार सभी भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संबंधित पक्षों के साथ निरंतर संपर्क में हैं। दूतावास ने ये जानकारी सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से दी। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति लगातार बढ़ती जा रही है। जम्मू कश्मीर मानवाधिकार निगरानी संस्था ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के कार्यालय से हस्तक्षेप करने की अपील की है। ये अपील उन खबरों के बाद की गई है जिनमें आरोप लगाया गया है कि पाकिस्तानी सुरक्षा बलों द्वारा की गई गोलीबारी में 40 से अधिक प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई है और कई घायल हुए हैं। जम्मू कश्मीर मानवाधिकार निगरानी संस्था ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क को भेजी अपनी अपील में कहा है कि ये घटना 27 जुलाई को ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी द्वारा शांतिपूर्ण मार्च के रावलकोट से मुजफ्फराबाद की ओर दोबारा शुरू होने के बाद हुई। उधर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के प्रवक्ता जेरेमी लॉरेंस से जारी एक बयान में कहा है कि किसी नागरिक समाज संगठन को अपराधी घोषित करना और शांतिपूर्ण सभाओं पर कड़े प्रतिबंध लगाना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा और संगठन बनाने के अधिकार के उल्लंघन को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा करता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। आज वैश्विक

0: लद्दाख दिवस है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर वन्य जीव प्रेमियों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्व में बाघों की कुल संख्या का 70% भारत में है। भारत के बाघ संरक्षण प्रयास प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करने की सदियों पुरानी संस्कृति से प्रेरित हैं और जनता की सामूहिक इच्छा शक्ति से संचालित हैं। वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि भारत ने बाघों के संरक्षण में शानदार सफलता हासिल की है।
1: हमारी जो टाइगर पॉपुलेशन 2226 थी वो बढ़कर 3600 से ज्यादा हुई। 2014 में 47 टाइगर रिजर्व्स होते थे, उनकी संख्या बढ़कर भी 58 हुई है। एलिफेंट रिजर्व्स की संख्या जो 28 होती थी वो भी पिछले 10 वर्षों में बढ़कर के 32 हुई है। डेजिग्नेटेड रामसर साइट्स की संख्या 26 थी जो बढ़कर के अब 100 हो गई है।
0: इस दौरान श्री यादव ने राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा विकसित इको टूरिज्म वेब पोर्टल का भी शुभारंभ किया। इस पोर्टल पर सभी बाघ अभयारण्यों की जानकारी उपलब्ध है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेल 2026 में गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने रजत पदक जीतने पर गुलवीर सिंह को बधाई दी है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर फिर चर्चा। सरकार ने कहा विधेयक का उद्देश्य परीक्षा प्रणाली में विद्यार्थियों का विश्वास बढ़ाना है। गृह मंत्री अमित शाह ने असम में बाढ़ राहत कार्यों की समीक्षा की। भारत ने होर्मुज जलडमरू मध्य में हाल में हुए कई समुद्री जहाजों पर हमलों की कड़ी निंदा की। पाकिस्तानी सेना की बर्बर कार्रवाई के बाद पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में मरने वालों की संख्या 40 हुई और आज अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोल मारू चैनल से बोल रहे हैं। इस समय दिन के 2:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए फिल्म संगीत। फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में आइए सबसे पहले सुनते हैं आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाज़ में ये गीत। फिल्म का नाम है कश्मीर की कली।

लता मंगेशकर, मुकेश और साथियों को आपने सुना। फिल्म का नाम था शोर। फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं अगला गीत। मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में गाए इस गीत को हमने लिया है फिल्म स्वयंवर से।

आवाज थी यशुदास और लता मंगेशकर की। फिल्म का नाम था त्रिशूल। फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में अंत में आइए सुनते हैं मुकेश की आवाज में ये गीत। फिल्म का नाम है बूंद जो बन गई मोती।

बूंद जो बन गई मोती। अभी आपने इस फिल्म का गीत सुना। गीत लिखा था सतीश भाटिया ने, संगीत भरत व्यास का था और स्वर मुकेश का था। इसके साथ ही फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम समाप्त हुआ। मेगा वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी बीकानेर का ढोल मारू चैनल है। इस समय दिन के 3 बजे हैं। हमारा ये प्रसारण अभी संपन्न होता है। संध्याकालीन सभा में संध्या 5 बजे आपके सेवा फिर उपस्थित होंगे। तब तक आज्ञा दीजिए।

215.5 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्स और FM 101.6 मेगाहर्ट्स पर हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोली मारू चैनल से बोल रहे हैं। शाम के 5 बजने को है। इसके साथ ही हमारी आज की संध्याकालीन सभा अब प्रारंभ होती है। हम इस सभा में आप सभी सुधी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करते हैं। सभा में आइए, सबसे पहले सुनते हैं हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से कुछ ही पलों में।

215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्स और FM 101.6 मेगाहर्ट्स पर हम आकाशवाणी बीकानेर के भोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। शाम के 5 बजने को है। इसके साथ ही हमारी आज की संध्याकालीन सभा अब प्रारंभ होती है। हम इस सभा में आप सभी सुधी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करते हैं। सभा में आइए, सबसे पहले सुनते हैं हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से कुछ ही पलों में।

0: लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 को पारित कर दिया है। इस विधेयक से लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन किया गया है। विधेयक में 10 वर्ष तक के कारावास, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश को दैनिक सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक न्यायालय स्थापित करने का आदेश दिया गया है। अपराधों की जांच पुलिस थाने में सूचना दर्ज होने की तारीख से 2 महीने के भीतर पूरी की जानी चाहिए। मुकदमे की सुनवाई आरोप पत्र दाखिल होने की तारीख से 3 महीने के भीतर पूरी होनी चाहिए। कार्मिक लोक शिकायत और राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि विधेयक में संशोधन कानून को और अधिक सख्त बनाने तथा त्वरित न्याय दिलाने के लिए किया गया है। नया विधेयक छात्रों और युवाओं के कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि विभिन्न दलों द्वारा शासित राज्यों में पेपर लीक होने की घटनाएं हुई हैं।
1: एग्जामिनेशन को लेकर के तरह तरह की वारदातें होती रही, पेपर लीक भी होता रहा। ये केवल किसी एक प्रदेश या एक प्रांत तक सीमित नहीं रहा, ऐसा पहले भी होता था। अलग अलग पार्टियों की सरकारें रही, अलग अलग प्रदेश रहे। सूची लंबी है। 2019 में रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का एग्जामिनेशन, वो भी इन्हीं कारणों से, लेकिन उस समय उस तरह की कार्रवाई नहीं की गई जिस तरह की अब प्रस्तावित की जा रही है।
0: विपक्ष के आचरण पर डॉक्टर सिंह ने कहा कि जब एक महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा हो रही है तो विपक्ष सुझाव देने की बजाय राजनीति कर रहा है। उन्होंने विपक्ष के नेता राहुल गांधी के असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करने की भी आलोचना करते हुए इसे अनुचित और दुर्भाग्यपूर्ण बताया। राज्यसभा ने राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा के लिए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान जनगण मन के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करेगा। वंदे मातरम के अपमान के लिए अब 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि विधेयक में संशोधन केवल एक विधायी परिवर्तन नहीं है। श्री राय ने कहा कि वंदे मातरम का जानबूझकर अपमान करना वर्तमान कानून के अंतर्गत दंडनीय होगा। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम का विरोध तुष्टिकरण की नीति को दर्शाता है जो राष्ट्र के गौरव को ठेस पहुंचाता है। गृह मंत्री अमित शाह ने बाढ़ प्रभावित असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा से बात कर राहत कार्यों की समीक्षा की। डॉक्टर शर्मा ने बताया कि गृह मंत्री ने जमीनी स्थिति का जायजा लिया और आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत, पुनर्स्थापन और पुनर्निर्माण के लिए सभी आवश्यक सहायता प्रदान करती रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अगस्त को नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ करेंगे। ये नशाखोरी के खिलाफ 100 सप्ताह का एक राष्ट्रव्यापी जनभागीदारी आंदोलन है। इस पहल का लक्ष्य जागरूकता, सामुदायिक सहभागिता और निरंतर जनभागीदारी को बढ़ावा देकर नशा मुक्त भारत के निर्माण के लिए युवाओं को एक सामूहिक राष्ट्रीय मिशन में एकजुट करना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में भारतीय पारंपरिक कला रूपों के कलाकारों से मुलाकात की और उनके कार्यों का अवलोकन किया। बनारस भित्तिचित्र थंका नायका, केरल भित्तिचित्र बसोहली, सुरपुर और मैसूर जैसी कला शैलियों का प्रतिनिधित्व करने वाले 12 कलाकार कलाकार निवास कार्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्रपति भवन में रह रहे हैं। कलाकार निवास कार्यक्रम भारत की कलात्मक परंपराओं की भावना का उत्सव है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में तजिंदर पाल सिंह तूर और समरदीप सिंह गिल ने शॉटपुट फाइनल में जगह बनाई।

0: है। आज रात महिला शॉटपुट फाइनल में मनप्रीत कौर खेलेंगी। वहीं ऊंची कूद के फाइनल में श्रीशंकर मुरली और लोकेश सत्यानंद चुनौती पेश करेंगे। पदक तालिका में भारत 2 स्वर्ण 7 रजत और 3 कांस्य पदकों के साथ 9वें स्थान पर है। हॉकी इंडिया ने आज एशियाई खेलों के लिए 20 सदस्यीय भारतीय पुरुष हॉकी टीम की घोषणा कर दी है। हरमनप्रीत सिंह भारतीय टीम के कप्तान होंगे। ये प्रतियोगिता 19 सितंबर से 4 अक्टूबर के बीच जापान के आईची नागोया में खेली जाएगी। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाश में बीकानेर का ये ढोली मारू चैनल है। शाम के 5:05 हुए, आइए सुनते हैं कार्यक्रम बिजू वाणी। आज इस कार्यक्रम को पेश कर रही हैं मूल राज पुरोहित और प्रियंका सोनी।

0: सबका भी अपना अलग ही सफर होता है, पता ही नहीं चलता कब मुस्कुराहट से शुरू होकर किसी अच्छी सोच तक पहुंच जाए। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी में। आज आपके साथ हूँ मैं प्रियंका सोनी।
1: और मैं हूँ मूमल।
2: प्रियंका जरा माइक अपनी तरफ कर लो।
0: हाँ मूमल, अब ठीक है। दोस्तों प्रोग्राम शुरू होते ही माइक चेक करना भी जरूरी है, आप भी जरा वॉल्यूम देख लीजिए कहीं कोई बात मिस नहीं हो जाए।
2: वैसे प्रियंका याद है जब फर्स्ट टाइम हम स्टूडियो आए थे, माइक देखते थे और कितनी घबराहट सी होती थी।
0: हाँ, आज भी कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि रेडियो पर बोलते हुए डर नहीं लगता।
2: अच्छा फिर तुम क्या कहती हो?
0: वही कहती हूँ, शुरू शुरू में तो बहुत डर लगता था, माइक के सामने आते ही ऐसा लगता था कि कहीं कुछ गलत नहीं बोल दूं, गलत नहीं निकल जाए मुंह से। लेकिन धीरे धीरे आदत भी हो गई और अब तो माइक देखते ही बात करने का मन करने लगता है।
2: बिल्कुल, और मुझे लगता है ऐसा सिर्फ रेडियो के साथ नहीं होता, शुरुआत में हर एक नया काम थोड़ा सा मुश्किल जरूर लगता है।
0: हाँ, जब वही काम हम बार बार करते हैं तो डर कम होने लगता है और मजा ज्यादा आने लगता है।
2: शायद इसीलिए कहते हैं कि जिस काम में मन लग जाए उसे करते समय हमें समय का ध्यान ही पता नहीं चलता।
0: कई बार लोग पूछते हैं कि इतनी देर बोलने से थकते नहीं, लेकिन सच कहूं अगर काम पसंद का होना तो थकान नहीं होती, और अगर होती भी है तो वो थकान अलग ही तरीके की होती
2: है। वही तो, अगर काम पसंद का हो तो अक्सर हम ये भी देखते हैं कि करियर की बात बहुत ज्यादा लोग करते हैं, लेकिन उससे पहले ये कम सोचते हैं कि हमारी उस करियर के प्रति अभिरुचि है या नहीं।
0: क्योंकि हम ये चीज सोचने में ज्यादा समय लगा देते हैं कि दुनिया हमें क्या बनते देखना चाहती है।
2: यही तो प्रॉब्लम है प्रियंका, हमारी अभिरुचि या हमारा इंटरेस्ट किसी चीज में हो ना हो उस बारे में कोई सोचता ही नहीं।
0: और काम तो वही करने में मजा आता है जिसे करते समय बार बार घड़ी देखने का मन नहीं करे, जिसमें मन अपने आप लगने लगता है।
2: लेकिन एक बात ये भी सच है, सिर्फ किसी चीज को पसंद करना ही काफी नहीं होता, उस पसंद को स्किल में बदलने के लिए मेहनत भी करनी पड़ती है।
0: हाँ देखो ना, किसी को गाना पसंद होता है, किसी को पढ़ना, किसी को लिखना, किसी को पेंटिंग, किसी को फोटोग्राफी। हर इंसान की रुचि अलग अलग होती है
2: और कुछ लोगों की रुचि सिर्फ इसीलिए नई नई डिश खाने में भी होती है।
0: हाँ, उनको अगर कोई पूछे कि तुम्हारा पैशन क्या है तो जवाब मिलेगा मेन्यू देखना।
2: और सबसे बड़ी टैलेंट की ये प्लेट में रखे जो लास्ट समोसे का बाइट होता है वो लोग उसे भी बड़े चाव से खाते हैं।
0: मूमल ये भी एक स्किल है, लेकिन इसमें करियर बनने के चांसेस थोड़े से कम है।
2: और यही तो अच्छी बात है प्रियंका, सोचो अगर सभी की रुचि एक जैसी होती तो दुनिया कितनी बोरिंग हो जाती।
0: अब देखो ना, अगर सब डॉक्टर बन जाते तो गाने कौन गाता, सब टीचर बन जाते तो पुल कौन बनाता, और अगर सब रेडियो प्रेजेंटर बन जाते तो सुनता कौन।
2: सही कहा, कोई सुनने वाला भी तो होना चाहिए।
0: हाँ?
2: हर एक को एक ही अगर प्रोफेशन चाहिए या एक ही प्रोफेशन में चले जाए तो फिर बाकी का काम कौन करता। इसलिए सिर्फ ये देखकर करियर नहीं चुनना चाहिए कि दूसरे क्या कर रहे हैं।
0: हाँ, कई बार हम किसी फील्ड में सिर्फ इसलिए चले जाते हैं कि दोस्तों ने वही चुना है या किसी ने कह दिया कि इसमें स्कोप बहुत है,
2: जबकि स्कोप के साथ साथ ये भी जरूरी है कि उस काम में आपका मन भी लग रहा है या नहीं।
0: क्योंकि अगर मन ही नहीं लगेगा तो छोटी सी सफलता भी अधूरी लगेगी। और आजकल तो एक नया ही ट्रेंड चल रहा है, सोशल मीडिया। उस पे एक वीडियो देखा नहीं कि लगता है अब तो बस यही करियर चुनना है, अगले दिन दूसरी वीडियो आई तो पुराने वाला सपना कैंसिल।
2: और बिल्कुल, सोमवार को तो फोटोग्राफर बनना है, बुधवार को एंटरप्रेन्योर, और रविवार तक आते आते ट्रैवलर,
0: और सोमवार तक आते आते फिर वही सवाल कि अब क्या करना है।
2: इसीलिए प्रियंका सिर्फ सोशल मीडिया देखकर करियर डिसाइड नहीं करना चाहिए।
0: हाँ।

0: फाइनल रिजल्ट दिखाई देता है, उसके पीछे की सालों की मेहनत नहीं। कुछ सेकंड के वीडियो में अगर कोई अपने सालों की मेहनत दिखा भी दे तो हमें लगता है कि बस इतना ही, पर रोज उसी चीज से निकलना, वही चीज देखना, हमें उस चीज को देखकर यही नहीं समझ आता कि उनमें कितनी मेहनत लगी है। लेकिन अगर आप उसमें अपना मन लगा देते हैं तो कुछ भी सीखना मुश्किल नहीं है।
1: हाँ, हर फील्ड में कंपटीशन है, चैलेंजेस हैं और लगातार सीखते रहना पड़ता है। कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि जो काम मिल जाए उसी में इंटरेस्ट बैठ जाएगा हमारा।
0: नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। बिना इंटरेस्ट के काम करना में वो मजा नहीं आता। अगर आप अपने इंटरेस्ट का काम करें, अपनी रुचि का काम करें, तो आपको लगता है कि अभी अभी तो नहीं और काम करना है। अगर रुचि के बिना कोई काम किया जाए तो वह पहली बात समझ ही नहीं आता। और इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी से पीछे हैं।
1: बिल्कुल, कई बार हमें अपना रास्ता छोटे छोटे अनुभवों से मिलता है, किसी कंपटीशन में हिस्सा लेने से, किसी वर्कशॉप से, किसी वॉलंटियर वर्क से, या फिर बस कोई नया काम ट्राई करके देखिए।
0: और एक बात हमेशा याद रखिए, रुचि सिर्फ सोचने से नहीं मिलती है, उसे करके दिखाना पड़ता है।
1: सही कहा, क्योंकि तैरना किताब पढ़कर नहीं सीखा जा सकता, पानी में तो उतरना ही पड़ता है।
0: और करियर भी कुछ ऐसा ही है, जब तक कोशिश नहीं करेंगे तब तक ये कैसे पता चलेगा कि आप किस काम में सबसे अच्छे हैं।
1: इसीलिए अपनी रुचि को पहचानिए, सीखते रहिए, नए अनुभव लेते रहिए, और सबसे जरूरी बात, दूसरों की कॉपी करने की कोशिश मत कीजिए।
0: क्योंकि दुनिया को कोई दूसरा नहीं चाहिए, दुनिया को वही चाहिए जो आप अपनी असली पहचान के साथ बन सकते हैं।
1: और हो सकता है आज जो आपको करना अच्छा लगता है, क्या पता वही कल आपकी सबसे बड़ी पहचान बन जाए। तो करियर ऐसा चुनो जहां आपका मन लगे, ताकि मन को अपने पंख मिल जाए, क्योंकि मनवा लाइक्स टू फ्लाई। One more time.

0: दी, हाँ? ये देख कैसे।
1: हैप्पी बर्थडे भाई।
0: दीका,
2: हाँ मेरा फेवरेट कलर हमेशा शॉपिंग।
3: आई नो माँ, बट खर्चा करने की भी यही उम्र है, राइट?
4: सेविंग करने की भी यही उम्र है।
5: आई नो पा, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा।
3: आई नो ना।
5: आरबीआई कहता है
6: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
7: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

0: जवानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: माह के पहले और तीसरे रविवार को सुबह 8:30 बजे सुनिएगा कार्यक्रम हेल्दी बीकाना, आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल की प्रस्तुति।
1: दोस्तों, वक्त है आपके पसंदीदा सेगमेंट यानी कि क्विज टाइम का, जहां रोज हम आपसे पूछते हैं जीके, साइंस और करंट अफेयर्स से जुड़े दो प्रश्न। तो आज के लिए आपका पहला प्रश्न है,
2: दोस्तों 2026 में कॉमनवेल्थ गेम्स में 190 किलो कुल वजन उठाकर भारत का पहला स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है।
1: और आपका दूसरा प्रश्न है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नए ऑफिस कॉम्प्लेक्स आयकर सिंधु का उद्घाटन किस शहर में किया है। तो ये थे दोस्तों आपके लिए दोनों प्रश्न, इनके जवाब हम कार्यक्रम के अंत में जानेंगे। आइए दोस्तों, अब पद्मश्री कैलाश खेर की आवाज में सुनते हैं भारतीय सेना को समर्पित ये गीत, भारतीय सेना।
3: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
4: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना, जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना, हर संकट का समाधान है भारतीय सेना, भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारत।

0: पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर

0: प्रियंका इस बार तो काफी टाइम हो गया ना मिले।
1: हाँ
0: और वैसे बताओ इस बार की गर्मियों की छुट्टियों में क्या किया तुमने, कहीं घूमने फिरने गई या पूरा टाइम घर पे बिताया?
1: मैंने इस बार तो थोड़ा घूमना भी हुआ था, रणथंभौर गई थी मैं।
0: अरे वाह, वहाँ तो बड़ा मजा आया होगा। सबसे पहले ये बताओ बाघ दिखाया नहीं?
1: बस सब यही सवाल पूछते हैं, बाघ दिखाई नहीं। सच बताऊं पूरी सफारी में हम सबकी नजर सिर्फ एक ही चीज ढूंढ रही थी, लेकिन बाघ महाशय उन्होंने दर्शन ही नहीं दिए।
0: अरे मतलब इतना दूर गए बाघ ही नहीं मिला?
1: शुरू में तो थोड़ा अफसोस हुआ, हम सब हर मोड़ पर कैमरा लेकर तैयार बैठे थे। जैसे ही झाड़ी में हल्की सी आवाज होती पूरी जीप एक साथ उधर देखने लगती।
0: और फिर कुछ निकला होगा ना वहाँ?
1: एक बार तो ड्राइवर ने धीरे से कहा था सावधान रहिए सामने मूवमेंट है। हम सब ने सांस रोक ली थी और सामने आराम से एक मोर सड़क पार कर गया।
0: बेचारा मोर, उसकी प्राइवेसी खराब कर दी, उसे क्या पता था कि पूरी जीप किसी और का इंतजार कर रही थी।
1: लेकिन सच बताऊं बाघ नहीं दिखा, फिर भी सफारी बहुत अच्छी लगी। सुबह सुबह की ठंडी हवा, जंगल की खामोशी, दूर दूर तक फैले पेड़ और बीच में मोरों की आवाज, शहर के शोर से बिल्कुल अलग दुनिया लग रही थी।
0: यही तो जंगल का असली मजा है, वहाँ सिर्फ देखने के लिए नहीं महसूस करने के लिए भी बहुत लोग जाते हैं।
1: हाँ पता है, गाइड ने एक मजेदार बात भी कही थी, वो बोले कि अगर बाघ तुरंत दिख जाए तो सफारी छोटी लगती है, लेकिन अगर देर तक तलाश करनी पड़े तो जंगल को देखने का समय ज्यादा मिलता है और मजा भी ज्यादा आता है।
0: वाह ये तो बहुत ही अच्छी बात कही उन्होंने। मतलब बाघ नहीं दिखा तो क्या हुआ, फिर भी जंगल ने तुम्हें खाली हाथ नहीं भेजा, काफी सारा एक्सपीरियंस करा तुमने।
1: हाँ वो तो है, और एक बात और कही थी उन्होंने कि याद रखिए हम बाघ के घर में नहीं है, वो हमें दिखे या ना दिखे ये उनका फैसला है।
0: लगता है उसको भी पर्सनल स्पेस चाहिए था, इसीलिए मूड नहीं था मिलने का। पर वहाँ कोई चिड़ियाघर तो नहीं है, जंगल के अपने नियम होते हैं, वहाँ इंसान नहीं प्रकृति तय करती है क्योंकि वह कब दिखेगा कब नहीं, और शायद इसी वजह से बाघ जैसे वन्य जीवों को सुरक्षित रखना इतना जरूरी हो गया।
1: हाँ।
0: क्योंकि अगर जंगल सुरक्षित रहेंगे तभी उनकी ये दुनिया भी सुरक्षित रहेगी।
1: बिल्कुल, और इसी सोच के साथ हर साल 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। और एक बात आपको भी पता होगी दोस्तों कि दुनिया में जंगली बाघों की सबसे ज्यादा संख्या भारत में पाई जाती है, और यही वजह है कि बाघ हमारे भारत देश का राष्ट्रीय पशु भी है।
0: लेकिन प्रियंका एक समय ऐसा भी था जब लगातार शिकार हो रहे थे, जंगल कम होने की वजह से बाघों की संख्या भी तेजी से घटने लगी,
1: और इसीलिए भारत सरकार ने 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य बाघों और उनके नेचुरल आवासों की रक्षा करना था।
0: बिल्कुल, आज देश में कई टाइगर रिजर्व बने हुए हैं जहाँ बाघों के साथ साथ पूरे जंगल का तंत्र सुरक्षित रखने की कोशिश की जाती है।
1: और जब जंगल सुरक्षित रहेंगे तभी तो आने वाली पीढ़ियां भी बाघों को सिर्फ किताबों या मोबाइल की स्क्रीन पर नहीं बल्कि उनके अपने प्राकृतिक घर में देख पाएंगी।
0: दोस्तों अगर आप कभी भी सफारी पर जाएं तो सिर्फ बाघ देखने की जल्दी मत करिएगा, पूरे जंगल को महसूस कीजिए, क्या पता बाघ मिल जाए, और अगर ना भी मिले तो कम से कम मोर की प्राइवेसी तो नहीं खराब होगी।
1: और हाँ अगर अगली बार कोई बोले कि बाघ नहीं दिखा तो

0: मुस्कुरा कर कही कि हम उसके घर गए थे, वो अपने काम में व्यस्त था।
1: अब तो मेरा भी मन करने लगा है, अगली बार मैं भी सफारी जरूर जाऊंगी।
0: कर लेना मोबाइल, लेकिन कैमरे की बैटरी पूरी चार्ज करके लेके जाना।
1: मैं तो पता चला कि पूरे जंगल की फोटो खींच ली तुमने, और बाघ को देखते ही जैसे ही फोटो खींचने के लिए फोन बाहर निकाला तो सामने बैटरी लो देखकर कहीं लग ना जाए तुमको जोर का झटका।

जब अज्ञान का अंधकार चारों ओर फैला हो तब ज्ञान का एक दीपक पूरे जीवन को रोशन कर देता है। वो दीपक कोई और नहीं, हमारा गुरु होता है। गुरु केवल अक्षरों का ज्ञान नहीं देता बल्कि जीवन जीने की कला सिखाता है। सच ही कहा गया है, गुरु बिना ज्ञान नहीं और ज्ञान बिना सम्मान नहीं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारतीय संस्कृति के एक ऐसे पावन पर्व की जो गुरु और शिष्य के अटूट रिश्ते को समर्पित है।

0: गुरु पूर्णिमा।
1: ऐसा ही दिन जब हम हमारे जीवन में ज्ञान का प्रकाश फैलाने वाले सभी गुरुओं के प्रति श्रद्धा और कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। बचपन से हम एक श्लोक सुनते आ रहे हैं, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरु वे नमः। इस श्लोक का यही अर्थ है कि गुरुओं की सृष्टि का पालनहार और सृजनकार का सम्मान दिया गया है। लेकिन सबसे पहले हमारे दोस्तों को ये बताया जाए प्रियंका कि गुरु पूर्णिमा मनाई क्यों जाती है।
0: हाँ मुमल, गुरु पूर्णिमा हर साल आषाढ़ मास की पूर्णिमा को मनाई जाती है। इस दिन महान ऋषि महर्षि वेदव्यास का जन्म हुआ था। महर्षि वेदव्यास ने चारों वेदों का विभाजन किया, महाभारत की रचना की और 18 पुराणों का संकलन किया
1: और यही वजह है उन्हें आदि गुरु भी कहा जाता है और गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। यानी ये पर्व केवल एक धार्मिक परंपरा ही नहीं बल्कि भारतीय ज्ञान परंपरा का भी उत्सव है।
0: हाँ दोस्तों, आप जानते होंगे कि हमारी भारतीय संस्कृति में गुरु को ईश्वर से भी पहले प्रणाम करने की परंपरा रही है। वो केवल शिक्षा नहीं देते बल्कि चरित्र निर्माण, नैतिकता, अनुशासन और जीवन के मूल्यों का भी ज्ञान कराते हैं।
1: प्रियंका, आज के समय में भी अक्सर लोग कहते हैं कि सारी जानकारियां इंटरनेट पे तो मिली जाती है, ऐसे में गुरुओं का क्या महत्व है।
0: देखो मुमल, जानकारी और ज्ञान दोनों अलग अलग बातें हैं। इंटरनेट हमें जानकारी दे सकता है लेकिन उस जानकारी का सही यूज कैसे करना है, सही और गलत में अंतर कैसे समझना है, जीवन में सही निर्णय कैसे लेना है, ये चीज सिर्फ गुरु ही सिखाते हैं।
1: सच कहा तुमने, और यही कारण है कि भारत में गुरु शिक्षा परंपरा हजारों वर्ष से चली आ रही है। प्राचीन समय में विद्यार्थी गुरुकुल में रहकर शिक्षा प्राप्त भी करते थे। वहाँ शिक्षा का उद्देश्य केवल पढ़ना लिखना नहीं होता था बल्कि एक आदर्श नागरिक और श्रेष्ठ इंसान बनना था। हमारे इतिहास में कई ऐसे उदाहरण हैं जहाँ गुरु और शिष्य का संबंध प्रेरणा का स्रोत भी बना है।
0: हाँ, गुरु संदीपनी, गुरु वशिष्ठ, चाणक्य और स्वामी रामकृष्ण परमहंस, ये इनके जैसे महान गुरुओं ने अपने शिष्यों के जीवन में नई दिशा दी और समाज को भी नई सोच प्रदान की है।
1: तभी तो हमारे जीवन में भी जो व्यक्ति हमें सही मार्ग दिखाए, हमें नई सीख दे, बेहतर इंसान बनाने की कोशिश करे या प्रेरणा दे, वह किसी न किसी रूप में हमारे गुरु होते हैं। सबसे पहले गुरु हमारे माता पिता होते हैं, बाद में शिक्षक, बड़े बुजुर्ग, प्रशिक्षण, अध्यात्मिक गुरु और जीवन में अनुभव भी हमें बहुत कुछ सिखाते हैं।
0: बिल्कुल दोस्तों, सफलता हमें आगे बढ़ना सिखाती है और असफलता हमें धैर्य, संघर्ष और आत्मविश्वास का महत्व समझाती है। इसीलिए जीवन का हर अनुभव हमें कुछ ना कुछ सिखाता है।
1: दोस्तों सही बात है, और आज के समय में भी शायद हम अपने गुरु के प्रति आभार व्यक्त करना चाहते हैं और ऐसा लगता है कि आज पहले से भी ज्यादा जरूरी है अपने गुरुओं के प्रति आभार व्यक्त
0: करना। ये तो है ही मुमल, क्योंकि एक अच्छा शिक्षक केवल बुक्स नहीं पढ़ाता बल्कि आत्मविश्वास जगाता है, सपनों को उड़ान देता है और हर विद्यार्थी को उसकी क्षमता पहचानने में मदद कराता है।
1: बिल्कुल, हमारे दोस्तों के लिए यही संदेश है कि वे अपने गुरुओं का सम्मान केवल गुरु पूर्णिमा के दिन नहीं करें लेकिन पूरे वर्ष करें, समय का पालन करें, ईमानदारी से पढ़ाई करें, अनुशासन बना के रखें और अपने गुरुओं की दी हुई सीख को अपने जीवन में अपनाएं।
0: इसी बात से मुझे संत कबीर का एक प्रसिद्ध दोहा याद आ रहा है मुमल, गुरु गोविंद दऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। यानी कि गुरु और भगवान दोनों सामने खड़े हों तो सबसे पहले गुरु को प्रणाम करना चाहिए क्योंकि गुरु ही भगवान तक पहुंचने का मार्ग दिखाते हैं।
1: वास्तव में गुरु हमारे जीवन का रास्ता दिखाते हैं कैसे चलना है और उनके आशीर्वाद के ज्ञान, संस्कार और आत्मविश्वास सफलता का मार्ग दिखाया जाता है। प्रियंका, गुरु पूर्णिमा पे हम सभी को एक संकल्प लेना चाहिए, जीवन में हर गुरु, चाहे माता पिता हो, शिक्षक हो या फिर कोई मार्गदर्शक, सभी के प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए
0: और उनके बताए रास्ते पर चलकर अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहिए। याद रखिए दोस्तों, गुरु वो दीप है जो खुद जलकर दूसरों के जीवन में उजाला करते हैं।
1: ज्ञान बांटने वाले हर गुरु को हमारा शत शत नमन है। गुरु का सम्मान करें, ज्ञान का प्रकाश अपने जीवन और समाज में फैलाएं और कागज के पंख लेके सपनों को उड़ान दें।

0: रेगिस्तान की रेत पर जब बादलों की पहली बूंद गिरती है तो सिर्फ धरती को ही नहीं उम्मीदों को भी सींच जाती है। राजस्थान की इस पावन धरती ने सदियों पहले ही समझ लिया कि पानी की हर बूंद अनमोल है, इसीलिए यहाँ के लोगों ने एक ऐसी पारंपरिक जल संरक्षण प्रणाली विकसित की जो आज भी मिसाल है।
1: दोस्तों, राजस्थान की एक ऐसी पारंपरिक जल संरक्षण तकनीक जिसने मातृभूमि में भी हरियाली का सपना साकार किया, इस अनोखी तकनीक का नाम है खड़ीन।
0: प्रियंका, राजस्थान में पानी की कमी हमेशा से ही एक बड़ी चुनौती रही।
1: हाँ।
0: ऐसे में हमारे पूर्वजों ने जिस दूरदर्शिता से जल संरक्षण के उपाय को विकसित किए वह वास्तव में अद्भुत है। सबसे पहले हमारे श्रोताओं को ये बताएं कि आखिर ये खड़ीन है क्या।
1: मुमल, जैसा कि हम सभी जानते हैं, खड़ीन वर्षा जल संरक्षण और वर्षा से रिलेटेड खेती की एक प्राचीन और वैज्ञानिक पद्धति है जो पश्चिमी राजस्थान के शुष्क क्षेत्रों में शुरू हुई थी। इसमें खेत के निचले हिस्से में मिट्टी और पत्थरों की मजबूत मेड़ बनाई जाती है। वर्षा का बहता हुआ पानी इस मेड़ के पीछे इकट्ठा हो जाता है और कुछ समय बाद ये पानी धीरे धीरे मिट्टी में समा जाता है और भूमि में पर्याप्त नमी छोड़ जाता है और यही नमी बाद में फसलों के लिए प्राकृतिक सिंचाई का काम करती है।
0: यानी कि बिना बार बार सिंचाई किए भी किसान अच्छी फसल ले सकते हैं।
1: यही तो सबसे बड़ी क्वालिटी है। मिट्टी में जब बारिश का पानी समा जाता है तो इस नमी से गेहूं, चना, सरसों, जीरा इन जैसी रबी की फसलें उगती हैं, तो पानी की बचत भी और खेती की लागत भी कम।
0: सचमुच प्रियंका, प्रकृति के साथ कितना सुंदर तालमेल है। इसके लाभ केवल खेती तक सीमित नहीं है। खड़ीन में भूजल का स्तर भी बेहतर होता है क्योंकि रुका हुआ पानी धीरे धीरे जमीन

0: के अंदर चले जाता है और इससे आसपास के कुओं और ट्यूबवेलों में भी जल उत्पादन बढ़ जाती है। इसके अलावा मिट्टी का कटाव भी कम होता है, भूमि की फर्टिलिटी भी बनी रहती है और जल वर्षा का अधिकतम उपयोग कर पाते हैं।
1: और मुमल, आज जब जलवायु परिवर्तन और जल संकट जैसी समस्याएं इतनी बढ़ रही हैं, तब तो ये तकनीक और भी इम्पोर्टेंट हो जाती है।
0: बिल्कुल सही कहा, आज देश के कई हिस्सों में वर्षा का स्वरूप बदल रहा है। कभी तो बहुत कम बारिश होती है या अचानक अधिक वर्षा होने लग जाती है। ऐसे समय में खड़िन जैसी तकनीकी वर्षा के पानी को सहजने का प्रभावी माध्यम बन सकता है और यही कारण है कि आज जल विशेषज्ञ भी पारंपरिक जल संरक्षण प्रणाली को महत्व देने लगे हैं।
1: और दोस्तों, खड़ीन हमेशा ऐसी जगह बनाई जाती है जहां भूमि में हल्की ढाल हो,
0: यानी थोड़ी सी योजना और सामूहिक प्रयास से ये तकनीकी वर्षों तक किसानों के लिए लाभदायक बन सकती है।
1: और यह नहीं, ये तकनीक हमें ये भी सिखाती है कि जल संरक्षण केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं बल्कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व है। यदि हम वर्षा कि हर बूंद को संजोने का संकल्प लें तो भविष्य की पीढ़ियों के लिए जल की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है।
0: दोस्तों, हमारे पूर्वजों ने भी प्रकृति को समान करते हुए ज्ञान हमें विरासत में दिया है और आधुनिक तकनीक के साथ यदि इन पारंपरिक प्रणालियों को अपनाया जाए तो जल संकट से काफी हद तक राहत मिल सकती है। जल ही जीवन है और उसका संरक्षण हमारा कर्तव्य है। तो आइए हम सभी अपने घर, खेत, समाज और जल संरक्षण की आदत को विकसित करें और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें।
1: आप भी दोस्तों जल संरक्षण के इस संदेश को अपने परिवार और समाज तक पहुंचाएं। जल की हर बूंद बचाइए, भविष्य को सुरक्षित बनाइए, क्योंकि बीकानेर की बारिश का तो भरोसा नहीं है ना। चार बूंद गिरते हैं उसके बाद हम खुश हो जाते हैं और 5 मिनट में ही बंद। मौसम भी अपने मूड के हिसाब से चल रहा है, कब बदल जाए क्या भरोसा।

0: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
1: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
0: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
1: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
0: बस आइए करणी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
1: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
0: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
1: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
0: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
1: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज जन जन तक।
2: दोस्तों, राजस्थान अपनी समृद्ध संस्कृति, ऐतिहासिक धरोहरों और रंग बिरंगी परंपराओं के लिए तो विश्व भर में प्रसिद्ध है ही, लेकिन यहाँ की प्राकृतिक संपदा भी किसी खजाने से कम नहीं है। ऐसी एक अनमोल धरोहर है सांबर झील और यहाँ आने वाले खूबसूरत प्रवासी पक्षी फ्लेमिंगो।
3: प्रकृति हमें हर मौसम में कुछ नया देखने को मिलता है,
2: हाँ।
3: सीखने का अवसर भी देती है। राजस्थान की सांबर झील भी एक ऐसी अद्भुत स्थल है जहाँ हर वर्ष सर्दियों के मौसम में हजारों प्रवासी पक्षी पहुँचते हैं। इसमें सबसे अधिक आकर्षण का केंद्र होते हैं फ्लेमिंगो, जिन्हें देखने के लिए देश विदेश के पर्यटक और पक्षी प्रेमी आते हैं।
2: दोस्तों, सांबर झील भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील है। ये जयपुर, नागौर और अजमेर जिलों में फैली हुई है। सदियों से हम ये झील नमक उत्पादन का प्रमुख केंद्र रही है, लेकिन इसके साथ ही जैव विविधता की दृष्टि से भी बहुत इम्पोर्टेंट है।
3: हाँ, और यहाँ का विशाल जल क्षेत्र, उथला पानी और प्राकृतिक वातावरण अनेक प्रकार के प्राइवेसी पक्षियों के लिए आदर्श आवासन प्रदान करता है।
2: जब भी लेकिन सांबर झील का नाम लिया जाता है तो फ्लेमिंगो का नाम जरूर आता है। आखिर इन पक्षियों में ऐसी क्या विशेषता है?
3: प्रियंका, फ्लेमिंगो अपनी लंबी टांगों, सुंदर लंबी गर्दन और गुलाबी रंग के लिए वजह से बहुत आकर्षण लेता है लोगों का। और ये पक्षी सर्दियों के मौसम में दूर दराज के देश और क्षेत्रों से हजार किलोमीटर की यात्रा तय करके भारत पहुंचते हैं।
2: ये जानकर बहुत गर्व होता है कि राजस्थान की झील केवल नमक उत्पादन के लिए नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पक्षी संरक्षण और प्रकृति पर्यटन के लिए भी अपनी अलग पहचान रखती है।
3: बिल्कुल प्रियंका, सांबर झील केवल फ्लेमिंगो ही नहीं बल्कि अन्य प्राइवेसी जो पक्षी है उनके लिए भी बहुत जरूरी है। यही कारण है कि पक्षी वैज्ञानिक और वन्य जीव विशेषज्ञ और प्राकृतिक प्रेमी हर वर्ष यहाँ आते हैं। और झील हमें ये संदेश भी देती है कि यदि हम अपने जल स्रोत और पर्यावरण का रक्षण करें, संरक्षण करें, तभी वन्य जीव और पक्षियों का प्राकृतिक आवास सुरक्षित रह पाएगा।
2: तो दोस्तों, प्रकृति और पर्यावरण का संरक्षण आज के समय की सबसे बड़ी आवश्यकता बन गया है। यदि हम जलाशयों को स्वच्छ रखेंगे और जैव विविधता का सम्मान करेंगे तो आने वाली पीढ़ियां भी सांबर झील में फ्लेमिंगो के इन मनमोहक दृश्यों का आनंद ले सकेगी।
3: बिल्कुल सही कहा तुमने प्रियंका। आइए हम सभी ये संकल्प लें कि प्राकृतिक जल स्रोत और वन्य जीवों की रक्षा करेंगे ताकि पर्यावरण संरक्षण के प्रति स्वयं को भी जागरूक रखेंगे, दूसरों को भी प्रेरित करेंगे।
2: अब दोस्तों, इतनी देर कभी जंगल, कभी झील, कभी फ्लेमिंगो के साथ हमने बैठे बैठे आउटिंग कर ली,
3: तो अब अगर आपका भी मन करे घूमने का तो हो जाए तैयार, बिना टिकट बिना सामान, बस थोड़ी सी मटरगश्ती के साथ।

0: दोस्तों याद है ना, कार्यक्रम की शुरुआत में हमने आपसे दो प्रश्न पूछे थे, तो अब वक्त है उन दोनों प्रश्नों के जवाब जानने का। पहला प्रश्न हमने आपसे पूछा था,
1: 2026 में कॉमनवेल्थ गेम्स में 190 किलो कुल वजन उठाकर भारत का पहला स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? उसका उत्तर था मीराबाई चानू।
0: दोस्तों हमने दूसरा प्रश्न आपसे पूछा था, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नए ऑफिस कॉम्प्लेक्स आयकर सिंधु का उद्घाटन किस शहर में किया है? बिल्कुल सही सोच रहे हैं दोस्तों आप, इसका सही जवाब है मुंबई। और अब वक्त है दोस्तों रोजगार सूचना का।
1: दोस्तों RBI RRB रेलवे सेंशन कंट्रोल भर्ती निकली है, 2026 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है।
0: दोस्तों सभी RRB को मिलाकर कुल पदों की संख्या 199 है। इस भर्ती के लिए आवेदन 15 जुलाई से शुरू हो चुके हैं और अधिक जानकारी जैसे कि आयु सीमा, शैक्षणिक

0: योग्यता, चयन प्रक्रिया, आवेदन शुल्क, आवेदन प्रक्रिया सहित अधिक जानकारी के लिए आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट www.rrbapply.gov.in पर विजिट कर सकते हैं।
1: और ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसमें आवेदन करने के लिए लास्ट डेट है 14 अगस्त, और समय पर अपनी एलिजिबिलिटी चेक करें और इसके आवेदन दें। दोस्तों अब वक्त हो चुका है आप सभी से विदा लेने का, आप अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए।
0: फिर मुलाकात होगी आपसे इसी कार्यक्रम पर, तब तक के लिए मैं प्रियंका सोनी,
1: मैं मुमल राजपुरोहित,
0: करते हैं आप सभी को नमस्कार।

अभी युवा साथी सुन रहे थे अपना कार्यक्रम युववाणी। आज इस कार्यक्रम को पेश कर रही थी प्रियंका सोनी और मोमल राज पुरोहित। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोली मारू चैनल से बोल रहे हैं। शाम के 5:55 हुए। आइए अब सुनते हैं हमारे आज के शेष रहे कार्यक्रमों की रूपरेखा।

अभी कुछ ही देर में यानी 6:05 पर आप सुनेंगे अपना पसंदीदा कार्यक्रम फिल्म संगीत। वहीं 6:40 पर हम आपको सुनाएंगे जिले की चिट्ठी, ग्रामीण जगत। जी हाँ, ये कार्यक्रम लेकर हम हाजिर होंगे, समय रहेगा शाम 7:00।

7:45 मिनट पर सजेगी सुगम संगीत की महफिल, वहीं फिल्म संगीत सुनिएगा पुणे इसी सभा में 8 बजे और 9:15 पर।

चर्चा का विषय है। जी हाँ, ये कार्यक्रम लेकर हम हाजिर हो गए रात्रि 9:30 पर। ये कार्यक्रम हमारे जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से प्रसारित किया जाएगा।

रूपरेखा। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोली मारू चैनल से बोल रहे हैं। शाम के 6 बजने को है। कुछ ही पल में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार हमारी दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इस विधेयक से लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन किया गया है। विधेयक में 10 वर्ष तक के कारावास, 10

0: लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इस विधेयक से लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन किया गया है। विधेयक में 10 वर्ष तक के कारावास, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश को दैनिक सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक न्यायालय स्थापित करने का आदेश दिया गया है। अपराधों की जांच पुलिस थाने में सूचना दर्ज होने की तारीख से 2 महीने के भीतर पूरी की जानी चाहिए। मुकदमे की सुनवाई आरोप पत्र दाखिल होने की तारीख से 3 महीने के भीतर पूरी होनी चाहिए। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये संशोधन कानून को और अधिक सख्त बनाने तथा त्वरित न्याय दिलाने के लिए किया गया है।
1: सरकार की प्रतिबद्धता का आप इसी बात से अनुमान लगा सकते हैं कि इसी विधेयक के लाने के साथ ही साथ हमारे लॉ मिनिस्टर की ओर से भी एक प्रस्ताव जारी कर दिया गया। स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्स है, इनको स्थापित करने का भी क्रम प्रारंभ किया जाए। उसमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड में पहले ही इन्होंने गठित कर दिया है और आने वाले दिनों में बाकी स्थानों पर।
0: नया विधेयक छात्रों और युवाओं के कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। डॉ. सिंह ने कहा कि विभिन्न दलों द्वारा शासित राज्यों में पेपर लीक होने की घटनाएं हुई हैं। विपक्ष के आचरण पर डॉ. सिंह ने कहा कि जब एक महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा हो रही है तो विपक्ष सुझाव देने के बजाय राजनीति कर रहा है। उन्होंने विपक्ष के नेता राहुल गांधी के असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करने की भी आलोचना करते हुए इसे अनुचित और दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उधर राज्यसभा ने राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा के लिए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करेगा। वंदे मातरम के अपमान के लिए अब 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि विधेयक में संशोधन केवल एक विधायी परिवर्तन नहीं है। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम का विरोध तुष्टिकरण की राजनीति को दर्शाता है जो राष्ट्र के गौरव को ठेस पहुंचाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अगस्त को नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ करेंगे। ये नशाखोरी के खिलाफ 100 सप्ताह का राष्ट्रव्यापी जनभागीदारी आंदोलन है। इस पहल का लक्ष्य जागरूकता, सामुदायिक सहभागिता और निरंतर जनभागीदारी को बढ़ावा देकर नशा मुक्त भारत के निर्माण के लिए युवाओं को सामूहिक राष्ट्रीय मिशन में एकजुट करना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में भारतीय पारंपरिक कला रूपों के कलाकारों से मुलाकात की और उनके कार्यों का अवलोकन किया। बनारस भित्तिचित्र, थंका, नायका, केरल भित्तिचित्र, बसोहली, सुरपुर और मैसूर जैसी कला शैलियों का प्रतिनिधित्व करने वाले 12 कलाकार कलाकार निवास कार्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्रपति भवन में रह रहे हैं। कलाकार निवास कार्यक्रम भारत की कलात्मक परंपराओं की भावना का उत्सव है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के एक निजी स्कूल में 5 वर्षीय बच्चे के साथ शिक्षक द्वारा कथित यातना और अमानवीय व्यवहार के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव और वाराणसी पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी किया है। मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लेते हुए NHRC ने 2 सप्ताह के भीतर इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। बंबई शेयर बाजार का सूचकांक आज 889 अंक बढ़कर 77,655 पर पहुंच गया। निफ्टी 265 अंक की तेजी के साथ 24,250 पर बंद हुआ। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में तजिंदर पाल सिंह तूर और समरदीप सिंह गिल ने शॉटपुट फाइनल में जगह बना ली है। अनिमेश कुजूर 200 मीटर दौड़ के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। आज रात मनप्रीत कौर महिला शॉटपुट फाइनल में खेलेंगी। श्री शंकर मुरली और लोकेश सत्यनाथन ऊंची कूद के फाइनल में और पारुल चौधरी 3000 मीटर स्टीपल चेस के फाइनल में चुनौती पेश करेंगी। पदक तालिका में भारत 2 स्वर्ण 7 रजत और 3 कांस्य पदकों के साथ 9वें स्थान पर है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, दिल्ली, कोंकण, गोवा, केरल, माहे में कल तक तेज बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी बीकानेर का ये बोलो मारू चैनल है।

शाम के 6:05 हुए। आइए सुनते हैं कार्यक्रम युगल गीत। फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में आइए सबसे पहले सुनते हैं लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज शोर फिल्म के लिए। गीतकार हैं संतोष आनंद और धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी। फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: फिल्म संगीत का युगल गीत कार्यक्रम इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से। आइए सुनते हैं उदित नारायण और आशा भोंसले की आवाज। फिल्म का नाम है प्यार तो होना ही था। गीतकार हैं समीर और संगीतकार हैं जतिन ललित।
3: जब वो कोई सपना देखता है और वो पूरा नहीं होता, इसलिए मैंने सोच लिया है कि आज के बाद कोई सपना ही नहीं देखूंगी।
4: बस हार गई। अपनी आंखें बंद करो संजना। बंद आंखों से इंसान सिर्फ सपना ही नहीं, कभी कभी उस हकीकत को भी देख लेता है जिसे खुली आंखें कभी नहीं देख पाती। आंखें बंद करो संजना।

अलका याग्निक और साथियों की आवाज लेकर हम हाजिर हैं। फिल्म का नाम है चोरी चोरी चुपके चुपके। गीतकार हैं समीर और संगीतकार हैं अमनू मलिक।

कार्यक्रम के आखिर में आइए सुनते हैं गुलशन रॉय का संगीत, शब्द हैं इंदिवर के, फिल्म का नाम है मोहरा, आवाजें हैं पंकज उदास और साधना सरगम की।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये युगल गीत कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। शाम के 6:30 होने को है। अब प्रस्तुत है हिंदी और राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार, साथ ही जिले की चिट्ठी हमारे जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से। कुछ ही पलों में कृपया प्रतीक्षा करें।

मुख्य समाचार। लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 लोकसभा में पारित हुआ। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 40 लाख पात्र विद्यार्थियों के बैंक खातों में यूनिफॉर्म के लिए 250 करोड़ रुपए की राशि डीबीटी की गई। देश भर में नशा मुक्ति के लिए 2 अगस्त से 100 सप्ताह का विशेष अभियान चलाया जाएगा और गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर आस्था का माहौल, गुरुजनों, संतों और महंतों का श्रद्धा से अभिनंदन।

0: समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 आज लोकसभा में पारित कर दिया गया। इस नए संशोधन विधेयक में पेपर लीक के लिए 10 साल तक की जेल और भारी जुर्माने का कड़ा प्रावधान किया गया है। विधेयक पर सदन में कल से चर्चा की शुरुआत की गई थी। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि विधेयक में संशोधन कानून को और अधिक सख्त बनाने और त्वरित न्याय दिलाने के लिए प्रावधान किया गया है। चर्चा के दौरान हुए हंगामे के कारण सदन को दो बार स्थगित भी किया गया। इसके बाद विधेयक पारित कर दिया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इसके पारित होने की घोषणा की।
1: मंत्री जी अब प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए।
2: मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक को पारित किया जाए।
1: प्रश्न ये कि विधेयक को पारित किया जाए, जो सदस्य इसके पक्ष में आ गए, जो सदस्य विरोध में आ गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित हुआ।
0: अब ये विधेयक ऊपरी सदन यानी राज्यसभा में पेश किया जाएगा। एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित विधेयकों की जांच करने वाली संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी का कार्यकाल संसद के इस साल के शीतकालीन सत्र के अंतिम सप्ताह तक बढ़ा दिया गया है। लोकसभा में आज इस बारे में प्रस्ताव पेश किया गया। सदन ने इस प्रस्ताव को ध्वनिमत से पारित कर दिया। गौरतलब है कि एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयकों का उद्देश्य लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने की व्यवस्था लागू करना है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज भरतपुर जिले के खेडली गुर्जर गांव से करीब 940 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। बालिका सैनिक विद्यालय में हुए इस कार्यक्रम में श्री शर्मा ने सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 40 लाख पात्र विद्यार्थियों के बैंक खातों में यूनिफॉर्म के लिए 250 करोड़ रुपए की राशि डीबीटी की। उन्होंने दिव्यांग बच्चों को टैबलेट दिए और बेहतर परीक्षा परिणाम देने वाले शिक्षकों को सम्मानित किया। इस राज्यस्तरीय समारोह से मुख्यमंत्री ने मिशन पढ़ो अभियान के तहत रीडिंग प्रमोशन कैंपेन की शुरुआत की। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि बच्चों को दिए गए संस्कार से ही उनका व्यक्तित्व बनता है। श्री शर्मा ने वीसी के जरिए प्रदेश के स्कूली बच्चों से संवाद भी किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का ये प्रयास है कि स्कूलों में बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो और कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे।
3: बच्चों की शिक्षा उन्हें मिलने वाले सही संस्कार काफी हद तक तय करते हैं कि वे भविष्य में क्या बनेंगे और उनका

0: व्यक्तित्व कैसा होगा। इस दृष्टि के साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू की है। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हम बच्चों को गुणवत्तापूर्ण और सुलभ शिक्षा दे रहे हैं, उपलब्ध कराने के लिए अनेक स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। इस बार के बजट में हमने संकल्प लिया था कि हम प्रदेश के कक्षा 1 से 8 तक के 40 लाख से अधिक जरूरतमंद विद्यार्थियों को निःशुल्क यूनिफॉर्म उपलब्ध कराएंगे। मुझे प्रसन्नता है कि आज गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर और वैर की धरती से भरतपुर जिले से उस संकल्प को धरातल पर उतारा जा रहा है।
1: राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने नशा मुक्त भारत अभियान के तहत राज्य में प्रभावी प्रयास करने पर जोर दिया है। उन्होंने प्रदेश में व्यापक अभियान चलाने और विश्वविद्यालयों की ओर से गोद लिए गांवों को नशा मुक्त करने के लिए ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। राज्यपाल ने लोकभवन से आज वीसी के जरिए विश्वविद्यालयों के कुलगुरुओं से बातचीत की। श्री बागड़े ने कहा कि विश्वविद्यालयों के आसपास मादक पदार्थ बेचने वालों की पहचान कर ऐसे लोगों को पकड़ा जाए। राज्यपाल ने बताया कि नशाखोरी के खिलाफ 2 अगस्त से 100 सप्ताह का एक देशव्यापी जन भागीदारी अभियान शुरू होने जा रहा है। युवा कार्य और खेल मंत्रालय की ओर से नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान चलाया जाएगा। इसमें हर रविवार को स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए खेल प्रतियोगिताएं, पैदल मार्च, ध्यान सत्र, नुक्कड़ नाटक और अन्य कार्यक्रम होंगे। सतत विकास लक्ष्यों के तहत राज्य ने पोषण और पीने के पानी सहित कई क्षेत्रों में प्रगति की है। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने आज एसडीजी के राज्य स्तरीय क्रियान्वयन और मॉनिटरिंग समिति की बैठक ली। उन्होंने विभिन्न विभागों को नीति आयोग और राज्य संकेतकों के अनुसार काम करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने वास्तविक और प्रमाणिक नवीनतम आंकड़ों को पोर्टल पर अपलोड करने को कहा। उन्होंने कहा कि वर्ष 2030 तक निर्धारित 17 एसडीजी और 248 संकेतकों पर राजस्थान को लगातार काम करना है। मुख्य सचिव ने दूरस्थ और जनजातीय बहुल क्षेत्रों के विकास के लिए राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति की भी बैठक ली। इसमें चालू वित्तीय वर्ष के लिए 196 करोड़ रुपए से अधिक के बजट प्रस्तावों का अनुमोदन किया गया। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। देश की पहली वंदे भारत गुड्स ट्रेन का आज कोटा में ट्रायल किया गया। 16 कोच वाली इस सुपर फास्ट ट्रेन की रफ्तार करीब 145 किलोमीटर प्रति घंटा रही। कोटा नागदा सवाई माधोपुर रेलखंड पर इसका परीक्षण किया गया। इसमें फायर डिटेक्शन, ऑटो लॉक, रेफ्रिजरेटर पार्सल सहित कई तरह की सुविधाएं शामिल है। अपनी उच्च ट्रैक गुणवत्ता और आधुनिक सिग्नलिंग तथा सुरक्षित हाई स्पीड कॉरिडोर के कारण कोटा मंडल एक बार फिर रेल तकनीक की परीक्षण प्रयोगशाला साबित हुआ है। इस फ्रेट ईएमयू के सफल ट्रायल से माल परिवहन को आने वाले समय में तेज, सुरक्षित और विश्वसनीय बनाया जा सकेगा। गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर आज प्रदेश भर में श्रद्धा और आस्था का माहौल है। धार्मिक स्थलों पर लोगों की भीड़ उमड़ रही है। वहीं श्रद्धालुओं ने गुरुजनों, संतों, महंतों का अभिनंदन कर आशीर्वाद लिया। जयपुर में आयोजित गुरु पूर्णिमा महोत्सव में केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत शामिल हुए। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति में गुरु का स्थान सबसे ऊपर माना गया है। गुरु पूर्णिमा गुरुओं के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का पर्व होने के साथ साथ गुरु शिष्य परंपरा को आगे बढ़ाने का भी अवसर देती है। वहीं देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत ने पाली जिले के भूसी और बालराई में संतों का सम्मान किया। इस मौके पर शोभा यात्रा निकाली गई। विभिन्न मंदिरों और आश्रमों में महाप्रसादी का आयोजन किया गया। डूंगरपुर के साबला में संत मावजी महाराज की जन्म स्थली हरि मंदिर पर भी श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। झुंझुनू के चंचलनाथ टीला में गुरु पूर्णिमा महोत्सव श्रद्धा भाव से मनाया गया। इस मौके पर टीला परिसर में आकर्षक सजावट की गई। सलंबर जिले के सभी डाकघरों में सावन के

0: में गंगा जल उपलब्ध करवाया जाएगा। शिव भक्तों की सुविधा के लिए ये पहल की गई है। इसके तहत श्रद्धालु 30 रुपए में गंगा जल की बोतल खरीद सकेंगे। मांग अधिक होने पर डाकिये घर घर गंगा जल पहुंचाएंगे। इससे दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को फायदा मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के मौके पर आज इको टूरिज्म वेब पोर्टल की शुरुआत की गई है। इस मौके पर देश के सभी बाघ अभयारण्यों की जानकारी उपलब्ध है। केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की ओर से विकसित इस पोर्टल का शुभारंभ किया। इधर प्रदेश में भी अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर जागरूकता संबंधी कार्यक्रम रखे गए। राज्य के अभयारण्यों में बाघों पर पेश है हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
1: राजस्थान में रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंद्रा हिल्स, रामगढ़ विषधारी के साथ ही एक नया टाइगर रिजर्व धौलपुर करौली है। वन विभाग के अनुसार इन पांचों अभयारण्यों में बाघों की संख्या 150 है। इनमें बाघ, बाघिन और शावक शामिल हैं। इस साल सबसे ज्यादा 28 शावकों का जन्म सरिस्का अभयारण्य में हुआ। हाईटेक मॉनिटरिंग और एंटी पोचिंग अभियान से बाघों की सुरक्षा व्यवस्था बेहतर हुई है। साथ ही वन विभाग वन्य जीव कॉरिडोर मजबूत करने पर भी खास ध्यान दे रहा है। रामगढ़ विषधारी और मुकुंदरा में ट्रांस लोकेशन से भी बाघों के कुनबे में बढ़ोतरी की उम्मीद जगी है। समाचार कक्ष से सुदर्शन नाहर।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 लोकसभा में पारित हुआ। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 40 लाख पात्र विद्यार्थियों के बैंक खातों में यूनिफॉर्म के लिए 250 करोड़ रुपए की राशि डीबीटी की गई। देशभर में नशा मुक्ति के लिए 2 अगस्त से 100 सप्ताह का विशेष अभियान चलाया जाएगा। और गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर आस्था का माहौल, गुरुजनों, संतों और महंतों का श्रद्धा से अभिनंदन। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से बाड़मेर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं जसवंत सिंह डूडी। सरहदी जिले बाड़मेर में आज गुरु पूर्णिमा श्रद्धा और आस्था के साथ मनाई जा रही है। नीलसर स्थित जसनाथ धाम, चौहटन में डूंगरी पुरी जी के मठ, बाड़मेर के चंचल प्राग मठ और गंगा गिरी जी के मठ में गुरु पूर्णिमा महोत्सव आयोजित किए जा रहे हैं। इस अवसर पर जिले में विभिन्न शिक्षण संस्थानों में गुरु वंदन के कार्यक्रम आयोजित हुए। इस दौरान गुरुजन का सम्मान किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों पुनर्विकसित बाड़मेर रेलवे स्टेशन का वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण किया। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत बाड़मेर रेलवे स्टेशन को 16 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित किया गया है। रेलवे स्टेशन का ये कायाकल्प भारतीय रेल की आधुनिक, सुरक्षित, पर्यावरण अनुकूल और यात्री केंद्रित रेलवे प्रणाली के विकास के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ये क्षेत्रीय इंफ्रास्ट्रक्चर को सशक्त बनाने के अलावा भारत के पर्यटन मानचित्र पर थार नगरी की पहचान को और अधिक प्रभावी बनाएगा। आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित ये रेलवे स्टेशन मरुस्थलीय इलाके में सामाजिक और आर्थिक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। 27वें करगिल विजय दिवस के अवसर पर बाड़मेर में पुलिस लाइन स्थित शहीद स्मारक पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान शहीदों को गार्ड ऑफ ऑनर देकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर शहीदों की वीरांगनाओं और परिजनों को सम्मानित किया गया। वहीं शहीदों की याद में पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। इस अवसर पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों के अलावा प्रशासन, सेना, वायुसेना, बीएसएफ और पुलिस के अधिकारी तथा बड़ी संख्या में आम लोग मौजूद थे। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल बीते दिनों जिले के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने वीरात्रा स्थित वांकल माता के मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेश की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। श्री पटेल ने बाड़मेर में सर्किट हाउस में आयोजित जनसुनवाई में आमजन की समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को इनके तुरंत निस्तारण के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर चिन्मय गोपाल ने कल धनाऊ इलाके में ओजिया गांव का दौरा किया।

0: इस दौरान उन्होंने स्थानीय शिल्पकार खेताराम के घर पहुंचकर पारंपरिक पट्टू बुनाई कला का अवलोकन किया। इस अवसर पर जिला कलेक्टर ने कहा कि पारंपरिक पट्टू बुनाई बाड़मेर की अनोखी पहचान है। इस कला को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए प्रभावी ब्रांडिंग, बेहतर पैकेजिंग, डिजिटल मार्केटिंग और व्यापक प्रचार प्रसार पर बल दिया जाएगा। उन्होंने स्थानीय हस्तशिल्प को GI टैग और ट्रेडमार्क दिलाने की दिशा में प्रयास करने और इस प्रक्रिया में जिला प्रशासन की ओर से हर संभव सहयोग तथा मार्गदर्शन का भरोसा दिलाया। पिछले दिनों ग्राम पंचायत विशाला में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में विकसित भारत जीरामजी योजना का शुभारंभ किया गया। इस दौरान राष्ट्रीय कार्यक्रम का वर्चुअल माध्यम से सजीव प्रसारण किया गया। इस अवसर पर पौधरोपण के जरिए पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। मरुस्थली जिले बाड़मेर में पर्यावरण संरक्षण अभियान के तहत सीमा सुरक्षा बल की 28वीं बटालियन की ओर से पौधरोपण किया गया। इस अभियान के तहत सरहदी गांव सरूपे का तला, मिये का तला और केलनोर समेत BSF की विभिन्न सीमा चौकियों और सरकारी स्कूलों में भी बड़े पैमाने पर पौधरोपण करते हुए आमजन को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक किया गया। दूसरी तरफ जिले में मानसून की बारिश के चलते इन दिनों विद्यालयों में एक पेड़ माँ के नाम और हरियालो राजस्थान अभियान के तहत पौधरोपण किया जा रहा है और विद्यार्थियों को पौधे भेंट कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया जा रहा है। वहीं मानसून की बारिश के मद्देनजर इन दिनों बाजरा, ग्वार, मूंग, मोठ और तिल जैसी खरीफ की फसलों की बुआई की जा रही है और किसानों तथा पशुपालकों में खुशी का माहौल है। बाड़मेर के सरकारी जिला अस्पताल में पिछले दिनों प्रसव सखी हेल्प डेस्क का शुभारंभ किया गया। इस पहल का उद्देश्य गर्भवती महिलाओं को अस्पताल में प्रवेश से लेकर डिस्चार्ज होने तक एक ही स्थान पर मार्गदर्शन, सहायता और समन्वित सेवाएं मुहैया कराना है। इसके साथ ही बाड़मेर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर में पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार, लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन बिल 2026 लोकसभा में पास भयो। प्रदेश री सरकारी स्कूलों रा 40 लाख पात्र विद्यार्थियों रा बैंक खाता में स्कूल ड्रेस सारु 250 करोड़ रुपया री रकम भेजी जी। देश में नशा मुक्ति सारु 2 अगस्त 100 सप्ताह रो खास अभियान चलायो जावेला और गुरु पूर्णिमा रा पावन पर्व रे मौके आस्था रो माहौल गुरुजन संतों और महंतों रो श्रद्धा भाव मान करी चियो। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार, लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन बिल 2026 ने आज लोकसभा पास कर दिनो। ये बिल में पेपर लीक रा दोषियों ने 10 साल ताई री कैद और भारी जुर्माना रो प्रावधान करी चियो है। बिल माथा सदन में काल नु चर्चा करी जा रही है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह कहो कि बिल में बदलाव कानून ने और कड़ो बनावण और तुरंत न्याय दिलावण सारू करी चियो है। चर्चा रे दौरान फिर हंगामा रे कारण सदन री कार्रवाई 2 दफा टालनी पड़ी। ये पाछे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला वो बिल पास फेवन रो ऐलान करती नो।
2: मंत्री जी अब प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए।
3: मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक को पारित किया जाए।
2: प्रश्न ये कि विधेयक को पारित किया जाए, जो सदस्य इसके पक्ष में आ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय
3: हाँ
2: वालों के
1: प्रश्न
2: प्रस्ताव
1: स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित हुआ। अब ओमिल संसद रा ऊपरी सदन राज्यसभा में विचार सारू पेश करियो चावेला। एक राष्ट्र एक चुनाव जुड़ी संयुक्त संसदीय समिति JPC रो कार्यकाल संसद रा शीतकालीन सत्र रा आखिरी सप्ताह ताई बधा दियो चियो है। लोकसभा में आज इंबारा में प्रस्ताव पास करी चियो जिन्हें सदन धुनी मतों पास की नौ। ध्यान जोग है कि एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक का मकसद

0: भारत री संस्कृति माए गुरु री ठौड़ सब ऊंची मानी ची है। गुरु पूर्णिमा गुरुवार प्रति कृतज्ञता जतावन रो पर्व वेवन सागे गुरु चेलारी रीत न आगे बधावन रोई मौको देवे है। देवस्थान मंत्री जोरा राम कुमावत पाली जिलारा बूसी और बालराय माए संता रो मान कीनो। डूंगरपुर जिलारा साबला माए संत मावजी महाराज री जन्मस्थली हरिमंदर माए मोटी तादाद माए जात्रु पूग्या। झुंझुनू जिलारा चंचल नाथ टीला माए गुरु पूर्णिमा महोत्सव मनाइचियो और टीला परिसर माए सोहनी सजावट करी ची। चोरूरा स्कूल कॉलेज माए गुरु पूर्णिमा रे मौके सम्मान समारोह राखी चिया। सलूम्बर जिलारा सगड़ा डाक घरा माए सावन माए गंगा जल मुहैया करायो चावेला। जात्रु 30 रुपया माए गंगा जल री बोतल खरीद सकेला। मांग बत्ती वेवन री सूरत माए डाकिया घर घर गंगा जल पुगावेला। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस रे मौके आज इको टूरिज्म वेब पोर्टल री शुरुआत करी ची। हिमाचल देश रा सगड़ा बाघ अभयारण्य री जानकारी मुहैया कराई ची है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण री ओर विकसित करी चिया ई पोर्टल री केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव नई दिल्ली माए राखी जाए कार्यक्रम माए शुरुआत कीनी। प्रदेश माए अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस रे मौके भात भात रा कार्यक्रम राखी चिया। राज्य अभयारण्य माए बाघाना बारा माए पेश है एक रिपोर्ट।
1: राजस्थान में रणथंबोर सरिस्का मुकुंद्रा हिल्स रामगढ़ विस्तारी के साथ ही एक नया टाइगर रिजर्व धौलपुर करौली है। वन विभाग के अनुसार इन पांचों अभयारण्यों में बाघों की संख्या 150 है। इनमें बाघ बाघिन और शावक शामिल हैं। इस साल सबसे ज्यादा 28 शावकों का जन्म सरिस्का अभयारण्य में हुआ है। हाईटेक मॉनिटरिंग और एंटी पोचिंग अभियान से बाघों की सुरक्षा व्यवस्था बेहतर हुई है। साथ ही वन विभाग वन्य जीव कॉरिडोर मजबूत करने पर भी खास ध्यान दे रहा है। रामगढ़ विस्तारी और मुकुंद्रा में ट्रांस लोकेशन से भी बाघों के कुनबे में बढ़ोतरी की उम्मीद जगी है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: स्कॉटलैंड रा ग्लासगो माए राष्ट्रमंडल खेल 2026 चल रहा है। 23 जुलाई सरोवेर 2 अगस्त ताई चलन वाला खेला माए 74 देशा रा एथलीट शामिल भे रहा है। कुल 16 खेल कार्यक्रम माए दिव्यांग खिलाड़िया सारू पैरा स्पोर्ट्स ही शामिल है। और ब्यूरो समाचार डेस्क को
2: हर 4 साल माए वेबण वाला राष्ट्रमंडल खेला रा 23वां संस्करण माए भारत री नुमाइंदगी 124 सदस्या वाला दल कर रयो है। आमाए 78 पुरुष और 46 महिला एथलीट शामिल है जो न्यारा न्यारा खेला माए प्रतिभा रो दर्शाव कर रया है। झंडू कुमार पैरा पावर लिफ्टिंग माए कांसा रो तमगो जीतर भारत रो खातो खोल्यो। मीराबाई चानुई होड़ माए सोना रो पहलो तमगो जीतर पूरा देश ने माथो ऊंचोण करण रा लम्हा दीना। होड़ा हाल ही चाल रही है और भारत रा एथलीट खुद माथे भरोसे सागे मुकाबला माए बण्योड़ा है। खास बात आ है कि आवती दफा आ खेल गुजरात रा अहमदाबाद माए करिया जावण रो प्रस्ताव है और समापन समारोह माए भारत ने साल 2030 रा राष्ट्रमंडल खेला री मेजबानी रो जिम्मो सौंपियो जावेला। समाचार कक्षो सालेहा गाजी।
0: राज्य रा घनघर हल्का माए आवता 5-6 दिन ताई चौमासा री बिरखा चालती रहवन रा आसार है। मौसम विभाग 2 अगस्त ताई भरतपुर अजमेर जयपुर और उदयपुर संभाग माए बरसात वेवन रा आसार जताया है। जोधपुर और बीकानेर संभाग रा कुछ हल्का माए कालो बिरखा छाटा माए बढ़ोतरी रा आसार है। जोधपुर संभाग माए कठा कठा जोरदार बारिश री संभावना है। काल 5 जिला माए बरसात रो ऑरेंज और 33 जिला माए येलो अलर्ट जारी करी चियो है। आखिर माए खास समाचार एक फेर सुन ले रहो। लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन बिल 2026 लोकसभा माए पास फियो। प्रदेश री सरकारी स्कूला रा 40 लाख पात्र विद्यार्थियों रा बैंक खाता माए स्कूल ड्रेस सारू 250 करोड़ रुपए री रकम भेजी ची। देश माए नशा मुक्ति सारू 2 अगस्त तो 100 सप्ताह रो खास अभियान चलायो जावेला। और गुरु पूर्णिमा रा पावन पर्व रे मौके आज गुरुजना संता और महंता रो मान करी चियो। इस आगे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो फियो। नमस्कार।

आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। शाम के 7 बजे हैं। जी हाँ, समय हो चला है कार्यक्रम ग्रामीण जगत का, तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम ग्रामीण जगत। आज इस कार्यक्रम को पेश कर रहे हैं डॉक्टर नमामि शंकराचार्य और श्रीमती मुक्ता जैन।

0: ग्रामीण जगत कार्यक्रम सुनने वाला जिका भी किसान भाई बहन है आप सगने में आप रोहितारो साथी डॉक्टर नमामी शंकर आचार्य
1: और आपकी बहन मुक्ता जेंडा घणा घणा राम राम।
0: मुक्ता बहन आपने भी हमारा मोकड़ा मोकड़ा राम राम।
1: राम राम नमामी भाई आपने भी। और नमामी भाई देखो आज की तो फूटरो दिन है, आज अपने गुरु रो पर्व है, अपना गुरु जी का अपना साचो मार्ग दिखावे चोकी सीख देवे और अपने सब वही है कि आप अपने गुरु रो सम्मान करा।
0: एकदम एकदम सही बात है आप री। और आप कहे भी है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर आय गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः।
1: तो नमामी भाई गुरु पूर्णिमा रो दिन बहुत ही चोखो दिन होया करे और आज यदि नगर नहीं आपा देखो आपा सगड़ा मिल पर आर गुरु री मतलब जिका अपने सीख दे रहे हैं अपने मार्ग सुझा रहे भी प्रचाला आपा बारो सम्मान करा पूरी जिंदगी आपा सम्मान करा। और नमामी भाई देखा गुरु खाली बो को नहीं जो अपन स्कूल में पढ़ावे इरे अलावा देखा अपनी जन्मदिन वाली माँ है जिकी अपनी
0: सबसे मोटी बात बताइए। सबसे मोटी बात यही है कि पहले गुरु ही माँ हो
1: माँ हुए गुरु और दूसरी आप देखा जी अपने अपन शिक्षा लेवा अपने छोटा टाबर भी अगर कई बार अपन कोई सीख दे देनी तो भी अपने वास्ते गुरु है जिको चोखो मार्ग सुझावे वो ही अच्छो गुरु होया करे।
0: देखो गुरु रे बिना ज्ञान अधूरो बताए करे के गुरु अर्ज करूं मैं थाने शरणा में राखे माना। तो गुरु रे प्रति जो भाव है बिरो सम्मान है अपने भारतीय संस्कृति रो प्रतीक है। पुराना वैदिक काल से गुरु रो सम्मान होता आया है। गुरु ने आप वेदा ने भी गुरु माने गए है मान बिरे पूजन बिरे अर्चना करी गई है। और अपारे अठे जिका देवी देवता है भगवान कृष्ण है तो बेबी संदीपन ऋषि ने आप गुरु बनाए हैं। भगवान राम है तो बेबी क्या है कि भगवान विश्वामित्र ने ऋषि विश्वामित्र ने आप गुरु बनाए हैं। क्यों मतलब ओ है कि देवी देवता भी है तो बेबी गुरु रे बिना अधूरा है तो गुरु होना जरूरी है। और जहाँ आप बता रहे हो कि टाबरी पहली जिकी गुरु है बाबी माँ हुए बिना सीख देवे बिना समझावे बिना बड़ो करे
1: चोखा
0: संस्कार देवे। और अभी एक चीज होया करे कि घर माने जब भाई बेटी हुए बापनी जे तो माँ जिकी है गुरु बनने और बिना सीख देवे सीख देती टाइम बतावे कि किया सास ने परोटनो है किया घरवाला ने परोटनो है किया आगे जार और जीवन रे मायने क्योंकि जीवन है नया घर में जा रिया हो तो हो सके बिना मायने अच्छा ही हुए कई कमियां भी हुए तो कमियां खाने गौर करना को नहीं है अपन तो अच्छा ही खाने गौर करना है आ सीख माँ देवे। और सबसे जरूरी में चालना है अगर कोई दो बात कहे तो भी सुन लेना लेकिन सामने मुंडे जवाब नहीं देना लेकिन सागे सागे बात अभी सीख देवे कि शिक्षा जरूरी है पढ़ना जरूरी है और पढ़ाई के वास्ते स्कूल जाना जरूरी है। स्कूल जावे तो बड़े जगह शिक्षिकाएं हैं या अध्यापक है वे भी या गुरु है वे भी ने सही मार्ग पर ले रहा है शिक्षा के माध्यम से। और मैं एक बात जानू कि शिक्षा तो देना जरूरी है ये युग में मायने लेकिन सही गुरु वो भी है जो को एक बालक ने जीवन में संघर्ष जिका जीवन में संघर्ष आवे जीवन जी की अवघाएं आवे बिसु पार किया लांगा बिना पार किया करा वो भी सिखावे गुरु है। और सागे सागे बिना रोजगार रोकानी उन्मुख करो काम भी गुरु ही करें।
1: तो बहुत ही आप बहुत ही फूटी सी बात बताई। और नमामी भाई देखा कि आपा देखो बात करा कि जिकी अपनो वन्य जीव है अपनी प्रकृति है जिकी अपनी मानव सभ्यता री बहुत ही चोखी धरोहर है तो इन वास्ते आपा बात करा के नहीं
0: तो केवण मतलब जिके प्रकृति रो जिको है नी ओ प्रकृति संपूर्ण प्रकृति जिके थे कह रिया हो वन्य जीव संपूर्ण प्रकृति इसु भी अपने सीखण रो मौको मिले अपने सीखण ओ भी मिले के जीव जिको है जिको किया जा कीड़ी है कीड़ी कोई दाने ने लेर जावे तो बा 10 बार पड़े फिर भी बा दाने ने पकड़ ऊपर ले जा तो बिसु बबी गुरु है के जीवन में माने अगर अब खाए आवे नी तो बे कई अब खाए तो बिसु डरनो को नी है अगर लाज रहसा तो निश्चित तौर से अपन भी अखाई में पार कर लेसा। चिड़क लिए बिरो घोंसलो जिको है आंधी रे मायने उड़ जावे तो बिसु बा लेर बैठा कोनी रोने बैठा कोनी बल्कि बा नुए सुरसु दिन उगे नुए सुरसु बा तणकला भेड़ा करे और पाछो घोंसलो तैयार करे बिसु सीख मिले के मिनखरो अगर सब कुछ निकल जावे तो बिने आपरो धैर्य ना छोड़ना चाहिए।
1: नमामी भाई देखा जी

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
3: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर

0: कि मुगल साम्राज्य को अकबरों बिंग पास भी आप देखा कि हजारों प्रशिक्षित चीता और वो रोज चीता रो शिकार करते हो और बहुत सारी बातें हैं जिको आप इंडा बारा में कर सका हा।
1: पर आज युग माने चीता रो जिको शिकार करना है वो बहुत ही गलत माने जावे और विशेष तौर से भारत सरकार जिकी है चीता रे पुनर्स्थापन परियोजना भी लाई है जिकरे कारण से चीता ने पाछो आप तैयारी करनी चीता रो जिको मैदान है भी मैदान में चीता ने पाछो लावनो और चीता की संख्या है बढ़ोतरी करनी आयरी विशेष रही है जहाँ राष्ट्रीय जिको उद्यान है विशेष तौर से कुन्नो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश रमायने है और इन मायने खूब लूठा लूठा घासा मैदान है पर्याप्त शिकार प्रजातियां हैं कम मिनखारो हस्तक्षेप बिरमाने कम रहे और जलवायु जिको चीतार वास्ते जिकी चाहिए बा बिरमाने रहे वैज्ञानिक प्रबंधन रहे तो ई वास्ते पुनर्वास वास्ते जिको कुन्नो राष्ट्रीय उद्यान है बटे ही चीता ने ले रहा विशेष तौर से दक्षिण अफ्रीका से बारे चीता भारत लाया गया और आज जिका चीता की संख्या है धीरे धीरे धीरे धीरे बढ़ती जा रही है।
0: और नमामि भाई चीता रे सामने सबसे मोटी चुनौती आई है कि प्राकृतिक जिका आवास है वह नष्ट हो रही है शिकार की कमी हो रही है और मानव वन्य जीव संघर्ष और अवैध शिकार भी प्रमुख चुनौतियां रही है तो इन वास्ते कही है कि वन्य जीव रे संरक्षण रो समर्थन करनो है पर्यावरण की रक्षा करनी है अवैध शिकारी सूचना संबंधित विभाग ने अपन देनी है और प्रकृति के प्रति संवेदनशील बनना है ताकि प्रत्येक नागरिक छोटो सो अगर प्रयास कर सी तो बहुत मोटो बदलाव हो सके है।
1: तो अब हमें ले चलो वापस आपने गीत लेखनी सुनो सा बढ़िया सो गीत

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
3: तो सा किसान भाई बहन, देखो अब खरीफ की फसल लगाने वो बखत आ गया है। विशेष तौर से खरीफ की फसल में अगर अपन बात करें तो धान है, मक्का है, बाजरो है, ज्वार, सोयाबीन, कपास, मूंगफली, अरहर, उड़द, मूंग, तिल, एज की है नहीं फसल। इन फसल वास्ते अधिक उत्पादन वास्ते अब कई बार आप लोग कहीं करा कि रसायनिक खाद भी उपयोग करा,

0: और वो रासायनिक खाद जी को है वो बहुत नुकसान पुगावे जो जगह का नहीं पड़े पर अनुति भी नहीं कर सके इसको अच्छा है कि आप जैविक खाद में उपयोग में लेवा।
1: और नमामि भाई जी आप बताओ कि क्या कीटनाशक का उपयोग कम करो आप बात सही कही आप और जैविक खेती जिकी थे बता रहे हो तो जैविक खेती रो अर्थ होया कर रहे हैं जिके जिके मैं कही है कि रासायनिक उर्वरक कीटनाशक खरपतवार नाशक और कृत्रिम वृद्धि निवारक जिका है बार उपयोग कम सु कम करो इन स्थान पर आप गोबर की खाद कंपोस्ट बर्मी कंपोस्ट हरी खाद और जैव उर्वरक या जैव कीटनाशक रो आप उपयोग कर सका हाँ इसको कही है कि जैविक खेती एडी कृषि प्रणाली है जिकी मिट्टी री परिस्थिति तंत्र और मानव स्वास्थ्य में संरक्षण कर सी और प्राकृतिक प्रक्रियाओं रो भी ध्यान रख सी इसको अपने किसान व्यवसाय में अनेक जो चुनौती होया कर रही है कि समय समय मत मिट्टी की उर्वरता में कमी आ जाया करे है भूजल प्रदूषण हो जाया करे है उत्पादन लागत में वृद्धि हुए है रासायनिक उर्वरक का कारण स्वास्थ्य संबंधी जी की समस्या है वह भी आवे है कीट और रोगारी भी बढ़ती समस्या बने समय आवे है तो जैविक खेती है विश्व आपने मतलब सुधार करना और जैविक खेती में जो सबसे मोटो जी आप बात कराए उद्देश्य तो ये है कि सुरक्षित एवं पौष्टिक खाद्यान्न उत्पादन बढ़ सी मिट्टी की उर्वरता की क्षमता है बा बढ़ सी पर्यावरण भी चोखो रह सी जल संरक्षण हो सी जैव विविधता रो भी संवर्धन हो सी और किसान आय में सबसे वृद्धि हो सी सबसे मोटो लाभ हो है।
0: तो साहब आप वापस गीत खाने चला सीमा मिश्रा गायड़ो है गीत ओढ़नी ओढ़ू तो।

यह संदेश यूनेस्को और आकाशवाणी के सहयोग से प्रस्तुत किया गया है। जलवायु कार्रवाई, यह यूनेस्को का संदेश है। जलवायु कार्रवाई की शुरुआत 1992 के पृथ्वी शिखर सम्मेलन से हुई थी और 2015 में पेरिस अग्रीमेंट ने एक बड़ा कदम उठाया जिसका लक्ष्य है वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखना। लेकिन लगभग सभी देशों के प्रतिबद्धता के बावजूद अब तक के वादे इस लक्ष्य के लिए काफी नहीं हैं। इसलिए तुरंत और प्रभावी बदलाव जरूरी है, खासकर गरीब देशों को वित्तीय सहायता और समर्थन देना होगा। कार्बन उत्सर्जन कम करना और पर्यावरण अनुकूल व्यवहार ही सबसे जरूरी उपाय हैं। यहाँ एक रोचक तथ्य है, यूनेस्को ने जलवायु जागरूकता बढ़ाने के लिए 7 भारतीय भाषाओं में जलवायु साक्षरता की सामग्री तैयार की है।

0: माह के पहले और तीसरे रविवार को सुबह 8:30 बजे सुनिएगा कार्यक्रम हेल्दी बीकाना, आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल की प्रस्तुति।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
3: तो बहुत ही फूटे सो गीतों में सुनियो और मम्मा ने भाई अपन देखा कि जिकी सड़क है नहीं, बापा ने अपन ने गांव और शहर के बीच की दूरी ने कम करे है, समावेशी विकास ने नई दिशा दिवे है और इन वास्ते अपनी सरकार एक बहुत ही चोखी योजना लाई है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, और जिरी शुरुआत 25 दिसंबर 2000 ने ग्रामीण क्षेत्र में सर्वकालीन सड़क संपर्क प्रदान करने के उद्देश्य से करी गई।
4: और सागे सागे एक बात योजना था करी नहीं, एक योजना मैं भी बता दूं कैश द रैन, इधर मुझे क्या है कि अभियान शुरू कर गया, योजना को ना एक अभियान है, जठा भी बिरखा हुए जद भी बिरखा हुए तो बिरखा जल ने परोटना, तो उद्देश्य है ताकि स्कूल हो, घर हो, या फिर मंदिर हुए या खेत हुए, कठे भी हो, अगर बड़ा पानी बरस रही है तो

0: तो सा सिंजारी बेड़ा होगी है और आप सो सीख लेवण बखत हो गयो है सीख देवो आप रो अपनो हेतालु साथी डॉक्टर नमामि शंकर आचार्य
1: और आप ही बे मुक्त जन ने घणा घणा राम राम।

अभी ग्रामीण श्रोता सुन रहे थे अपना कार्यक्रम ग्रामीण जगत। आज इस कार्यक्रम को पेश कर रहे थे डॉक्टर नमामि शंकराचार्य और मुक्ता जैन। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। 7:45 हुए, आइए अब

इसके साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोली मारू चैनल से बोल रहे हैं। 8 बजने को है, कुछ ही पल में आप सुनेंगे संसद समीक्षा हमारे दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। पहले लोकसभा। लेखक है पीटीआई भाषा के दीपक रंजन। लोकसभा ने आज लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी। नीट प्रश्न पत्र लीक की पृष्ठभूमि में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 में सख्त प्रावधान शामिल करने के

भी लाए गए। इस संशोधन विधेयक पर हुई चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की कुछ टिप्पणियों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई। इस कारण सदन की कार्यवाही पहले एक बार करीब 40 मिनट के लिए अपराह्न 2:30 बजे तक और फिर 3 बजे तक स्थगित कर दी गई। हंगामे के बीच ही प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब दिया और उनके जवाब के बाद सदन ने ध्वनि मत से विधेयक को मंजूरी प्रदान कर दी। विधेयक पारित होने के बाद कांग्रेस सांसदों की नारेबाजी के बीच ही अध्यक्ष ओम बिरला ने कार्यवाही

कल इस मामले में आरोप पत्र दायर कर दिया गया है और आज से सुनवाई शुरू हो गई है। श्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि नए संशोधन विधेयक के प्रभाव में आने के बाद फास्ट ट्रैक अदालत में सुनवाई के साथ इस मामले में 5 महीने में फैसला आ जाएगा। श्री सिंह ने कहा कि प्रश्न पत्र लीक के विरुद्ध कड़े प्रावधान के साथ मूल कानून 2024 में लागू किया गया था और आज प्रश्न पत्र लीक संबंधी खामियां सामने आने के बाद सरकार ने माना कि कानून को और कड़ा बनाने की आवश्यकता है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने चर्चा के दौरान कहा कि दिल्ली में मासूम बच्चों पर जुल्म सितम ढाया गया, जबकि सरकार ने सर्वोच्च संयम के साथ कार्रवाई की और सुनिश्चित किया कि कोई भी हताहत नहीं हो। श्री सिंह ने कहा कि कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने देश में पिछले कुछ साल में 152 बार प्रश्न पत्र लीक होने और इसमें 750 करोड़ बच्चों के प्रभावित होने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि पता नहीं प्रियंका गांधी ये आंकड़े कहां से लेकर आए हैं। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी ने 2024 का कानून लागू होने के बाद कोई कार्रवाई नहीं होने की बात कही, जबकि ऐसे मामलों में 52 प्राथमिकियां दर्ज हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शिक्षा व्यवस्था में सुधार की प्रतिबद्धता के अनुरूप सरकार 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लेकर आई, जो कांग्रेस का अधूरा काम था। लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 के प्रावधानों के अनुसार परीक्षाओं में प्रश्न पत्र लीक करने या अनुचित साधनों का इस्तेमाल करने वाले व्यक्तियों को कम से कम 5 साल और अधिकतम 10 साल तक के कारावास तथा 50,00,000 रुपए तक के जुर्माने की सजा हो सकती है। इसी तरह संगठित अपराधों के लिए कम से कम 7 साल के कारावास और 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रस्ताव है। प्रस्तावित संशोधनों के तहत सभी जांच 2 महीने के भीतर पूरी करनी होगी। विधेयक में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को त्वरित अदालतें स्थापित करने का निर्देश देने का भी प्रस्ताव है। ये अदालतें आरोप पत्र दाखिल किए जाने के 3 महीने के भीतर मुकदमे की कार्यवाही पूरी करेंगी। इससे पहले सदन में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने नीट प्रश्न पत्र लीक के खिलाफ छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कार्रवाई को लेकर बुधवार को लोकसभा में गृहमंत्री अमित शाह पर गंभीर आरोप लगाए। इसका सत्ता पक्ष ने तीखा विरोध किया और उनसे माफी की मांग की। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि या तो नेता प्रतिपक्ष बताएं कि किस आधार पर उन्होंने देश के एक जिम्मेदार व्यक्ति पर गंभीर आरोप लगाया है या फिर वे माफी मांगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष बिना किसी तथ्य जांच और साक्ष्य के किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा सकते। श्री राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि देश की शिक्षा व्यवस्था की आत्मा पर भारतीय जनता पार्टी के वैचारिक संगठन ने कब्जा कर लिया है और पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान तो सिर्फ एक प्रतीक मात्र थे। उन्होंने छात्रों के विरोध प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए ये भी कहा कि प्रदर्शनकारी बच्चों के माता पिता में साहस नहीं है कि वे भाजपा और उसके वैचारिक संगठन का मुकाबला करें, लेकिन ये बच्चे सामने खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि छात्रों ने डर को बाहर निकालकर चुनौती दी और खुलकर सवाल किया। उन्होंने सदन में गृहमंत्री की गैर मौजूदगी को लेकर दावा किया कि उनमें हिम्मत नहीं है कि वे सदन में आ सकें। नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि गृहमंत्री डरे हुए हैं। इसके बाद उन्होंने छात्रों पर बल प्रयोग का उल्लेख करते हुए गृहमंत्री पर गंभीर आरोप लगाए। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष ने गंभीर आरोप लगाए हैं तो सरकार को बताना चाहिए कि छात्रों पर बल प्रयोग का आदेश किसने दिया था। सत्ता पक्ष के सदस्यों ने राहुल गांधी माफी मांगो और कांग्रेस के सदस्यों ने एलओपी को बोलने दो और गृहमंत्री जवाब दो के नारे लगाए। सदन में काफी देर तक गतिरोध की स्थिति बनी रही। श्री राहुल गांधी ने कहा कि सड़कों पर इस देश के भविष्य ने जो किया वो कोई गुस्सा हिंसा और नफरत नहीं थी, बल्कि ये युवाओं की अभिव्यक्ति थी तथा सत्तारूढ़ दल समेत सभी दलों को इसका सम्मान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर भाजपा के मित्र अपने बच्चों से भी इसके बारे में पूछेंगे तो आंदोलनकारी बच्चों के साथ उनकी भी सहमति ही पाएंगे। उन्होंने कहा कि लोग एक परीक्षा पर जितना पैसा खर्च कर रहे हैं वो सरकार के शिक्षा बजट से ज्यादा है।
सत्ता पक्ष की टोका टोकी के चलते राहुल गांधी ने बोलने से इनकार कर दिया और अपनी सीट पर बैठ गए। इसके बाद श्री रिजिजू ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष ने एक असंसदीय शब्द का इस्तेमाल किया जिस पर आपत्ति जताई गई है। उन्होंने कहा कि हम उन्हें सुनने को

तैयार हैं और वे अपनी बात रखें। उन्होंने कहा कि आप भावुक चेहरा दिखाकर सदन को गुमराह नहीं कर सकते। श्री बिरला ने कहा कि सदन में अच्छी व्यवस्थाएं रही हैं और अच्छी मर्यादाएं रही हैं। मर्यादा बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कोई मर्यादा और तर्क से बोलता है तो देश सुनता है और सम्मान भी करता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी श्री राहुल गांधी से भाषण जारी रखने की अपील की और सत्ता पक्ष के सदस्यों से उनके भाषण के बीच में टीका टिप्पणी नहीं करने को कहा। इसके बाद नेता प्रतिपक्ष ने भाषण जारी रखा। हालांकि दोनों पक्षों में नोकझोंक की स्थिति बनी रही और कार्यवाही 2:30 बजे तक स्थगित कर दी गई। सरकार ने जन्म और मृत्यु के पंजीकरण संबंधी कानून में संशोधन करने के प्रावधान वाला विधेयक भी आज सदन में पेश किया। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने सदन में विपक्ष के हंगामे के बीच जन्म और मृत्यु का पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। संसदीय प्रक्रिया के तहत लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विधेयक को पेश किए जाने का विरोध करने के लिए विपक्ष के कुछ सदस्यों के नाम पुकारे। हालांकि कोई विपक्षी सदस्य नहीं बोला और इसके बाद श्री नित्यानंद राय ने विधेयक पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969-2023 में संशोधित की धारा 13 के 3 में और संशोधन करना है ताकि विलंब से होने वाले पंजीकरण के प्रावधानों को और अधिक कड़ा बनाया जा सके। मौजूदा प्रावधानों के तहत यदि जन्म या मृत्यु का पंजीकरण 1 वर्ष से अधिक की देरी से कराया जाता है तो इसके लिए जिला मजिस्ट्रेट, डीएम, उपमंडल मजिस्ट्रेट, एसडीएम अथवा किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट के आदेश की आवश्यकता होती है। विधेयक में देरी की अवधि के आधार पर 2-स्तरीय मंजूरी व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। अब सुनिए राज्यसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखिका है पीटीआई भाषा की मनीषा श्रीवास्तव। राज्यसभा ने आज उस विधेयक को पारित कर दिया जिसके प्रावधानों के तहत राष्ट्रगीत वंदे मातरम के गायन के दौरान किसी भी तरह का व्यवधान या उसका अपमान आपराधिक कृत्य माना जाएगा और इसके लिए 3 वर्ष तक की सजा हो सकती है। उच्च सदन ने राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 को संक्षिप्त चर्चा के बाद ध्वनिमत से पारित कर दिया। विधेयक पारित किए जाने के समय कांग्रेस सहित विपक्ष के सदस्य सदन में मौजूद नहीं थे क्योंकि वे गृहमंत्री अमित शाह की गैर मौजूदगी सहित विभिन्न मुद्दों पर विरोध जताते हुए सदन से वॉकआउट कर गए थे। हालांकि आम आदमी पार्टी, बीजू जनता दल, भारत राष्ट्र समिति और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सदस्यों ने चर्चा में हिस्सा लिया। विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि ये विधेयक देश के लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए लाया गया है। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम देश के स्वतंत्रता संग्राम में देशवासियों का प्रिय नारा था। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने अपने तुष्टीकरण की नीति के कारण वंदे मातरम को आजादी के बाद वो सम्मान नहीं प्राप्त होने दिया जो उसे मिलना चाहिए था। उन्होंने कहा कि इसी कारण वंदे मातरम के केवल 2 अंतरों को ही सरकार ने स्वीकार किया और इसके 2 ही अंतरे सरकारी कार्यक्रमों और आयोजनों में गाए बजाए जाते थे। श्री राय ने कहा कि आजादी मिलने के बाद पहले दिन प्रथम गृहमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के निर्देश पर पंडित ओंकार नाथ ठाकुर ने आकाशवाणी पर पूरा वंदे मातरम गाया था। विधेयक के उद्देश्यों और कारणों में कहा गया है कि राष्ट्रगान की तरह राष्ट्रगीत को गाने से जानबूझकर रोकने या ऐसे गायन में लगी किसी सभा में व्यवधान पैदा करने को एक दंडनीय अपराध बनाने का प्रावधान किया जाता है। विधेयक में राष्ट्रगीत के अपमान के लिए 3 वर्ष तक की सजा या जुर्माना अथवा दोनों के प्रावधान हैं। इससे पहले विधेयक पर हुई चर्चा में सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री तथा आरपीआई के रामदास अठावले, भाजपा के राधामोहन दास, मयंक कुमार नायक, डॉ अशोक कुमार मित्तल, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के गोला बाबू राव, तेदेपा के विजया चिंता कायला, राजद के मनोज कुमार झा, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, शिवसेना की डॉ ज्योति नागनाथ वाघमारे, बीआरएस के रविचंद्र वद्दीराजू, बीजेपी की सुलता देव और अन्ना द्रमुक सदस्य डॉ एम थंबीदुरई ने हिस्सा लिया। विधेयक पारित होने के बाद भाजपा के माधवराव गोपछड़े, डॉ अनिल सुखदेवराव बोंडे और डॉ लक्ष्मीकांत वाजपेयी तथा भाजपा के नाम निर्देशित सतनाम सिंह संधू ने आसन की अनुमति से विशेष उल्लेख के जरिए लोक महत्व से जुड़े मुद्दे उठाए। विशेष उल्लेख के बाद 3:15 पर पीठासीन अध्यक्ष घनश्याम तिवारी ने उच्च सदन की बैठक पूरे दिन के

लिए स्थगित कर दी। सदन की बैठक अब बृहस्पतिवार को सुबह 11 बजे होगी। विपक्षी सांसद दिल्ली में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के मुख्यालय में दिल्ली पुलिस के प्रवेश और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ की पूर्व अध्यक्ष आयशी घोष को गिरफ्तार करने की कोशिश का विरोध कर रहे थे। साथ ही उन्होंने नीट प्रश्न पत्र लीक के विरोध में राष्ट्रीय राजधानी में प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग भी दोहराई। सूचीबद्ध दस्तावेज सदन के पटल पर रखे जाने के तुरंत बाद माकपा सांसद जॉन ब्रिटास ने आयशी घोष का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि सादे कपड़ों में दिल्ली पुलिस की एक टीम 2021 में जेएनयू में हुए प्रदर्शन से जुड़े मामले में आयशी घोष को गिरफ्तार करने के लिए कल पार्टी कार्यालय में दाखिल हुई। उनकी बात का समर्थन करते हुए नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि लोकतंत्र खतरे में है। कांग्रेस अध्यक्ष ने सवाल किया कि एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल के कार्यालय में पुलिस के प्रवेश का आदेश किसने दिया। आरोपों का जवाब देते हुए सदन के नेता जेपी नड्डा ने कहा कि यह एक सामान्य कानून व्यवस्था से जुड़ा मामला है। उन्होंने कहा कि पुलिस को कानून के अनुसार कार्रवाई करनी होती है और उसने उसी के अनुरूप कार्रवाई की है। श्री नड्डा ने कहा कि वे भी छात्र आंदोलन से जुड़े रहे हैं और उन्हें भी ऐसी कई कार्रवाइयों का सामना करना पड़ा था। माकपा तथा अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने इस घटना पर विरोध जताया। सभापति ने सदन में शून्यकाल शुरू करने और आसन की अनुमति से सदस्यों से अपने अपने मुद्दे उठाने के लिए कहा। इसी बीच विपक्षी सदस्यों ने नीट प्रश्न पत्र लीक के विरोध में पिछले सप्ताह राष्ट्रीय राजधानी में प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर गृह मंत्री के बयान की मांग भी उठाई। सत्ता पक्ष के सदस्यों ने इसका विरोध किया। विपक्षी सदस्य श्री शाह के बयान की मांग करते हुए नारेबाजी करने लगे। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल चलाने का प्रयास किया और भारतीय जनता पार्टी के मदन राठौर, तेजवीर सिंह, डॉ लक्ष्मीकांत वाजपेयी और राजीव भट्टाचार्य ने यातायात जाम, सरकारी स्कूलों में खेल के मैदानों की स्थिति और खाली पड़ी जमीनों में सौर ऊर्जा उत्पादक संयंत्र लगाने संबंधी मुद्दे उठाए और सरकार से इनके समाधान की मांग की। इस दौरान विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी था। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदस्यों से शून्यकाल चलने देने की अपील की, लेकिन सदन में व्यवस्था बनते न देख उन्होंने कार्यवाही को दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दिया। बैठक स्थगित करने से पहले सभापति ने प्रदर्शन कर रहे सदस्यों को आसन के समक्ष नहीं आने की चेतावनी दी। 20 जुलाई से शुरू हुए संसद के मॉनसून सत्र के दौरान राज्यसभा में लगातार व्यवधान देखने को मिल रहा है। मॉनसून सत्र में आज पहली बार उच्च सदन में शून्यकाल हुआ, लेकिन केवल 4 सदस्य ही अपने मुद्दे उठा पाए। इस सत्र में प्रश्नकाल एक बार भी नहीं हो पाया है। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।

आकाशवाणी बीकानेर के ढुलमरु चैनल से बोल रहे हैं। 8:15 हुए, आइए अब सुनते हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम फिल्म संगीत।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: फिल्म संगीत इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से। आइए अब सुनते हैं मुकेश की आवाज हिमालय की गोद में फिल्म के लिए। गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार हैं

फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। शब्द हैं SH बिहारी के, आवाजें हैं शब्बीर कुमार और लता मंगेशकर की। फिल्म का नाम है प्यार झुकता नहीं।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलमारू चैनल से बोल रहे हैं। 8:30 होने को है। आइए सुनते हैं लोक संगीत। लोक संगीत के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं, सर्वप्रथम हम आपको सुनवा रहे हैं उमेश मेहंदी दत्ता की आवाज़।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

इस लोकगीत के साथ ही लोक संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोली मारू चैनल से बोल रहे हैं। 8:45 होने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार संध्या और न्यूज़ 8:09 हमारे दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

पेपर रोकने वाला विधेयक पारित किया। राज्यसभा ने वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान कानूनी संरक्षण देने और इसके अपमान को अपराध घोषित करने वाला विधेयक पारित किया। ओडिशा में बाढ़ की स्थिति गंभीर, 4 लोगों की मौत और 4 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में मरने वाले प्रदर्शनकारियों की संख्या बढ़कर 40 हुई। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय ने चिंता व्यक्त की। और राष्ट्रमंडल खेलों में

0: गेंदबाज अंकुश, साक्षी, अरुंधति, सचिन और नरेंद्र ने सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब तक 9 भारतीय मुक्केबाजों ने पदक सुनिश्चित किए। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक में 10 वर्ष तक के कारावास, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश को दैनिक सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का आदेश दिया गया है। अपराधों की जांच पुलिस थाने में सूचना दर्ज होने की तारीख से 2 महीने के भीतर पूरी की जानी चाहिए। मुकदमे की सुनवाई आरोप पत्र दाखिल होने की तारीख से 3 महीने के भीतर पूरी होनी चाहिए। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये संशोधन कानून को और अधिक सख्त बनाने तथा त्वरित न्याय दिलाने के लिए किया गया है। डॉ. सिंह ने कहा कि नया विधेयक छात्रों और युवाओं के कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।
1: सरकार की प्रतिबद्धता का आप इसी बात से अनुमान लगा सकते हैं कि इसी विधेयक के लाने के साथ ही साथ हमारे लॉ मिनिस्टर्स की ओर से भी एक प्रस्ताव जारी कर दिया गया। स्पेशल फास्ट ट्रैक फोर्स है, इनको स्थापित करने का भी क्रम प्रारंभ किया जाए। उसमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड में पहले ही इन्होंने गठित कर दिया और आने वाले दिनों में बाकी स्थानों पर भी।
0: डॉक्टर सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री ने टास्क फोर्स का गठन भी किया है।
1: कल ही प्रधानमंत्री जी ने एक टास्क फोर्स का भी ऐलान किया है टू रिकमेंड रिफॉर्म्स टू मेक द एग्जाम सिस्टम्स लीक प्रूफ। उसमें कुछ एक बड़े वरिष्ठ लोग सम्मिलित किए गए और साथ ही साथ जो राधा कृष्ण कमेटी गठित की गई थी 22 जून 2024 में, उसमें से जो 46 की रिकमेंडेशन थी उसमें से भी 35 इम्प्लीमेंट हो चुकी है।
0: श्री सिंह ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी के असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करने की भी आलोचना करते हुए इसे अनुचित और दुर्भाग्यपूर्ण बताया। राज्यसभा ने राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा के लिए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। ये विधेयक वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करेगा। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि वंदे मातरम के अपमान के लिए अब 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है।
2: राष्ट्रीय हित अपमान पर इस विधेयक के माध्यम से दंडनीय प्रावधान करने का विचार हुआ है। वर्तमान संशोधन का उद्देश्य राष्ट्र गीत वंदे मातरम के जान बूझकर किए गए अपमान को भी उसी प्रकार के दंडनीय बनाया जाए जैसा कि वर्तमान कानून में है। हर भारतवासी के राष्ट्र प्रेम का उद्घोष है वंदे मातरम, विकसित भारत का संकल्प है वंदे मातरम।
0: संसद के दोनों सदनों में आज हुई कार्यवाही पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
3: संसद के दोनों सदनों में आज महत्वपूर्ण विधायी कार्य संपन्न हुए। हालांकि कार्यवाही के दौरान कई बार व्यवधान भी देखने को मिला। लोकसभा में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत किया। इसके अलावा लोकसभा ने एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित विधेयक की जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति का कार्यकाल संसद के शीतकालीन सत्र 2026 के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक बढ़ाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। नीट मुद्दे को लेकर छात्रों के प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई के विरोध में विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्रवाई कई बार बाधित हुई। इस कारण लोकसभा और राज्यसभा में प्रश्नकाल नहीं चल सका। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्रीय मंत्रियों और भाजपा के नेताओं ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह पर विपक्ष के नेता राहुल गांधी की टिप्पणी की आलोचना की। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में कहा कि श्री राहुल गांधी अपने संवैधानिक पद की गरिमा बनाए रखने में विफल रहे हैं।
4: आज राहुल गांधी ने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जो संसदीय नहीं है। माननीय गृह मंत्री जी पर आरोप लगाया जबकि उनके पास इस प्रकार का कोई सबूत नहीं है। कभी भी कोई लाठी चार्ज किया गया, स्कैनिंग या पानी की बौछार का आदेश कोई मंत्री नहीं देता है। ये उस मौके पर अनलॉफुल असेंबली को देखते हुए उस मौके के गजेटेड अफसर, पुलिस अफसर और प्रशासन के लोग ये निर्णय लेते हैं। ये मिथ्या आरोप उन्होंने माननीय गृह मंत्री पर लगाया है।
0: केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह ने आरोप लगाया कि सदन में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की भाषा संसदीय कार्यवाही के लिए अनुचित थी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2

0: अगस्त को नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ करेंगे। ये नशाखोरी के खिलाफ 100 सप्ताह का राष्ट्रव्यापी जन भागीदारी आंदोलन है। इस पहल का लक्ष्य जागरूकता, सामुदायिक सहभागिता और निरंतर जन भागीदारी को बढ़ावा देकर नशा मुक्त भारत के निर्माण के लिए युवाओं को सामूहिक राष्ट्रीय मिशन में एकजुट करना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में भारतीय पारंपरिक कला रूपों के कलाकारों से मुलाकात की और उनके कार्यों का अवलोकन किया। बनारस भित्तिचित्र थंका नायका, केरल भित्तिचित्र बसोहली सुरपुर और मैसूर जैसी कला शैलियों का प्रतिनिधित्व करने वाले 12 कलाकार कलाकार निवास कार्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्रपति भवन में रह रहे हैं। कलाकार निवास कार्यक्रम भारत की कलात्मक परंपराओं की भावना का उत्सव है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज आगामी नीट स्नातक काउंसलिंग 2026 की तैयारियों की समीक्षा की। श्री नड्डा ने कहा कि काउंसलिंग प्रक्रिया पारदर्शी, निष्पक्ष और योग्यता आधारित तरीके से संचालित की जानी चाहिए। ओडिशा में लगातार जारी तेज बारिश और नदियों में आए उफान से राज्य के बड़े हिस्से को मानवीय संकट में डाल दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बाढ़ के कारण 4 लोगों की मौत हो गई है।
1: बाढ़ का पानी लगातार आगे बढ़ रहा है। उफनती बैतरणी नदी खारी तबाही मचा रही है, जबकि भद्रक, जाजपुर और बालेश्वर में बाढ़ की स्थिति खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है। मयूरभंज में लगातार बारिश और नदियों के उफान ने संकट को और बढ़ा दिया है। सरकारी सूत्रों का कहना है कि 304 ग्राम पंचायत में लगभग 3,80,000 लोग प्रभावित हुए हैं। बचाव और राहत कार्य जारी है। इस बीच IMD ने नुआपड़ा, कलाहंडी, नवरंगपुर और कोरापुट जिलों में ऑरेंज वार्निंग जारी की है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: छत्तीसगढ़ से हमारे संवाददाता ने बताया है कि पिछले 2 दिन से जारी मूसलाधार वर्षा के कारण कई जिलों में जनजीवन प्रभावित है।
2: छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में पंटोरा में स्थित कन्या आश्रम में पानी भरने से 50 से अधिक छात्राओं को दूसरे स्थान पर भेजा गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सभी जिला कलेक्टरों सहित अन्य अधिकारियों को सतर्क रहने और जरूरी उपाय करने के निर्देश दिए हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान छत्तीसगढ़ के बालोद और कांकेर जिलों के लिए भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
0: मौसम विभाग ने मध्य महाराष्ट्र और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में कल मूसलाधार वर्षा की आशंका व्यक्त की है। पूर्वोत्तर भारत, तटीय कर्नाटक, पूर्वी मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, केरल और माहे, कोंकण, गोवा, पंजाब, दक्षिणांतरिक कर्नाटक, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी कल तेज बारिश की संभावना है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और लक्षद्वीप में भी तेज वर्षा का अनुमान है। ऊपरी असम में आई विनाशकारी बाढ़ के मद्देनजर विधानसभा का पहला बजट सत्र आज निर्धारित समय से 2 दिन पहले समाप्त हो गया। एक रिपोर्ट।
3: पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री अतुल बोरा ने सदन को बताया कि राज्य सरकार बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ अधिकारियों की एक टीम कल ऊपरी असम का दौरा करेगी ताकि बाढ़ पीड़ितों को प्राथमिकता के आधार पर सहायता उपलब्ध कराई जा सके। सदन ने जान गंवाने वाले लोगों की स्मृति में 1 मिनट का मौन भी रखा। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी। राकेश टोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति लगातार बढ़ रही है। मरने वाले प्रदर्शनकारियों की संख्या बढ़कर 40 हो गई है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय ने प्रदर्शनकारियों की मौत पर चिंता व्यक्त की है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के प्रवक्ता जेरेमी लॉरेंस ने कहा कि एक नागरिक समाज संगठन को अपराधी घोषित करना और सभाओं पर कड़े प्रतिबंध लगाना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा और संगठन के अधिकारों के उल्लंघन के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा करता है। उधर ब्रिटेन में रहने वाले कश्मीरियों ने आज बर्मिंघम स्थित पाकिस्तानी वाणिज्य दूतावास के बाहर हत्याओं के विरोध में प्रदर्शन किया। उन्होंने संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए दूतावास के बाहर जूते रखे। कई ब्रिटिश सांसदों ने कथित कार्रवाई की निंदा की। सांसद नाज शाह और इमरान हुसैन ने प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी को बर्बर बताया और जवाबदेही तथा शांतिपूर्ण समाधान की मांग की।

0: कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा नौसेना के लिए निर्मित 8 पनडुब्बी रोधी जलपोतों में से 7वें जलपोत मछलीपट्टनम का आज जलावतरण किया गया। ये जलपोत समुद्र के भीतर की निगरानी, पनडुब्बी रोधी युद्ध अभियान और कम तीव्रता वाले समुद्री अभियान के साथ साथ बारूदी सुरंग भेदन क्षमता से लैस है। 80% से अधिक स्वदेशी सामग्री की ये परियोजना भारतीय पोत निर्माण उद्योग की बढ़ती क्षमता को प्रदर्शित करती है। दिल्ली पुलिस ने 20 जुलाई के नीट पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन के दौरान एक प्रदर्शनकारी को गोली लगने की अफवाहों का खंडन किया है। ये अफवाह मेडिको लीगल सर्टिफिकेट के निष्कर्षों से मेल नहीं खाती। पुलिस ने कहा कि सर्टिफिकेट में घाव को हल्की चोट बताया गया है, डॉक्टर के अनुसार गोली लगने का कोई सबूत नहीं है। पुलिस ने लोगों को ऐसी अफवाह फैलाने से पहले प्रामाणिक स्रोतों से जानकारी की पुष्टि करने की सलाह दी है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के एक निजी स्कूल में 5 वर्षीय बच्चे के साथ शिक्षक द्वारा कथित यातना और अमानवीय व्यवहार के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव और वाराणसी पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी किया है। मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लेते हुए आयोग ने 2 सप्ताह के भीतर इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। सरकार ने कहा है कि लगभग 6 दशकों की हिंसा के बाद देश वामपंथी उग्रवाद से मुक्त हो गया है। राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि उपलब्धि वामपंथी उग्रवाद से निपटने के लिए 2015 की राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना के दृढ़ कार्यान्वयन तथा केंद्र और राज्य सरकारों के समन्वित प्रयासों से हासिल हुई है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ है अमरीश सक्सेना।
1: सेंसेक्स 889 अंक ऊपर चढ़कर 77,655 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 265 अंक की तेजी के साथ 24,250 पर बंद हुआ। उधर अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया 21 पैसे मजबूत होकर 1 अमरीकी डॉलर की तुलना में 95.64 रुपए पर बंद हुआ।
0: ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय मुक्केबाज अंकुश, साक्षी, अरुंधति, सचिन और नरेंद्र ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारतीय मुक्केबाजों ने अब तक 9 पदक सुनिश्चित कर लिए हैं। पदक तालिका में भारत 2 स्वर्ण, 7 रजत और 3 कांस्य पदकों के साथ 9वें स्थान पर है। जम्मू कश्मीर में आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर श्रीनगर के मैसुमा स्थित ऐतिहासिक दशनामी अखाड़े से पारंपरिक पवित्र गदा चारी मुबारक को विधिपूर्वक निकाला गया। ये समारोह श्री अमरनाथ जी गुफा मंदिर की वार्षिक यात्रा के प्रारंभ का प्रतीक है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा ने परीक्षा में गड़बड़ी रोकने के लिए सख्त सजा और फास्ट ट्रैक कोर्ट के प्रावधान वाला पेपर लीक रोधी विधेयक पारित किया। राज्यसभा ने वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान कानूनी संरक्षण देने और इसके अपराध अपमान को अपराध घोषित करने वाला विधेयक पारित किया। ओडिशा में बाढ़ की स्थिति गंभीर, 4 लोगों की मौत और 4 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। और राष्ट्रमंडल खेलों में मुक्केबाज अंकुश, साक्षी, अरुंधति, सचिन और नरेंद्र ने सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब तक 9 भारतीय मुक्केबाजों ने पदक सुनिश्चित किए। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashvani and I am Wilsa Williams with the news at 9. The headlines. Lok Sabha passes anti-paper leak bill proposing tougher penalties and fast-track courts to curb exam malpractices. Rajya Sabha clears legislation granting Vande Mataram the same statutory protection as the national anthem, makes insult to national song a criminal offence. Flood situation grim in Odisha, claiming 4 lives and affecting nearly 4 lakh people. Heavy rainfall also disrupts normal life in Chhattisgarh. UN Human Rights Office voices concern over Islamabad's crackdown on protesters in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. Death toll rises to 40. At the Commonwealth Games, 9 Indian boxers assure medals for the country after sealing semi-final berths. The Lok Sabha today passed the

इसके साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यही समाप्त होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलू मारू चैनल से बोल रहे हैं। रात्रि के 9:30 होने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे कार्यक्रम चर्चा का विषय है हमारे दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: चर्चा का विषय है।
1: ये आकाशवाणी है। चर्चा का विषय है, कार्यक्रम में प्रस्तुत है मानसून में आपदाओं से बचाव के उपाय और जन जागरूकता पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग में वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर डी आर पटनायक और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान में प्रोफेसर सूर्य प्रकाश। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
2: नमस्कार। एक तरफ आसमान से बरसती जिंदगी तो दूसरी तरफ उसी बारिश का रौद्र रूप। कहीं किसान की आंखों में अच्छी फसल के सपने हैं तो कहीं बाढ़ का पानी घरों की चौखट लांघ चुका है। कहीं पहाड़ दरक रहे हैं, कहीं शहर कुछ घंटों की बारिश में थम जा रहे हैं और कहीं एक मोबाइल पर आया छोटा सा मौसम अलर्ट हजारों जिंदगियां बचाने की उम्मीद बन जाता है। आज मानसून केवल एक मौसम नहीं रहा, ये विज्ञान की परीक्षा भी है, प्रशासन की तैयारी भी और समाज की सामूहिक जिम्मेदारी भी। बदलते जलवायु परिदृश्य में मानसून का स्वरूप लगातार बदल रहा है। कहीं कुछ घंटों में पूरे महीने जितनी बारिश हो जाती है तो कहीं लंबे समय तक वर्षा का इंतजार बना रहता है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या हम आने वाले खतरों को समय रहते पहचान पा रहे हैं? क्या हमारी चेतावनी प्रणाली, हमारा आपदा प्रबंधन तंत्र और हमारी सामुदायिक तैयारी इस बदलती चुनौती का सामना करने के लिए पर्याप्त हैं? इन्हीं महत्वपूर्ण सवालों पर आज होगी चर्चा। हमारे साथ हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर डी आर पटनायक,

0: जो मौसम पूर्वानुमान और चेतावनी प्रणाली के विशेषज्ञ हैं। साथ ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रोफेसर सूर्य प्रकाश, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के विशेषज्ञ, जो आपदा जोखिम न्यूनीकरण और आपदा प्रबंधन की रणनीतियों पर वर्षों से कार्य कर रहे हैं। आप दोनों का आकाशवाणी के इस कार्यक्रम चर्चा का विषय में बहुत बहुत स्वागत है।
1: नमस्कार।
0: डॉक्टर पटनायक, शुरुआत आपके साथ करते हैं। पिछले कुछ वर्षों में देखा गया है कि कुल मानसूनी बारिश भले सामान्य रहे, लेकिन जिसे कहते हैं शॉर्ट ड्यूरेशन हाई इंटेंसिटी रेनफॉल, यानी कम समय में बहुत ज्यादा बारिश की घटनाएं बढ़ गई हैं। IMD अपने मेशो स्केल और अर्ली वार्निंग मॉडल्स को इस सूक्ष्म स्तर के पूर्वानुमान के लिए पिछले कुछ वर्षों में अगर हम कहें तो किस तरीके का अपडेट उसमें आया है, क्या नई तकनीक आई है और उसका कितना असर आप देख रहे हैं?
1: जैसे आपने पहले भी बताया कि ये क्लाइमेट चेंज जो बोलते हैं, क्लाइमेट चेंज के कारण जो हाई इंटेंसिटी रेनफॉल उसका फ्रीक्वेंसी जो है वो नंबर बढ़ रहा है। ये एक बहुत परिमाण में हमारा जितने सारे भी डाटा देखा गया है पिछला 100 साल 50 साल अगर हम देखेंगे तो ये जो जितना हैवी रेनफॉल एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल का इवेंट जो है उसका फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है। ये क्लाइमेट चेंज के कारण इसलिए हो रहा है कि जब टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उसमें जो मॉइस्चर है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है उसका काफी बढ़ जाता है एटमॉस्फेयर में, और जब स्टेबिलिटी होता है तो हैवी डाउनपोर हो जाता है। इसलिए अगर पूरा रेनफॉल अगर सीजन का मानसून सीजन जैसे जून टू सितंबर में अगर टोटल रेनफॉल अगर कंट्री एज ए होल अगर हम देखेंगे पिछले 30-40 साल में 50 साल में तो ऐसा कोई सिग्निफिकेंट ट्रेंड नहीं दिखने को मिलता है। वो बहुत अच्छी बात है, हमारा एग्रीकल्चर देश है। लेकिन तो हमारा जो एग्रीकल्चर देश है उसमें क्या होगा कि ये तो हमको अच्छी बात है कि रेनफॉल जो है डिक्रीजिंग ट्रेंड या इंक्रीजिंग ट्रेंड नहीं है। लेकिन जब हम टोटल रेनफॉल को हम डिवाइड कर देते हैं कि एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल जो कि 10 सेंटीमीटर से ज्यादा या 20 सेंटीमीटर से ज्यादा एक दिन में अगर ऐसा होता है तो उसका अगर काउंट करेंगे तो वो सब दिन के बढ़ रहा है। तो आप जैसे सवाल किया कि हमारा प्रणाली में पिछले 5-10 साल में हमने क्या सुधार किया है जो कि उसका आलिए, तो हमने काफी हमारा इम्प्रूवमेंट इसमें किया है। पहली तो बात यह है कि ये शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन इवेंट को पहले मॉनिटर करना पड़ता है। मॉनिटर करने पर कि अगर कोई चीज क्लाउड डेवलपमेंट हो रहा है या कुछ इसमें हो रहा है तो ये कि ऐसा इमीडिएटली अगर एक दिन में या 12 घंटा में दे देगा तो उसको हम मॉनिटर कैसे करेंगे? हमारे पास मॉनिटरिंग के लिए बहुत सारे हैं, सरफेस ऑब्जर्वेशन है, हम बैलून छोड़ते हैं, हम ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन है, राडार है, सैटेलाइट है, उसमें कंटिन्यूअसली हमारे पास आज 50 राडार है तो हमने इसमें से कंटिन्यूअसली हम देखते रहते हैं कि कोई ये मेरे कन्वेक्टिव क्लाउड बन रहा है क्या। उसके बाद ये जब हो जाता है तो इमीडिएटली हमने इसका सूचित करते हैं कि ये इसी एरिया में बहुत हैवी रेनफॉल होगा। दूसरा है कि हमारे पास न्यूमेरिकल मॉडल, ये जो वेदर प्रेडिक्शन है खाली हम सैटेलाइट राडार इमेज देख के हम प्रकार नहीं देते, उसमें से नहीं होगा, वो थोड़े से थोड़े हमारा 2-3 घंटा के लिए हम बता पाएंगे। लेकिन हम जब 5 दिन पहले कुछ बता रहे हैं कि 7 दिन पहले बता रहे हैं तो इस टाइप का इवेंट होने वाला है 2 दिन के बाद, इसके लिए हमें न्यूमेरिकल मॉडल चाहिए। तो न्यूमेरिकल मॉडल में हमने काफी इम्प्रूव किया है, हमारे सब जितना सारे डाटा अभी सैटेलाइट से AWS से सब आ रहा है वो मॉडल में जा रहा है, मॉडल में प्रोसेस हो रहा है, मॉडल का इम्प्रूवमेंट हुआ है। हमारे पास सुपर कंप्यूटर आया है, सुपर कंप्यूटर क्यों इसलिए चाहे कि बहुत पावरफुल कंप्यूटर का जरूरत पड़ता है जब वेदर प्रेडिक्शन करना पड़ता है, तो पावरफुल कंप्यूटर पहले नहीं था हमारा, अभी अभी हमने लाया है पावरफुल कंप्यूटर क्योंकि अभी हमारे पास 20 पेटाफ्लॉप से भी ज्यादा मशीन है। इसका चलते हुए हमारा जो मॉडल का जो भी है अच्छा इम्प्रूवमेंट हो गया है, तो इसलिए अर्ली वार्निंग जो मॉडल फोरकास्ट दे देगा तो हम अर्ली वार्निंग इसमें अच्छे से कर पा रहे हैं, और अर्ली वार्निंग के कारण चलते हमारा वार्निंग जो मैकेनिज्म बाद में, और एक चीज है ऑब्जर्वेशन हो गया, मॉडलिंग हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, उसके बाद हमारा जो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम एक जो बोलते हैं हम जब एक डिसीजन लेते हैं क्योंकि डिजास्टर मैनेजर को हेल्पफुल होगा, क्योंकि डिजास्टर मैनेजर खाली हम ये हो जाएगा कि ओडिशा में बारिश हो जाएगा ऐसा बोलने से उन्होंने पिन पॉइंट एक्शन नहीं ले पाएंगे। डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए आपको एक्यूरेसी चाहिए, आपको लोकेशन स्पेसिफिक चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करते हैं डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में उसको हम स्टेट लेवल से फिर हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल में आ जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल से फिर कौनसल सिटी लेवल में आते हैं, तो वो इतना फाइन ट्यून करने के लिए हमारा डिसीजन सपोर्ट सिस्टम काफी मददगार होता है। और उसके लिए हमारा सेटेलाइट राडार के साथ साथ हमारा जितना भी मॉडल आउटपुट से बन रहा है हमारा मॉडल, और हम कस्टमाइजली दूसरा मॉडल को भी यूटिलाइज करके हम एक कस्टमाइज फोरकास्ट प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे कि हैवी रेनफॉल अभी जैसे ओडिशा में चल रहा है, ये काफी दिन से हमने रेड कलर वार्निंग दिया है, तो ये सब संभव है कि काफी जो ऑब्जर्वेशन मॉडलिंग कम्युनिकेशन हमारा पर डाटा एसिमुलेशन न्यूमेरिकल मॉडल फिर हमारा डिसीजन सपोर्ट सिस्टम ये सारे कम्बाइंड अगर हम देखेंगे पिछले 10 साल में तो काफी इम्प्रूवमेंट हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ असेंस इंडिया में डिपार्टमेंट, उसके चलते हुए हमारा ये फोरकास्ट एक्यूरेसी भी काफी इम्प्रूव।
0: जी डॉक्टर सूर्य प्रकाश, जैसा कि डॉक्टर पटनायक कह रहे हैं कि पिछले कुछ वर्षों में बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं मौसम विभाग की प्रणालियों में, जिससे कि जो पूर्वानुमान

0: वो शत प्रतिशत लगभग सही होने लगे हैं। अब एक व्यवहारिक सवाल पर आते हैं कि जब भी भारी बारिश या बाढ़ की चेतावनी जारी होती है तो एक आम परिवार को अपने घर के स्तर पर क्या सुरक्षात्मक कदम उठाने चाहिए, खासकर अगर हम जैसे बात करें तो कोई इमरजेंसी किट होनी चाहिए, जैसे हम फर्स्ट एड किट रखते हैं अपने घर में, क्या उस तरीके से आपदा के लिए या भारी बारिश की चेतावनी, बाढ़ की चेतावनी के लिए कोई इमरजेंसी किट होनी चाहिए और उसमें कौन कौन सी जरूरी चीजें होनी चाहिए जो मुसीबत के समय जान बचा सकती है।
1: आनंद जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल किया है। जब भी भारी बारिश की हम चेतावनी आती है तो जन समुदाय को तैयार रहने के लिए कहते हैं, ना सिर्फ जन समुदाय बल्कि जो हमारे विभिन्न विभाग हैं, जो आपदा प्रबंधन के लिए जिन जिम्मेदार हैं, उनको भी तैयार रहने को कहा जाता है। अक्सर एक आम व्यक्ति को या परिवार को जब भारी वर्षा की चेतावनी मिलती है उस समय सबसे पहले तो यही होता है कि आपको कहीं भी घर से बाहर निकलने नहीं चाहिए, क्योंकि बाहर रास्ते में कहीं पर भी बाढ़ मिल सकती है, कहीं पुल टूट सकता है, कहीं रास्ते बह सकते हैं और इस तरह की कई संभावनाएं आपदाओं की होती हैं जो भूस्खलन या बाढ़ या भूमि के खिसकने के रूप में दिखाई दे सकती हैं। तो इमरजेंसी में आपको एक तो टॉर्च, क्योंकि अक्सर जब भी भारी वर्षा होगी तो पावर सप्लाई ब्रेकआउट होगा, तो उस समय में आपको टॉर्च की एक आवश्यकता रहेगी, एक टॉर्च जरूर होनी चाहिए। और इसके अलावा अगर आपको जरूरी है घर से बाहर निकलना तो आपको एक प्रॉपर अम्ब्रेला या रेनकोट वगैरह की जरूरत रहेगी। और इसके साथ में आप जो है कहीं पर अगर जा रहे हैं और कहीं मिट्टी या मलबे से क्रॉस करते हैं तो अगर आप डंडा या रस्सी भी साथ में रखते हैं तो बहुत हेल्पफुल रहता है। इसके अलावा जो जरूरी आपकी दवाइयां वगैरह हैं जो सर्वाइवल किट्स में जरूरी होती हैं, वाइटल मेडिसिन, वो भी आपके पास उपलब्ध रहनी चाहिए, क्योंकि ऐसे समय में हो सकता है बाजार वगैरह भी खुले ना रहे, तो जो भी बारिश का समय होता है और पूरा चेतावनी आती है उसके अनुसार उस समय अवधि के लिए आपको पूर्ण तैयारियां अपने सर्वाइवल के लिए करके रखनी चाहिए। पहले से हम मॉक ड्रिल्स वगैरह करके रखते हैं, इवैक्यूएशन रूट का हमें पता है, कहीं पे फंस गए या रिक्तिकरण करना है तो कौन से सुरक्षित स्थल है या कौन से सुरक्षित भवन है जहां पर आप समय रहते हुए अपने बचाव के लिए जा सकते हैं, उनका भी आपको ज्ञान रहना चाहिए। तो ये सब चीजें हैं। इसके अलावा आम व्यक्ति आजकल बारिश के सीजन में कहीं कहीं बाहर पर्वतीय स्थलों पर चले जाते हैं तो वहां पर बड़ा मतलब ध्यान से जाना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए भीड़ भाड़ इलाके में या फिसलन वाले इलाके में नहीं जाए, और कहीं पर भी जैसे ज्यादा लोगों के जाने की संभावना है वहां जाने को आप अवॉइड करें, बचें, ताकि वहां पे भीड़ भाड़ ना हो और किसी तरह की भगदड़ ना मच पाए। तो ये अक्सर होता है कि बारिश के टाइम पे मंदिर में या जो हमारे पिलग्रिमेज प्लेसेस हैं वहां इकट्ठे हो जाते हैं और फिर एकदम बारिश होती है और लोगों में भगदड़ मच जाती है, उसकी वजह से भी कई बार डेथ्स हो जाती है। तो हमको तैयारी के लिए इमरजेंसी किट, जिसमें आपके पास एक टॉर्च होनी चाहिए, वाइटल मेडिसिन होनी चाहिए और इसके अलावा आपके पास रस्सी या लाठी हो तो और अच्छा है, और अगर सीटी भी रखते हैं तो अच्छा रहता है दूसरों को सचेत करने के लिए या बुलाने के लिए।
0: डॉक्टर पटनायक, पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा है कि मुंबई, दिल्ली और बाकी बहुत सारे महानगरों के छोटे छोटे ब्लॉक्स में अर्बन फ्लडिंग की समस्या काफी देखने को मिली है। अब इन अर्बन फ्लडिंग्स को लेकर आईएमडी के फ्लैश फ्लड गाइडलाइन सिस्टम, जिसे एफएफजीएस भी कहते हैं, उसका सटीक प्रभाव जमीनी स्तर पर नगर निगम और आपदा टीम तक कितनी तेजी से पहुंचाना संभव हुआ है, इस दिशा में क्या प्रगति हुई है?
2: आजकल जो है अर्बन फ्लडिंग जो है एक बहुत बड़ा समस्या है। हमारा जैसे अर्बनाइजेशन काफी हो रहा है, अर्बन डेवलपमेंट बहुत हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बन रहा है जिसमें कि पॉपुलेशन भी बढ़ गया है, तो जब सिटी में पहले इतना बारिश होता था तो ये इतना नोटिस नहीं हो रहा था, उसका पानी अच्छे से निकल गया, ड्रेनेज सिस्टम है, ये है, तो थोड़ा सा अगर बेहतर है तो उसमें से ये फ्लडिंग नहीं हो रहा। लेकिन आजकल क्या है, जब इंटेंस रेनफॉल इवेंट जब होते हैं, अगर एक घंटा में कभी क्लाउड बर्स्ट टाइप जो आपको भी पता है कि एक घंटे में अगर 10 सेंटीमीटर बारिश हो जाता है तो उसको हम क्लाउड बर्स्ट टाइप का भी बोलते हैं। तो ये हाई इंटेंसिटी रेनफॉल इवेंट जब होता है अर्बन में तो इसमें ये अर्बन फ्लडिंग का समस्या आ रहा है। तो इसलिए अर्बन फ्लडिंग को हम जो आप बता रहे हैं कि फास्ट फ्लड गाइडेंस सिस्टम हमारा जो एफएफजीएस है, ये एक डब्ल्यूएमओ वर्ल्ड मेटेरियल ऑर्गेनाइजेशन तरफ से है, ये इंट्रोड्यूस किया है। तो हमारा जो इंडिया में है, हम सारे वाटर स्टेट रीजन के लिए हम ये अर्बन फ्लडिंग का एफएफजीएस है वो देते हैं। तो उसमें क्या हो रहा है कि छोटे छोटे एरिया के लिए भी हमारा सब मैपिंग हुआ है, तो जितना भी रेनफॉल हमको ऑब्जर्वेशन रेनफॉल मिल रहा है वो सारे उसमें

0: जाएगा एंड उसके बाद वो जो सॉयल मॉइस्चर है, क्योंकि जब क्या होता है जब सॉयल मॉइस्चर ऑलरेडी वेट है तो उसके बाद अगर बारिश हो जाता है तो उसका ड्रेनेज इतना जल्दी पानी निष्कासित नहीं हो पाता है, वो सब चीज उसी मॉडल में रहेगा रेफ्रिजरेंट्स और उसमें हमें कितना रिस्क है ये एक तरह से हम गाइडेंस देते हैं। तो हर दिन हमारा सुबह भी बनता है शाम को भी बनता है, दो बार दिन में तो बन रहा है, तो अगले 6 घंटे के लिए देते हैं जो कि ऑब्जर्व रेनफॉल में कितना रिस्क है और उसके बाद हमारा फोरकास्ट भी अगले 24 आवर्स में जो कहाँ कहाँ ये होने वाला है इसका देते हैं। आज जैसे कि अभी हमने मानसून डिप्रेशन चल रहा है, अभी ओडिशा में काफी किसी जगह में 300 मिलीमीटर रेनफॉल भी हुआ है, 250 बहुत जगह में उड़ीसा के इंटीरियर उड़ीसा में, तो हमारा फ्लश फ्लड गाइडेंस सिस्टम में हमने इंडिकेट किया था इसमें, जैसे कि अभी फिर छत्तीसगढ़ जाएगा, तो ये एक जो फ्लश फ्लड गाइडेंस सिस्टम है ये आपको कम टाइम में हमको जो वार्निंग है रेनफॉल को ट्रांसलेट करके, खाली रेनफॉल कितना होगा ये इतना सफिशियंट नहीं, रेनफॉल जो होगा उसके बाद बाकी सॉइल मॉइस्चर को भी देखा जाएगा, बाकी उसका कितना ड्रेनेज में है, सॉइल मॉइस्चर का क्वालिटी है, अभी कितना वेट है, वो सब कंसीडर करके फ्लश फ्लड, तो वही गाइडेंस जो हम दे रहे हैं ये काफी हद तक यूजफुल है। ऑलरेडी अर्ली वार्निंग हमने दे दिया हैवी रेनफॉल या वेरी एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल दे दिया, तो फिर हम जो फ्लश फ्लड गाइडेंस भी उसके साथ साथ इमीडिएटली देते हैं कि कौन सा ब्लॉक है, कौन सा एरिया है, कौन सा वाटरशेड है जिसमें कि फ्लश फ्लड गाइडेंस का रिस्क ज्यादा है।
1: इसी चर्चा को अगर हम आगे बढ़ाते हैं, जैसा डॉक्टर पटनायक बता रहे थे कि शहरों में जो कम समय में ज्यादा बारिश होने से बाढ़ की स्थिति हो जाती है, सूर्य प्रकाश जी आपसे समझना चाहेंगे कि जब शहरों में जल भराव होता है तो अक्सर रास्तों पर चलने या बिजली के खंभों के पास जाने से हादसे हो जाते हैं, ऐसे जल भराव वाले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को आप क्या कहेंगे कि सड़क पर निकलते समय और घरों के भीतर किन बुनियादी सावधानियों का पालन करें ताकि खुद भी सुरक्षित रहें और आसपास के लोगों को भी वो जागरूक कर सकें।
2: आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है, क्योंकि जब भी बाढ़ आती है तो बाढ़ के साथ ये समस्याएं होती हैं शहरी क्षेत्रों में कि जो अवसंरचनाएं हैं, जो हमारी पावर लाइंस हैं, इलेक्ट्रिकल लाइंस हैं, वो भी कई बार तक बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाती हैं या प्रभावित होती हैं। ऐसे समय में इलेक्ट्रिक करंट की वजह से डेथ्स होने की भी संभावनाएं बढ़ जाती हैं। सभी को जो भी घर से बाहर हो अगर सड़क पर हैं तो ये ध्यान रखें किसी भी ट्रांसफार्मर, इलेक्ट्रिक पोल या लाइव वायर्स के नीचे से ये ना क्रॉस करें और किसी तरह का रिस्क ना लें अगर वो पैदल भी चल रहे हो। दूसरा, अगर घर में आप रह रहे हैं तो जो भूतल पर रहते हैं उनके घरों में भी बाढ़ का पानी आ जाता है, भर जाता है, और कई बार उनका इलेक्ट्रिक कंट्रोल रूम भी बिल्कुल भूतल पर ही होता है जो पानी के अंदर सबमर्ज हो जाता है कई बार, तो उसको अगर हमने स्विच ऑफ नहीं किया तो उससे भी करंट लगने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो ऐसे में आप जो है अपना मेन कंट्रोल रूम जो है या स्विच है उसको हमेशा ऑफ कर दीजिए ताकि पावर कंटिन्यूटी की वजह से इलेक्ट्रिकल करंट लगने के खतरे कम से कम हो जाए। और दूसरा, अगर आप शहरी क्षेत्र में हैं और ड्राइविंग कर रहे हैं, सड़कों पर हैं, तो जो लो लाइंग एरियाज हैं, जो सब पासिज हैं या अंडरवेज हैं, उसमें भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि सबवेज में कई बार लो लाइंग एरिया होता है और काफी पानी भर जाता है जिसका अंदाजा हमें नहीं लगता है, तो ऐसे में भी डूबने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। तो ये दो बड़े प्रिकॉशन हैं जिसमें हमें ध्यान देने की जरूरत है कि आप किसी भी पानी के भराव क्षेत्र में बिना अंदाज लगाए और अनुमान के आप कहीं भी उसमें एंटर ना करें। और दूसरा, पावर सप्लाईज और करंट का हमेशा ध्यान रखें कि उनसे दूर रहें, बच के रहें, और कोई भी ऐसी संभावना नहीं होनी चाहिए जिसमें किसी को करंट लग सके। तो ये दो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जिसका ध्यान रखने की जरूरत है। मैं इसके अलावा ये कह रहा था कि गैस सप्लाई का भी है, हमारे यहाँ पीएनजी है दिल्ली में, जैसे उसमें भी कई बार लीकेज या कुछ चांसेस हो सकते हैं, तो उन चीजों का भी ध्यान रखें कि गैस सिलेंडर वगैरह या आपकी जो बिलोंगिंग्स हैं वो भी आप जो है भराव वाले क्षेत्र से ऊपर रखें, मतलब जितना अगर आप ऊंचाई पर रखेंगे उतना सुरक्षित रहेंगी वो चीजें।
1: डॉक्टर पटनायक, अगर आपसे ये समझने की कोशिश करें कि हाल के वर्षों में डॉपलर वेदर रडार का नेटवर्क काफी बढ़ा है और मौसम के सटीक और नाउकास्टिंग का मतलब तत्काल पूर्वानुमान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रडार तकनीक से जो सुधार आया है, आपसे ये समझना चाहेंगे कि कितने प्रतिशत का सुधार आप देखते हैं और इससे आम जनमानस को कितना फायदा हो रहा है, किसानों के लिए ये कितनी राहत की बात है और सरकारी तंत्र इससे किस तरह लाभान्वित हो रहा है।
0: ठीक है, ये अभी जो आप बताए कि डॉपलर रडार हमारा काफी नेटवर्क बढ़ गया है, अभी हम अगर 2014-15 में जो 15-20 रडार के नीचे था उसमें आज हमारा 50 रडार के आसपास आ गया। तो ये डॉपलर रडार में क्या हो रहा है कि जब इंडिया बहुत बड़ा कंट्री

0: तो सारे जगह में हम जब रडार रखेंगे तो उसका 300 किलोमीटर का 400 किलोमीटर इफेक्टिवली 200 किलोमीटर ये रेंज में रडार जो है कोई भी कन्वेक्टिव सेल जो है जो कि ये हेवी रेनफॉल जो एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल इवेंट को जो देता है उसको मॉनिटर करने के लिए रडार एक बहुत उपयोगी है। तो पर्टिकुलरली जब हम जो जगह में जो हमारा ऑब्जर्वेशन दूसरा ऑब्जर्वेशन में कोई मैकेनिज्म है नहीं जैसे पहाड़ी एरिया में उत्तराखंड एरिया ये एरिया में भी और रडार जो बहुत हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होता है कि उसको मॉनिटर करेंगे। जैसे आपने बताया नाव कास्टिंग, तो ये रडार डाटा लेके हम जो डिस्ट्रिक्ट लेवल नाव कास्टिंग देते हैं अभी हर 3 घंटे में हम अपना नाव कास्ट देते हैं और अपडेट करते हैं। जो भी डिस्ट्रिक्ट एरिया में अगर कोई भी खतरा है तो उसमें रेड कलर वार्निंग दिया जाता है। तो जैसे कि आजकल ये हो रहा है कि आकाशीय बिजली में बहुत सारे लॉस ऑफ लाइफ हो रहा है, मैं बहुत सारे कैजुअलिटी जो डेथ हो रहा है ये आकाशीय बिजली में होता है। तो ये मानसून टाइम में जो क्लाउड होता है क्लाउड टू क्लाउड भी बिजली होता है क्लाउड टू ग्राउंड भी बिजली होता है। तो जो क्लाउड टू ग्राउंड वाला जो बिजली स्ट्राइक होता है उसमें बहुत सारे जानमान का क्षति होता है। तो ये जो लाइटनिंग जो स्ट्राइक हो रहा है डेथ हो रहा है उसमें हमारा नाव कास्टिंग काफी हेल्पफुल है। तो हमने पहले इतना हमारा नहीं था जो नाव कास्टिंग में हमने जितना इम्प्रूवमेंट किया है तो रडार नेटवर्क के चलते हमारे पास जो आपने अभी बताया AI ML भी है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी उसको भी हम यूज कर रहे हैं। तो उससे क्या होता है कि कोई भी अगर सेल जो कन्वेक्टिव सेल बनते हैं रडार में दिखता है वो धीरे धीरे मूव होता है। वो अगर 2 घंटे पहले अगर इसी जगह में है तो ये हमारा दिल्ली की तरफ आ रहा है 2 घंटा के बाद यहाँ हो जाएगा तो हमने 2 घंटे पहले ही वार्निंग दे देते। तो ये छोटा सा शॉर्ट टर्म में जो वार्निंग भी है काफी हद तक जो पब्लिसिटी है इसमें के लिए भी बहुत हेल्पफुल होता है क्योंकि लोग ट्रैफिक जाम हो जाता है या आप जैसे देखे होंगे कि बारिश के कारण। तो ये सब चीज के लिए हमारा रडार जो नेटवर्क रडार जो इंटेंसिटी जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं रडार रिलेटेड वो सब यूजफुल होता है। और दूसरी बात जो गांव के लिए भी जो खेती में भी काम करते हैं वो एक्सपोज होते हैं तो उसको लाइटनिंग का भी थोड़ा सा इंडिकेशन मिलना चाहिए। अगर उनको थोड़ा सा 2 घंटा पहले भी अगर लाइटनिंग स्ट्राइक होने का अगर संभावना अगर बताया जाता है तो वो क्या करते हैं कि उस जो सेफ एरिया में चले जाते हैं। तो वो सब चीज ये एक हिस्से में काफी मदद करता है हमारा रडार एंड उसका जो हमारा जो टेक्निक है।
1: प्रोफेसर सूर्य प्रकाश, जैसा कि डॉक्टर पटनायक बता रहे हैं कि थंडर स्टॉर्म को लेकर भी जानकारी प्रदान की जाती है जिससे कि लोग सेफ जगह पर चले जाएं। आपसे इसी विषय पर समझना चाहते हैं कि जो सुरक्षित जगह है उसको लेकर भी बहुत सारी धारणाएं हैं। कुछ लोगों को लगता है कि अगर वो खुले में है तो किसी टीन शेड के नीचे चले जाएं या फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े हो जाएं तो वो सुरक्षित रहेंगे। जो किसान खेतों में रहते हैं वो कहां जाएं क्योंकि आसपास कोई छिपने की जगह नहीं होती है, पक्की छत नहीं होती है, तो वो क्या करें। और एक और बड़ा मिथ है, जो लोग समझते हैं कि वो घर में हैं उन्हें लगता है कि उन्हें किसी तरह की सावधानी बरतने की जरूरत नहीं है, वो घर में हैं वो सुरक्षित हैं। तीनों ही स्थितियों के लिए आप आकाशवाणी के श्रोता जो ये कार्यक्रम सुन रहे हैं उन्हें क्या सलाह देंगे?
2: बहुत ही संबंधित सवाल है क्योंकि जब भी हमारे भारी वर्षा होती है उसके साथ थंडरस्टॉर्म्स और लाइटनिंग ये दोनों इवेंट्स भी अक्सर होती हैं, पर्टिकुलरली क्लाउड वर्स के टाइम पर। तो उस समय में बड़े ये ध्यान देने की बात है कि आप अगर खेत में हैं किसान लोग तो वो पेड़ तले ना जाए। पेड़ तले बिजली लगने की घटनाएं ज्यादा होती हैं और अगर आप खुले मैदान में दोनों पैर एक साथ इकट्ठे करके उड़कू बैठ जाते हैं जैसे मुर्गा बैठता है तो उसमें करंट लगने की घटनाएं कम होती हैं। लाइटनिंग से हमारे यहाँ काफी डेथ्स होती रही हैं और इसकी मेन वजह जैसे आपने कहा कि आप टीन शेड के नीचे चले गए, जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव मटेरियल है तो वहां पर करंट लगने का खतरा ज्यादा होता है। अगर ग्राउंड से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है और आपके जरिए अगर करंट पास करता है तो आपके बॉडी पे इंपैक्ट्स हो सकते हैं। तो अक्सर लोग सोचते हैं छाता ले लें पेड़ के नीचे चले जाएं तो हम सेफ हैं, परंतु ऐसे में सेफ्टी आपके एक्शन पर है कि आप अगर उस समय में खुले में हैं और पास में नजदीक कोई सेफ शेल्टर नहीं है तो आपको वहीं पर उकड़ू दोनों पैर जोड़ के बैठना चाहिए ताकि आपके बॉडी के थ्रू मिनिमम लेवल से करंट पास हो और सीधा ग्राउंड में चला जाए। तो ये सबसे बड़ी प्रिकॉशन होती है। और दूसरा, शहरों की हम बात कर रहे हैं, शहरों में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज और इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज हम बहुत यूज करते हैं। जब भी लाइटनिंग होती है तो उसमें अक्सर ये संभावना होती है कि हमारे जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स के जरिए जो लाइटनिंग का करंट फ्लो कर जाए और आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी फेल हो सकते हैं। तो कभी भी लाइटनिंग होती है तो उसमें अक्सर हमें प्लग्स को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के निकाल देना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि घर में लाइटनिंग की वजह से कोई करंट का प्रवाह ना हो। तो ये दोनों प्रिकॉशंस बहुत जरूरी हैं। और अगर आप गाड़ी में जा रहे हैं और ड्राइव कर रहे हैं तो भी आप सेफ साइड में होकर अपनी गाड़ी

0: खड़ी खड़ी कर दें ताकि आपको करंट की संभावना कम से कम रहे।
1: डॉक्टर पटनायक, आकाशवाणी के श्रोता जो ये कार्यक्रम सुन रहे हैं वो आपसे जरूर जानना चाहेंगे कि अलग अलग राज्यों में इस समय मॉनसून की वर्तमान स्थिति अलग अलग है। अगले 15 दिनों या अगले एक महीने की हम बात करें तो भारत के कुछ राज्यों का जिक्र करते हुए अगर समझा पाए आप कि मॉनसून की क्या स्थिति रहने वाली है।
2: आज तो 29 जुलाई है, आज अगर हम देखेंगे तो एक मानसून टाइम में जो बारिश देता है, मानसून डिप्रेशन सिस्टम जो है बे ऑफ बंगाल के से होते हुए उड़ीसा, उड़ीसा के बाद इंटीरियर उड़ीसा, थोड़ा सा झारखंड एरिया, छत्तीसगढ़ की तरफ मूव हो रहा है, तो आज अभी वो थोड़ा सा छत्तीसगढ़ की तरफ भी एंटर हो रहा है। इससे चलते काफी जो वेस्टर्न उड़ीसा में है, इंटीरियर उड़ीसा में आज जो है रिपोर्ट हो गया, बहुत बारिश रिपोर्ट हुआ है, एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल भी हो गया है, कुछ कुछ जगह में 300 मिलीमीटर रेनफॉल भी ज्यादा हुआ है, उससे भी ज्यादा हुआ है, बहुत सारे स्टेशन में है 200 से भी ज्यादा रेनफॉल हुआ है, तो एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल है। तो ये एक बहुत हेवी रेनफॉल जो है वहाँ उसी एरिया में काफी फ्लडिंग उसके भी चलते, और वो थोड़ा सा वेस्टवर्ड जाएगा तो छत्तीसगढ़ एरिया में भी हमने चेतावनी दिया है, थोड़ा सा विदर्भ एरिया में भी चेतावनी दिए है। तो ये जो अभी एक्टिव जो मानसून सेंट्रल इंडिया मध्य भाग में है एक दो दिन चलेगा, वो जब तक ये सिस्टम थोड़ा सा वीक ना हो जाए, तब जब ये उसके बाद थोड़ा सा हो सकता है कि मानसून ट्रफ ऊपर जाएगा तो थोड़ा सा नॉर्थ इंडिया के पार्ट में भी थोड़ा सा बारिश होगा। जुलाई महीना एंड होने वाला है, जुलाई तो आप रेनी मंथ है, आपको पता है जुलाई में सबसे ज्यादा बारिश जो होता है हमारा मानसून सीजन जुलाई महीना में होता है, और इस बार भी जुलाई खराब नहीं हुआ है, जुलाई अच्छा हुआ है। 1 जुलाई से अगर आज दिन तक देखेंगे तो हमारा जस्ट 1% रेनफॉल कम हुआ है, जून में हमारा 38% कम हुआ था, तो जुलाई में इतना कम होने के कारण आज के डेट में हम जो कंट्री का रेनफॉल है फर्स्ट जून से अगर 28 जुलाई का मानेंगे तो लगभग 15% रेन थोड़ा सा कम हुआ है, जो कि जो जून में जो कम हुआ था वो हमको जुलाई में काफी हद तक मेकअप हो गया है। लेकिन आप यस जो जैसा बता रहे हैं कि रेनफॉल जब देता है तो आपका हेवी रेनफॉल देता है, बाढ़ वगैरह भी स्थिति में आता है। और दूसरा अगले महीने के हर दिन हम फोरकास्ट करते हैं 7 दिन के लिए, जैसे वार्निंग देते हैं पर्टिकुलरली, लेकिन महीने का जो फोरकास्ट है हम वो महीने में एंड में करेंगे, जुलाई का एंड में अभी आ गया है तो 31 जुलाई को हम अगस्त के लिए ओवरऑल एक फोरकास्ट बनाएंगे कि अगस्त मंथ कैसा रहने वाला है। और बाकी हमारा जो रेगुलर फोरकास्ट है हर दिन जो डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए चाहिए सिस्टम वगैरह वार्निंग वगैरह वो देते रहेंगे, एंड हर हफ्ते अगर गुरुवार को हमने एक 4 हफ्ते का फोरकास्ट भी देते हैं तो वो भी हमारे आने वाले गुरुवार को ये हो जाएगा, एंड उसके बाद फिर हम मंथली फोरकास्ट भी देते हैं। तो इसलिए हमारे जो फोरकास्ट है सारा डिफरेंट टाइम स्केल के देंगे। अभी फिलहाल मानसून अगर कंट्री एज हो लगा देखेंगे आज तक थोड़ा सा मानसून रेनफॉल कम हुआ है, 15% कम रेनफॉल हुआ है।
1: सूर्य प्रकाश जी, आकाशवाणी के इन कार्यक्रमों की कोशिश यही होती है कि श्रोताओं के जिज्ञासाओं को हम समाधान करें और साथ ही साथ समस्याओं का समाधान भी उन तक पहुंचाएं। मॉनसून में बहुत सारे लोग जो होते हैं वो पहाड़ी इलाकों में यात्रा करना पसंद करते हैं, आपने भी कुछ समय पहले उसका जिक्र किया था, वहाँ अचानक लैंडस्लाइड आ जाती है या फ्लैश फ्लड का खतरा ज्यादा होता है। ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे कि सैलानियों या स्थानीय लोग जो वहाँ की यात्रा की योजना बना रहे हैं या जो वहाँ हैं, फंस जाने की स्थिति में तुरंत क्या सुरक्षात्मक कदम वो उठाएं?
0: भूस्खलन काफी मात्रा में और कई जगहों पर पहाड़ी पर्वतीय क्षेत्रों में होते हैं, और उसकी जब भी ऐसा घटना में आप अगर उसमें फंस जाते हैं तो सबसे पहला तो ये कि आप अपना बचाव के लिए आपको पता होना चाहिए कि अगर आप फंस गए हैं तो अगर गाड़ी में है तो गाड़ी को जो भूस्खलन वाला क्षेत्र है उसे या तो पहले रोक दें या तुरंत आगे जा निकलने के बाद ही रोकें, बीच में नहीं रोकेंगे। ऐसे में भूस्खलन में दबने की चांसेस बढ़ जाते हैं अगर आपकी गाड़ी भूस्खलन क्षेत्र में खड़ी रहती है। दूसरा, अगर आप पैदल जा रहे हैं और अगर कहीं पर भूस्खलन में आप फंस जाते हैं तो आपको नियरेस्ट जो सुरक्षित बाउंड्री है उसकी तरफ जाना चाहिए, आप स्लोप एरिया में, नीचे की तरफ नहीं। लोग आपने देखा होगा अभी जो पीछे राली में हुआ था, लोग नीचे की तरफ भाग रहे थे, जिधर भूस्खलन चल रहा था उधर ही उसी दिशा में लोग भी भाग रहे थे, तो ऐसे में दबने के जो है चांसेस बढ़ जाते हैं। और तीसरा, अगर आप दर्शक हैं और आप देख रहे हैं कि कोई फंस गया है या कोई गाड़ी फंस गई है तो तुरंत हमें 112 पर फोन कर देना चाहिए ताकि सहायता करने वाले जो हमारे आपदा मोचन बल के कर्मी हैं वो वहां पहुंच जाएं और समय पर उनको रेस्क्यू कर पाएं। तो ये सब चीजों का ध्यान बहुत देना जरूरी है। और एक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण वो जो है, भूस्खलन में ज्यादातर कैजुअलिटीज 2 वजह से होती है। एक, कोई पत्थर सिर पे आके गिर गया, हेड इंजरी हो जाती है, तो आपको जैसे भूकंप में हम हेड को प्रोटेक्ट करते हैं ऐसे ही भूस्खलन में भी अगर आपदा में फंस जाते हैं तो अपने सिर को हमेशा बचा के रखें, उस सिर पे हाथ डाल लें या कोई और कुछ रख लें ताकि

प्रेम संगीत के इस कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं कल्याण जी आनंद जी का संगीत। शब्द हैं इंदिवर के, आवाजें मुकेश और कंचन की हैं। फिल्म का नाम है धर्मात्मा।

फिल्म संगीत इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से। आइए अब सुनते हैं सलमा आगा की आवाज निकाह फिल्म के लिए। गीत को लिखा है हसन कमाल ने और धुन तैयार की है रवि ने।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। रात्रि के दस बजकर तीस मिनट हुए। आइए अब सुनते हैं शास्त्रीय संगीत। जी हाँ, शास्त्रीय संगीत के इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम आपको सुनवा रहे हैं सारंगी पर राग मरुविहाग। कलाकार हैं मोइनुद्दीन खान और संगत है रमजान खान की।

0: लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2024 पारित कर दिया है। विधेयक में 10 वर्ष तक के कारावास, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। मामलों के शीघ्र निपटाने के लिए प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश को दैनिक सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का आदेश दिया गया है। अपराधों की जांच पुलिस थाने में सूचना दर्ज होने की तारीख से 2 महीने के भीतर पूरी की जानी चाहिए। मुकदमे की सुनवाई आरोप पत्र दाखिल होने की तारीख से 3 महीने के भीतर पूरी होनी चाहिए। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये संशोधन कानून को और अधिक सख्त बनाने तथा त्वरित न्याय दिलाने के लिए किया गया है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि न्याय विधेयक छात्रों और युवाओं के कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। डॉक्टर सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री ने टास्क फोर्स का भी गठन किया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित होने पर विद्यार्थियों और युवा अभ्यर्थियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री वैष्णव ने कहा कि यह विधेयक परीक्षा में होने वाली गड़बड़ियों और अनुचित गतिविधियों पर सख्त अंकुश लगाएगा। राज्यसभा ने राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा के लिए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करेगा। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि वंदे मातरम के अपमान के लिए अब 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। संसद के दोनों सदनों में आज हुई कार्यवाही पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
1: संसद के दोनों सदनों में आज महत्वपूर्ण विधायी कार्य संपन्न हुए। हालांकि कार्यवाही के दौरान कई बार व्यवधान भी देखने को मिला। लोकसभा में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत किया। इसके अलावा लोकसभा ने एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित विधेयक की जाँच कर रही संयुक्त संसदीय समिति का कार्यकाल संसद की

0: सत्र 2026 के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक बढ़ाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। नीट मुद्दे को लेकर छात्रों के प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई के विरोध में विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। इस कारण लोकसभा और राज्यसभा में प्रश्नकाल नहीं चल सका। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से आज संसद भवन में स्काईवुड एरोस्पेस के सह संस्थापक और सीईओ पवन चंद्रा ने अपनी टीम के साथ मुलाकात की। इस मुलाकात के बारे में उपराष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बैठक में स्काईवुड एरोस्पेस की प्रेरणादायक यात्रा, विक्रम 1 मिशन और भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र के भविष्य को लेकर कंपनी की योजनाओं पर चर्चा हुई। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति लगातार बढ़ रही है। मरने वाले प्रदर्शनकारियों की संख्या बढ़कर 40 हो गई है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय ने प्रदर्शनकारियों की मौत पर

राधाकृष्णन से आज संसद भवन में स्काईवुड एरोस्पेस के सह संस्थापक और सीईओ पवन चंद्रा ने अपनी टीम के साथ मुलाकात की। इस मुलाकात के बारे में उपराष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बैठक में स्काईवुड एरोस्पेस की प्रेरणादायक यात्रा, विक्रम एक मिशन और भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र के भविष्य को लेकर कंपनी की योजनाओं पर चर्चा हुई। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति लगातार बढ़ रही है। मरने वाले प्रदर्शनकारियों की संख्या बढ़कर 40 हो गई है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय ने प्रदर्शनकारियों की मौत पर चिंता व्यक्त की है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के प्रवक्ता जेरेमी लॉरेंस ने कहा है कि एक नागरिक समाज संगठन को अपराधी घोषित करना और सभाओं पर कड़े प्रतिबंध लगाना, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा और संगठन के अधिकारों के उल्लंघन के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा करता है। ओडिशा में लगातार जारी तेज बारिश और नदियों में आए उफान ने राज्य के विशाल भूभाग को गंभीर मानवीय संकट में डाल दिया है। इस कारण 4 लोगों की मृत्यु हो गई है और हजारों लोग फंसे हुए हैं। प्रशासन ने बाढ़ की बिगड़ती और बेहद अस्थिर स्थिति के मद्देनजर बचाव और राहत कार्यों को तेज कर दिया है। ताइपे ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के खिलाड़ियों ने शानदार शुरुआत की है। पुरुष सिंगल्स में HS प्रणय, तरुण मन्नेपल्ली और किरण जॉर्ज ने अपने अपने मुकाबले जीतकर दूसरे द्वार में जगह बना ली है। महिला सिंगल्स में उन्नति हुड्डा, तानिया हेमंत, अनमोल खरब और तनु शर्मा ने भी जीत दर्ज कर अगले दौर में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।